0: नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड द गेस्ट वी हैव टुडे टू डिस्कस स्पिरिचुअलिटी एंड टू लर्न अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स प्रैक्टिसेस, वी हैव ए वी जयरमन सर। सो आगे बढ़ते हुए मैं बस उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में थोड़ा हमें बताएं, भला वो कहाँ है, क्या करते हैं, कौन है वो। सो जयरमन सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस ब्यूटिफुल लवली मॉर्निंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टॉक टू अवर लिसनर्स।
1: या आई एम जयरमन फ्रॉम बेंगलोर। सो आई ओरिजिनली आई वॉज I belong to Bombay during my school and college days, and then I completed my engineering in Bombay and started my career from Tata Electric, and then moved on to Middle East for my further career. And I would stay in Middle East, Saudi, Bahrain, UAE, Qatar, Muscat. Ultimately, from Muscat, I retired and then came and settled in Bangalore. So, but after my retirement, I chose another career. That is, I pursued medical alternate therapy in acupuncture and acupressure. I took master's diploma and then MD also in acupuncture, and then now I'm practicing in Satya Sai Hospital as a voluntary service. On weekly basis I go there and then practice at home also the same therapy, treating patients on voluntary service. This is my
0: okay
1: short yeah
0: profile. Good, great. तो दोस्तों आपको पता चला कि एवी जयरमन सर एक्यूप्रेशर के थ्रू भी कई सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। चलिए तो एवी सर, हम जिस बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारे जीवन में पूजा यानी कि भगवान से जुड़ने का बहुत सारे तरीके होते हैं और हम लोग उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी। किसी एक भगवान के बारे में बात ना करते हुए ये जो पूरी विधा है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मेडिटेट करना, प्रेयर करना, भगवान के ध्यान में मग्न हो जाना, अपने आप को पीसफुल करना, इसको स्पिरिचुअलिटी अगर कहें तो हमें थोड़ा अपने वर्ड्स में स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन कीजिए।
1: एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी नो ब्रॉड वर्ड बोल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी बचपन में कुछ अलग मीनिंग होता है। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बेसिकली बचपन में हमको हमारे माता पिता हमको इंट्रोड्यूस करते हैं भगवान के श्लोक बोलने के लिए। सो दैट इज वेयर वी गेट इंट्रोड्यूस टू गॉड बेसिकली। तो मदर एंड फादर आर द फर्स्ट गुरुस हू टीच यू फ्यू श्लोकास एंड इंट्रोड्यूस टू गॉड। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सुबह नाश्ते ना धो के भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं इसके सामने खड़ा हो जाओ हाथ इस करके, नहीं नो यू स्टार्ट चैंटिंग, दे विल टीच यू फ्यू श्लोकास, दैट इज स्टिल एम्बेडेड इन योर ब्रेन। बचपन में जो सीखते हैं वो काफी अस्त तक रह जाते हैं ब्रेन, तो मम्मी की इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आई रिमेम्बर गोइंग यू नो टू टेम्पल्स विद पेरेंट्स एंड देन पापा की थोड़ा गुजर गए मैं 6 साल में, तो मम्मी बिकेम माय फादर एंड मदर बेसिकली। सो आई वाज ऑलवेज ट्रैवलिंग विद माय मम्मी, तो मम्मी मुझे

0: प्रमोशन के लिए लेके जाती है, तो दैट वाज अ लिटिल हाई हाई फॉर मी. उनके लिए ठीक होगा, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं, यू नो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तो स्वामी जी वहां बोलते थे सोहम बोलो, व्हेनेवर यू डू एनीथिंग यू टेल सोहम. सोहम का यू नो संस्कृत मीनिंग इज आई एम दैट, सी आई एम गॉड बेसिकली. तो उसको संस्कृत में सोहम बोल देते हैं. तो वो बोलते हैं, तो आप चलते टाइम सोहम बोलो, काम करने टाइम सोहम बोलो, घर में यू नो यू आर कुकिंग, मदर को बोलते हैं. तो आई इवन यूज टू टीस माय मदर, अरे आपको बोलते क्यों नहीं हो सोहम, रोड क्रॉस करने के टाइम भी सोहम बोलो. तो शी यूज टू चाइड मी, अरे रोड क्रॉस करने नहीं बोलेगा तो कोई गाड़ी आके मार देगा मुझे. तो आई यूज टू टीस हर, बट आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ दैट स्टेटमेंट. एंड देन माय इम्प्लॉयर्स वाज यू नो when I was the youngest fellow of 5 sons and 1 sister. So I was the youngest and I was just 6-7 years, and she used to read a lot of adhyatmic text, you know, about all the saints. I used to just sleep in her lap, basically, just. And this went on into my subconscious mind. That is what is wonderful. I was not listening, but during sleep it has gone subconscious mind, and all these stories I remember even now. That is the beauty of it. All those saints' ka life histories. So this has helped me a lot, you know, becoming religious. आप कह सकते हैं, which helped me in my later life. Then that is you know spirituality ka first. Lessons jo hai, it was very useful in my life. Then college days mein I got associated with a mission, with a religious mission where they were teaching Bhagavad Gita. That was another great blessing. So Bhagavad Gita aur spirituality ke kafi connections hain. Prayer actually is a it is antyatmik shuddhata bolte hai na, it is for purification of the mind. Initially bachpan mein to prayer aise hi hota hai ki mujhe acche marks milna hai, I want to get good marks. It starts like that, you know, and then prayer starts with chanting of you know om jo syllable hai,
1: right, sir,
0: teen akshar ka a u n m. And that really gives you the solace and peace in the mind. And something surprising when we go to temple is, we see the God standing in front of him. And we close our eyes. Why? We have come all the way to see the temple.
1: Correct.
0: हम अपने आँख को आँख बंद कर देते हैं. That is because we reflect God in our own conscience. We pray for the well-being of the family. It starts with ourselves, then family, then community. It goes on expanding. तो बचपन में सिर्फ हमको बोला जाता है, अरे आंख बंद कर लो. We used to even little bit slightly आंख सारा खोल के देखते हैं क्या होता है, देखें. So, but later on when we start studying or knowing about God, spirituality, all spiritual texts like Bhagavad Gita, and then we get to know what is the depth of the whole thing. See hamare body, hamare jism hote hain, mind hote hain, intellect hote hain, buddhi, man buddhi. Then we are when we chant om sincerely and you know closing our eyes, you actually reflect God in your own antaratma.
1: Right, sir. यहाँ पर एक और बात भी आ जाती है सर, आप बोल रहे थे तो मेरे को ख्याल आया, आपने बोला मंदिर में जाके हम आंखें बंद कर लेते हैं और वी विश फॉर द वेल बीइंग ऑफ एवरीबॉडी, पर मुझे लगता है मंदिर में हम गए हैं, ऐसा ही मेरे दिल में विचार आया, थॉट आया सर, मंदिर गए हैं, भगवान के दर्शन करने गए हैं, तो हम आंखें खोल के उनका दर्शन क्यों नहीं करते, हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, जबकि हम गए वहां पर उनका दर्शन करने के लिए ही तो हैं, तो हमें भर भर के उनको देखना चाहिए, उनकी मूर्ति को प्यार से सराहना चाहिए कि क्या है, कैसे हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने पावरफुल हैं। वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट इंस्टेड वी जस्ट क्लोज अवर आईज। मुझे समझ में नहीं आया,
0: दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग, यू नो, गॉड इज गाइडिंग यू टू लुक एट योरसेल्फ, तुम अपने अंतरात्मा को देखें।
1: अरे तो सर वो घर पे भी तो आके कर सकते हैं, उधर ही क्यों
0: क्योंकि बाहर जो है, बाहर जो, यस, यू यू

0: एंड देन स्लोली यू आर लुकिंग इनवर्ड्स,
1: ऑलराइट,
0: क्योंकि बाहर की दुनिया इतना हलचल मची हुई है, तो अब अंदर की देख, दैट इज व्हाट दे एंड ऑल द स्क्रिप्चर्स से, यू नो, लुक एट इनसाइड, टर्न योर डायरेक्शन इनसाइड, क्योंकि बाहर की दुनिया तो मेटीरियलिस्टिक है, इट इज नॉट गिविंग यू फुल सोलेस. यस, इट गिव्स यू मोर डिजायर्स रादर देन, यू नो, एंड देन मन अशांत हो जाते हैं, अरे हमको वो चाहिए, ये चाहिए. वेयरएज व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट इनसाइड, दैट पीस, स्पेशली व्हेन यू चैंट ओम, वी जनरली हैव मेडिटेशन सेशन इन द मॉर्निंग, सो उसमें वही होते हैं कि आप चैंटिंग करो, ओम ओम रेवरबरेट करो, चैंट लाउडली, क्लोजिंग योर आईज, दिस इज वॉट गिव्स यू सोलेस, पीस ऑफ माइंड.
1: All right.
0: Ultimately, we want to be happy, is it not? We want to be
1: Absolutely.
0: happy.
1: Absolutely.
0: Yes. Happiness is not outside. That's what the scriptures say. Happiness is inside.
1: Okay, I get it.
0: Yeah.
1: तो दोस्तों जाहिर से बात है, हमको मंदिर में जाकर आंख बंद करनी इसलिए होती है कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो भी ईश्वर का स्वरूप हमने देखा वो हमारी आंखों में बसा रहे।
0: करेक्ट.
1: तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक भजन का आनंद लें, फिर वापस आते हैं एवी सर के पास।

0: यार अमन सर, प्लीज मुझे बताइए कि स्पिरिचुअलिटी के हम आज के डेट में फायदे क्या ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें बहुत हैं, सब है, बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा पढ़ा दिया, पर उसका फायदा क्या? आज के जमाने में लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, मेडिटेशन, गीता, इनके बेनिफिट्स बताइए। बेनिफिट्स, टेंजिबल बेनिफिट्स, टेंजिबल, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड है कि सर मैं 1 घंटा लगाऊंगा
1: टेंजिबल
0: मेडिटेट।
1: बेनिफिट्स ना। नहीं, मेडिटेशन कैन बी वेरी शॉर्ट ऑल्सो, बट सुबह सुबह उठ के आपको मेडिटेट करना है।
0: उसका फायदा क्या
1: तो
0: सर, वो
1: मेडिटेशन
0: बताइए।
1: में फायदा इसीलिए है कि अंतःकरण शुद्धि हो जाता है। सी प्रोबेबली व्हेन यू सिट एंड मेडिटेशन इज नॉट वेरी इजी बेसिकली, बिकॉज द मोमेंट यू क्लोज योर आईज आपके मन में हजार विचार आते हैं। इट्स अ फ्लो ऑफ थॉट्स, ए फ्लड ऑफ थॉट्स। आप सरप्राइज हो जाएंगे, 1 मिनट में इट विल बी थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स फ्लोइंग इन द माइंड द मोमेंट यू वॉन्ट टू सिट एंड मेडिटेट, लेट अस से। सो इसीलिए हम ओम चैंटिंग चालू करते हैं। ओम चैंटिंग वी डू

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और ब्राइट कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील पे आपका अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, और मैं हूँ आपके तरानों की हम सफर, आपकी RJ तनुषा। आज की बात थोड़ी अलग है, थोड़ी फिलोसफी है, थोड़ी साइकोलॉजी का तड़का है, और एक सवाल है, ऑफ कोर्स एक सवाल है, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। भगवान अगर हर जगह है तो हमें दिखते क्यों नहीं? और जरा सवाल को और शरारती बनाते हैं, क्या भगवान हमसे छुप रहे हैं, या हम उन्हें देख ही नहीं रहे? सोचिए सोचिए सोचिए, थोड़ा ज्यादा सोचिए। आपके सामने एक पूरी दुनिया है, आवाजें हैं, लोग हैं, रंग हैं, खुशबू है, हवा है, लेकिन हम सब कुछ नोटिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू होती है आज की एक इंटरेस्टिंग कहानी, दिमाग का वॉचमैन। हमारे दिमाग में एक फैसिनेटिंग फिल्टरिंग सिस्टम होता है, जिसे न्यूरोसाइंस में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS कहा जाता है। आप इसे दिमाग का वॉचमैन समझ लीजिए। बिल्कुल जैसे वॉचमैन काम करता है, वैसे ही हमारे सेंसेस हर पल बहुत सारी जानकारी लेकर आ रहे होते हैं। इतनी सारी कि अगर हर एक चीज पर पूरा ध्यान देने लगे ना, तो दिमाग बोलेगा, भाई मैं रिजाइन कर रहा हूं, प्लीज हायर समबडी एल्स। इसीलिए दिमाग डिसाइड करता है किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को बैकग्राउंड में भेज देना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फोन में नोटिफिकेशन फिल्टर करते हैं, कौन सा कब देखना है, कौन सा लेट देखना है, जल्दी देखना है, अभी देखना है, करते हैं कि नहीं? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक काम करिए, आज जब आप रेडियो सुन रहे हैं, आसपास देखिए, क्या आपको पंखे की आवाज सुनाई दे रही है, AC की, बाहर के ट्रैफिक की, किसी के बात करने की? शायद पहले नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपका ध्यान उधर दिलाया, अब सुनाई देने लग गई। आवाज पहले भी थी, बहुत पहले से थी, बस आपका ध्यान वहां नहीं था। और इसी तरह कभी कभी जिंदगी में भी होता है, चीज सामने होती है लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते। साइकोलॉजी में इस तरह के फिनोमिनन को अनइंटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। जो सामने है वो भी नजर से छूट सकता है, अगर ध्यान कहीं और लगा हो। तो क्या भगवान भी ऐसा ही है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। हो सकता है सवाल ये हो ही नहीं कि भगवान कहाँ है, सवाल शायद ये हो कि हम भगवान को किस रूप में ढूंढ रहे हैं। कभी हमने भगवान की एक इमेज बना ली, एक रूप, एक जगह, एक ही तरीका, और फिर हम उसी इमेज में भगवान को ढूंढते रह गए। लेकिन अगर डिविनिटी को हम सिर्फ एक ही रूप में देखना चाहें, तो हो सकता है कि बाकी सब कुछ हमसे छूट जा रहा है। अब यहां
एक और इंटरेस्टिंग सवाल, अगर भगवान किसी एक मूर्ति तक सीमित नहीं है तो मूर्ति की जरूरत क्यों है? इसका भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल सोचिए। आपके फोन में माँ की फोटो है, वो सिर्फ पिक्सल्स हैं, स्क्रीन पर एक इमेज है, लेकिन अगर कोई उस फोटो का मजाक उड़ा दे तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, पिक्सल्स ही तो हैं। बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि फोटो सिर्फ कागज या स्क्रीन भर नहीं है, उसके साथ आपकी भावना जुड़ी है। इसी तरह एक मूर्ति को सिर्फ पत्थर समझना एक नजरिया है, और उसमें अपनी श्रद्धा और भावना के माध्यम से एक बड़े तत्व का अनुभव करना एक दूसरा नजरिया है। यहां मूर्ति को अंत नहीं, एक शुरुआत माना जा सकता है। हमारी परंपराओं में डिविनिटी को सिर्फ एक जगह नहीं रखा गया, सूर्य में, चंद्र में, नदियों में, पहाड़ों में, पेड़ों में, पशु पक्षियों में, प्रकृति में। यानी आइडिया सिर्फ ये नहीं है कि भगवान वहां है, बल्कि भगवान को हर जगह देखने की नजर पैदा करो। और ये बात मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि अगर हम सच में देखना सीख जाएं, तो शायद आम चीजों में भी कुछ खास नजर आने लगे, और शायद हम आम चीजों, आम लोगों, आम एक्सपीरियंसेस को थोड़ी ज्यादा वक्त दें। और फिलॉसफी यहां एक और इंटरेस्टिंग बात करती है। भक्ति या आध्यात्म का सफर सिर्फ बाहरी रूप तक नहीं है, पहले हम रूप को देखते हैं, फिर नाम और मंत्र के माध्यम से ध्यान को एक जगह लाते हैं, फिर धीरे धीरे ध्यान अंदर की तरफ जाता है, और फिर एक स्टेज आती है जहां सवाल ही बदल जाता है। पहले सवाल था भगवान कहां है, फिर सवाल होता है मैं उन्हें कैसे महसूस करूं, और शायद आखिर में मैं और वो कितने अलग हैं। यही सोच सोहम के भाव तक पहुंचाती है, सो हम, यानी वो मैं हूं। जी हां, वो मैं हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम खुद को भगवान डिक्लेयर कर दें, वरना कल से हर कोई बोलेगा मैं ही भगवान हूं, पहले चाय लाओ। बात असल में अहंकार बढ़ाने की नहीं, अहंकार को धीरे धीरे छोड़ने की है। तो दोस्तों, आज की बातें इधर की उधर की का सवाल आपके लिए सिर्फ इतना है, आप भगवान को कहां ढूंढते हैं? मंदिर में, प्रार्थना में, प्रकृति में, किसी इंसान की दया में, या कभी एकदम चुप होकर अपने ही अंदर? सो हम। और एक सवाल, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज आपके बिल्कुल सामने थी लेकिन आपने उसे देखा ही नहीं? फिर किसी ने ध्यान दिलाया और आपने कहा अरे हां, ये तो यही था। शायद जिंदगी के भी बहुत से जवाब कुछ ऐसे ही होते हैं, वो हमसे दूर नहीं होते, हमारा ध्यान ही कहीं और होता है। तो अगली बार जब आप पूछें भगवान कहां है, एक पल रुक कर शायद ये भी पूछना मेरी नजर कहां है, क्योंकि कभी कभी चीज बदलनी नहीं होती, सिर्फ देखने का तरीका बदलना होता है। मैं हूं आपकी तरानों की हम सफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। मिलते हैं फिर एक और सवाल के साथ, एक और सोच के साथ। तब तक देखिए जरूर, शायद जो आप ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही आपके आसपास हो। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो क्या हुआ भैया कि एक बार पत्नी ने पति से कहा, जी चाय बनाओ। पति ने कहा हाँ बना लो। पत्नी ने कहा अदरक वाली? पति ने कहा ओके। तो पत्नी ने कहा तुलसी भी वैसे काफी फायदेमंद रहती है। पति ने कहा हाँ चलो थोड़ी सी डाल दो। फिर पत्नी ने कहा अच्छा थोड़ा पुदीना डालूं? पति ने कहा एक काम करो, राई और जीरा डाल के ना तड़का भी लगा दो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपके तरानों की हमसफर RJ तनुषा। आज सुबह जरा अपने फोन की तरफ देखिए, टाइम क्या हो रहा है? 7:57, 8:03, 8:15, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन बता देगा। अलार्म है, स्मार्ट वॉच है, घर में घड़ी भी है, और अगर ये सब फेल हो जाए तो पड़ोसी के घर से मिक्सर ग्राइंडर की आवाज आ ही जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, आज से करीब 70 साल पहले जब घर घर में घड़ी भी नहीं होती थी, तब लोगों को कैसे पता चलता था कि स्कूल या ऑफिस जाने का वक्त हो गया है? और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान करेगा। लोग घड़ी नहीं देखते थे, लोग रेडियो सुनते थे, और एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ गाना नहीं गाती थी, वक्त भी बताती थी। 1950s का भारत याद कीजिए। आज की तरह हर जेब में मोबाइल नहीं होता था, हर दीवार पर घड़ी नहीं होती थी, हर हाथ में वॉच नहीं होती थी। टाइम जानने के लिए लोगों के पास अपने अपने तरीके थे, और उनमें से एक था रेडियो। जी हाँ, आपका अपना रेडियो। उस दौर में रेडियो घर का सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, रेडियो घर का मेहमान भी था, और कभी कभी तो घर का टाइम कीपर भी था। अब सवाल है कैसे? इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी आवाज की जिसे सुनते ही पुरानी यादें जाग जाती हैं। कुंदन लाल सैगल साहब 1952 में ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी फिल्म म्यूजिक को लेकर सरकारी नीति काफी सख्त हो गई थी। फिल्म सॉन्ग्स के प्रसारण पर रोक टोक बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, गाने को रोकना आसान है, गाने की चाहत को नहीं। जनता को फिल्म म्यूजिक सुनना था, तो लोगों ने रेडियो का रुख बदल दिया, और बहुत से लोग सुनने लगे रेडियो सिलोन। कोलंबो से चलने वाला ये रेडियो सिलोन उस दौर में पूरे उपमहाद्वीप में बहुत मशहूर हो गया, और उसके प्रोग्राम्स ने रेडियो सुनने की आदत ही बदल दी। बिना का गीतमाला तो अपने आप में एक अलग ही कहानी है, लेकिन सुबह का एक प्रोग्राम ऐसा था जो जिंदगी का हिस्सा बन गया। जी हाँ, पुराने फिल्मों के गीत, और इसी प्रोग्राम में था एक कमाल का वक्त, 7:57। जी हाँ, 7:57 का जादू। अब यहां कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है। उस जमाने में गाने 78 RPM रिकॉर्ड्स पर बजते थे, उस पर लगभग 3:20 का ही रिकॉर्डिंग समय होता था। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर सुबह 7:57 पर एक करीब 3 मिनट का KL सैगल साहब का गाना बजा, तो गाना 8 बजे खत्म, और बस 8 बज गए। आज हमें ये बात छोटी और बहुत बेमतलबी लग सकती है, लेकिन उस वक्त ये एक पूरा रिचुअल था। सोचिए, एक आम घर और उस घर का सुबह का मंजर। माँ रसोई में नाश्ता बना रही है, बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है, पापा चाय पी रहे हैं, रेडियो पर सैगल साहब की आवाज आ गई, और माँ ने तुरंत घड़ी देखे बिना कह दिया, बस अब स्कूल के लिए निकलो। बच्चा बोलेगा, मम्मी अभी तो गाना चल रहा है, और माँ बोलेगी, हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ, गाना खत्म होने वाला है। और पापा के लिए भी ये सिग्नल एकदम क्लियर था, गाना खत्म और अब ऑफिस का वक्त शुरू। यानी एक गाना पूरे घर की सुबह चला रहा था। आपके घर में भी कोई ऐसी चीज होगी जो घड़ी के बिना वक्त बता देती होगी,
किसी के घर में सुबह अजान की आवाज, किसी के घर में मंदिर की घंटी, किसी के घर में दूध वाले भैया, किसी के घर में मम्मी की आवाज, उठ जाओ। और आज के जमाने में अलार्म बजता है, हम स्नूज कर देते हैं। अलार्म फिर बजता है, हम फिर स्नूज करते हैं। तीसरी बार अलार्म और फोन को देखकर लगता है, भाई तू भी थक गया होगा, बस यही है जो नहीं जग रहा। पहले एक गाना लोगों को जगाता था, आज पांच पांच अलार्म्स भी कभी कभी हार जाते हैं, थक जाते हैं और वो भी शायद सो जाते हैं। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक वक्त की बात नहीं है। सोचिए, एक ही आवाज अलग अलग शहरों में, अलग अलग घरों में, अलग अलग लोगों के बीच एक ही समय पर सुनाई दे रही है। कहीं कोई चाय बना रहा है, कहीं कोई स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा है, कहीं कोई फैक्ट्री की तैयारी हो रही है, कहीं ऑफिस जाने वाले आदमी जूते पहन रहे हैं, और सबके बीच सैगल साहब की एक आवाज। रेडियो ने लोगों को सिर्फ गाने नहीं दिए दोस्तों, एक सांझा समय दिया, एक ऐसी चीज जो सबके घर में अलग थी लेकिन उस वक्त सुबह एक जैसी लगती थी। और फिर दुनिया बदल गई, घर में घड़ियां आ गईं, वॉचेस आ गईं, डिजिटल क्लॉक्स आ गईं, मोबाइल आ गया और अब हमें सेकंड तक पता है कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड हुए हैं। लेकिन एक अजीब बात है, पहले लोगों के पास टाइम जानने के लिए कम साधन थे, लेकिन शायद टाइम महसूस करने के लिए बहुत मौके थे। आज हम टाइम बहुत देखते हैं, बहुत टाइम देखने की मशीन्स हैं, लेकिन क्या हम वक्त को सुनते हैं? क्या हम सुबह को महसूस करते हैं? क्या हम एक गाना पूरा सुनते हैं या आधे गाने के बाद अगला गाना लगा देते हैं? पहले रेडियो के एक गाने का खत्म होना सिर्फ एक गाने का खत्म होना नहीं था, वो एक छोटा सा सिग्नल था। चलिए अब दिन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आपको अपनी सुबह की घड़ी किसी एक गाने पर सेट करनी हो तो वो कौन सा गाना होगा? जरा सोच के देखिए, ऐसा गाना जो बजते ही आपको पता चल जाए, बस अब उठना है, या फिर अब चाय का वक्त है, या फिर अब काम पे जाना है। मुझे लगता है हर जनरेशन के पास अपना एक ऐसा गाना होना चाहिए, एक ऐसी आवाज होनी चाहिए, एक ऐसे सैगल साहब, ऐसे किशोर कुमार, ऐसी लता जी होनी चाहिए। और आज की जनरेशन के लिए शायद वो है फोन का अलार्म। जी हाँ, वो आवाज है फोन का अलार्म जो पांच बार स्नूज होने की आदत रखता है। खैर दोस्तों, आज हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है, डिजिटल टाइम है, स्मार्ट टाइम है, लेकिन रेडियो के उस दौर में हमें एक और चीज दी थी, वक्त को साथ बांटने का एहसास। एक आवाज, एक गाना और हजारों घरों की एक सुबह, एक ही सुबह। क्या खूबसूरत बात है ना, एहसास करके देखिए। घड़ियां वक्त बताती हैं, लेकिन कुछ आवाजें वक्त को याद बना देती हैं, और शायद इसीलिए कुछ पुराने गाने कभी पुराने नहीं होते, वो सिर्फ गाने होते हैं। वो किसी के बचपन की सुबह होते हैं, किसी माँ की आवाज होते हैं, किसी पापा के ऑफिस जाने का वक्त होते हैं, और किसी पुराने जमाने की धड़कन होते हैं, धक धक धक धक धक धक। मैं हूं आपके तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। आज मोबाइल की घड़ी जरूर देखिए, लेकिन कभी मौका मिले ना तो एक पुराना गाना लगाइए और देखिए, शायद वक्त नहीं कोई पुरानी याद बजने लगे। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला, बताओ कहाँ दर्द है? तब वो व्यक्ति बोला, अरे डॉक्टर तुम हो कि मैं? तुम बताओगे कि मैं बताऊंगा? डॉक्टर ने कहा, लेकिन दर्द कहाँ है ये तो तुम ही बताओगे ना? व्यक्ति ने बोला, अगर फीस कम करते हो तो बताता हूँ, नहीं तो खुद ही ढूंढ लो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एसएन रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा। आज तो बातें थोड़ी धीमी करेंगे हम। आज ना कोई भागदौड़ की बातें, ना कोई जल्दी, बस एक कहानी। और कहानी भी एक ऐसी चीज की जो हम सबके पास है, वक्त। जी हाँ, वक्त। लेकिन आज की कहानी वक्त को देखने की नहीं है, वक्त को समझने की है। पुराने शहर की एक तंग सी गली में एक बहुत ही छोटी सी दुकान थी, नाम था टाइम कीपर्स। दुकान इतनी छोटी थी कि एक वक्त में मुश्किल से दो ग्राहक खड़े हो पाते थे। पुराना सा लकड़ी का बोर्ड जिस पर सालों से रंग भी नहीं हुआ था, लेकिन लोग दूर दूर से वहां आते थे। और क्यों? क्योंकि वहां घड़ियां ठीक करते थे 70 साल के माधव राव जी। दुनिया के लिए माधव एक घड़ी साज थे, लेकिन माधव के लिए

0: हर घड़ी एक कहानी थी। उनके पिता ने उन्हें एक बात सिखाई थी, सिर्फ मशीन मत ठीक करना, उससे जुड़ी यादों को भी संभालना बच्चे। क्या बात है ना? सोचिए आपके घर की कोई पुरानी घड़ी है जो शायद अब चलती भी नहीं, लेकिन आप उसे फेंक नहीं सकते। और क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ घड़ी नहीं होती, उसमें किसी की यादें चल रही होती हैं। टिक टिक टिक टिक। लेकिन वक्त तो वक्त है ना, वो किसी के लिए रुकता नहीं। डिजिटल घड़ियां आ गईं, मोबाइल फोन्स आ गए, ऑनलाइन दुकानों पर नई घड़ियां सस्ती मिलने लगी और माधव जी की दुकान पर ग्राहक कम होते गए। बेटा विक्रम कहता, पापा बस अब बस कीजिए, दुकान बेच दीजिए, आराम कीजिए। बात गलत भी नहीं थी। अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से देखो तो हर बच्चा शायद यही चाहता है कि एक उम्र के बाद उनका पेरेंट रिटायर करे, घर पे आराम करे, फालतू के झंझट में ना पड़े। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बारिशें होती रहीं, दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया। माधव ने पहली बार सोचा, क्या वक्त मेरे बिना ही आगे निकल गया? उसकी 12 साल की पोती नैना ने दादा को उदास देखा। उसने अपने कमरे से एक पुरानी सी अलार्म क्लॉक निकाली, घड़ी बंद थी, और नैना दादाजी के पास आके बोली, दादाजी इसे ठीक करोगे? माधव मुस्कुराए, ये तो घर की ही घड़ी है बच्चा। नैना बोली, पता है, लेकिन जब आप इसे ठीक करो तो मुझे भी सिखाना। बस एक छोटी सी बात कहानी बदल देती है। अगले दिन नैना दादाजी के पास बैठ गई नोटबुक लेकर। माधव जी ने घड़ी खोली, छोटे छोटे पुर्जे, छोटे गियर, पतली सी स्प्रिंग, और साथ साथ नैना को सिर्फ घड़ी नहीं सब्र सिखाया, ध्यान से देखना सिखाया, हाथ का प्रिसिशन और हुनर सिखाया, और सबसे बढ़कर काम की इज्जत करना सिखाया। कुछ ही हफ्तों में आसपास के और भी बच्चे आने लगे, फिर एक, फिर दो, फिर पूरा छोटा सा एक झुंड। हर सैटरडे को माधव उन्हें कुछ नया सिखाया करते थे। कोई फीस नहीं, कोई बड़ी क्लासरूम नहीं, बस एक बुजुर्ग आदमी और उनका हुनर। बच्चों के पेरेंट्स भी खुश, कम से कम कुछ घंटे तो बच्चे मोबाइल से दूर थे। धीरे धीरे बातें फैली। एक पत्रकार दुकान पर आया, उन्होंने स्टोरी लिखी, द मैन हु इज रिपेयरिंग मोर देन क्लॉक्स, यानी वो आदमी जो सिर्फ घड़ियां नहीं कुछ और भी ठीक कर रहा है। और फिर माधव की जिंदगी बदल गई। कलेक्टर्स पुरानी घड़ियां भेजने लगे, म्यूजियम्स ने बुलाया, स्कूल्स ने वर्कशॉप्स के लिए बुलाया, यूनिवर्सिटी ने पुराने घड़ी साज के हुनर को संभालने के लिए उनकी मदद मांगी। एक दिन बड़े निवेशक आए, बोले, आपकी दुकान को बड़ा करते हैं, एक ब्रांड क्रिएट करते हैं, बड़े शोरूम्स खोलते हैं, बहुत पैसा आएगा इसमें। ऑफर बहुत बड़ा था। बेटा भी बोल उठा, पापा ये जिंदगी बदलने का मौका है। माधव ने कई रात सोच कर गुजारी। फिर नैना ने एक सवाल पूछा, दादा आपके जीवन के बाद लोग आपको किस बात के लिए याद रखेंगे? आप बताओ आप क्या चाहते हो? बस सवाल बहुत छोटा था, बहुत मासूम था, लेकिन जवाब बहुत बड़ा। माधव ने वो ऑफर ठुकरा दिया और उसने बनाई
1: स्कूल ऑफ टाइम,
0: जहां गरीब परिवारों के बच्चे मुफ्त में घड़ी रिपेयर और रेस्टोरेशन का हुनर सीख सकें। सर्टिफिकेट नहीं था, उन्हें टूल्स दिए जाते थे, यानी लो अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कुछ साल बीत गए, माधव की आंखें कमजोर होने लगी, हाथ भी पहले जैसे तेज नहीं रहे। आखिर एक दिन रिटायरमेंट का वक्त आ गया और उस दिन, उस आखिरी दिन, उसके पुराने स्टूडेंट्स अचानक दुकान में आ गए। किसी के हाथ में घड़ी, किसी के हाथ में पुराना कोई टाइम पीस। सब ने अपनी घड़ियां सामने रखी और ठीक शाम 6 बजे सब ने एक साथ घड़ियां चला दी। पूरे कमरे में सिर्फ आवाजें थी, टिक टिक टिक टिक। माधव की आंखों में आंसू आ गए, उनके हाथ धीमे पड़ गए, लेकिन उनका हुनर अब हजारों हाथों में चल रहा था। रात को घर में नैना ने वही पुरानी अलार्म क्लॉक टेबल पर रखी। घड़ी चल रही थी। नैना ने पूछा, दादा ये कहानी कभी घड़ियां ठीक करने की थी ही नहीं, है ना? माधव मुस्कुराए, नहीं। तो किसकी थी? माधव बोले, जो जरूरी है उसे कभी रुकने ना देने की। दोस्तों, क्या खूबसूरत बात है ना। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने जिंदगी में क्या बनाया, कितना पैसा कमाया, कौन सी ब्रांड बनाई, कितना बड़ा घर बनाया, कितनी पहचान बनाई। लेकिन शायद एक और सवाल पूछना चाहिए, मेरे बाद मेरे हाथों से सीखा हुआ क्या चलता रहेगा? आपका हुनर, आपकी समझ, आपका अनुभव, आपकी अच्छी आदतें, अगर आपने किसी एक इंसान को भी दे दी तो वो आगे किसी और को भी उन्हें दे सकेगा। और यही तो असली विरासत है। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, खुद से पूछिए, मुझे क्या आता है जो मैं किसी और को सिखा सकता हूं? खाने की कोई रेसिपी, कोई हाथ की कला, कोई काम का हुनर, कोई जिंदगी का सबक, या बस लोगों को मुश्किल वक्त में संभालने का तरीका। जो भी है उसे अपने तक मत रखिए, उसे बांटिए, क्योंकि पैसा बांटने से कम हो सकता है, लेकिन ज्ञान और हुनर बांटने से बढ़ता ही है। दोस्तों, माधव ने घड़ियां रिपेयर की, लेकिन असली में उन्होंने लोगों का वक्त आगे बढ़ाया। और शायद सफलता का सबसे खूबसूरत मतलब यही है। आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन आपकी सीख किसी और की जिंदगी में चलती रहे। टिक टिक टिक, वक्त चलता रहेगा। सवाल बस इतना सा है, आपके जाने के बाद आपके अंदर का क्या चलता रहेगा? पूछेगा जरूर। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM। अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और सवाल के साथ और कुछ नई बातों के साथ। तब तक वक्त की कदर कीजिए, अपने हुनर की कदर कीजिए, और जो अच्छा आता है ना उसे किसी और तक जरूर पहुंचाइए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: चिंटू जो है पैराशूट बेच रहा था बाजार में, चिल्ला चिल्ला के बोले, हवाई जहाज से कूदो, बटन दबाओ और जमीन पर सुरक्षित पहुंच जाओ। तो एक ने पूछा कि भैया अगर पैराशूट ना खुला बटन दबाने के बाद? तो चिंटू बोला, पूरे पैसे वापस।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे। तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूँ, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूँ। तब तक ये गीत सुनिए।

हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए

0: खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहे डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाए। टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए। शेर उठा और गुस्से में दहाड़ा, किसने किया ये दुस्साहस और किसने अपनी मौत बुलाई है? बंदर बोला, मैं हूं महाराज, दोस्तों के अभाव में बहुत दुखी हूं, मरना चाहता हूं, आप मुझे खा जाइए। शेर ने हंसते हुए पूछा, है मेरे कान खींचते हुए तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बंदर बोला, नहीं महाराज। शेर ने कहा, ठीक है, एक दो बार और खींचो, बहुत मजा आ रहा है। मतलब अकेले रह रहकर जंगल का राजा भी बोर हो जाता है, इसलिए अपने दोस्तों के संपर्क में रहिए, कान खींचते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त ना रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर लें, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: মহামানবের সাগর তীরে।
1: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
2: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जल।

0: तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
2: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड

रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर शांति।
2: सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट है, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

अकला चलो रे। सुनकर पुकार तुम्हारी आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: इंसुलिन की कहानी भाग एक।
2: सन 1918 की शरद ऋतु, सितंबर 28, प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी वर्ष। संयुक्त सेना के ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के जर्मनी पर प्रहार जारी थे। अपनी चिकित्सा स्नातक की डिग्री को हासिल कर एक 25 वर्षीय नौजवान लेफ्टिनेंट कनाडा सेना की मेडिकल कोर में दाखिल हुआ था। फ्रांस के युद्ध स्थल पर कार्यपरायण डॉक्टर को हाल ही में पदोन्नति के साथ कैप्टन बनाया गया था। वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और उसे बॉक्सटन के विशेष अस्पताल में लाया गया था।
3: थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ, थोड़ा और बस। मुझे खेद है कैप्टन, लगता है कि हाथ काटना पड़ेगा।
4: नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं
3: कैप्टन,
4: बिल्कुल नहीं।
3: मुझे इस बात का एहसास है कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे आगे सारी जिंदगी पड़ी है,
4: लेकिन नहीं नहीं डॉक्टर।
3: ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा पर छोड़ देते हैं।
4: शुक्रिया।
3: मैं दुआ करूंगा कि ईश्वर तुम्हें शक्ति प्रदान करे।
4: शुक्रिया डॉक्टर।

0: मरीज के जीवन का जोखिम लेते हुए उनकी बांह को बचाने की खातिर डॉक्टर पाल्मर ने उनके हाथ को नहीं काटा। वो बहादुर जख्मी थे, डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग। एक साल बाद उन्हें वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस के पदक से सम्मानित किया गया। सन 1919 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वो कनाडा लौट आए और थोड़े समय के लिए उन्होंने ओंटारियो प्रांत के लंदन शहर में डॉक्टरी की। डॉक्टरी का काम निभाने के साथ साथ पश्चिमी ओंटारियो विश्वविद्यालय के हड्डी चिकित्सा विभाग में अल्पकालिक प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया। एक दोपहर डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के पुस्तकालय में सर्जरी, गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स नामक पत्रिका पढ़ रहे थे। इस नवंबर अंक के पहले लेख का लंबा शीर्षक था, द रिलेशन ऑफ द आईलेट्स ऑफ लैंगरहांस टू डायबिटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉजेज ऑफ पैंक्रियाटिक लिथियासिस। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट को डॉक्टर मोजेस बैरन ने लिखा था। इस लेख के सार की 3 मुख्य पंक्तियों को बेंटिंग ने अपनी पॉकेट नोटबुक में लिख कर रख लिया। लिगेट द पैनक्रिएटिक डक्स ऑफ डॉग्स, कीप डॉग्स अलाइव टिल एसिडी डिजनेट, रिमूव द रेसिड्यू एंड देन आइसोलेट इंटरनल सिक्रेशन। ये साधारण सी पंक्तियां थी पर इनमें चिकित्सा विज्ञान के इतिहास को रचने के बीच थे।
1: डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर एफ आर मिलर के दफ्तर गए। प्रोफेसर मिलर स्नायु क्रिया तंत्र के विशेषज्ञ और शरीर क्रिया शास्त्र विभाग के प्रमुख थे। डॉक्टर बेंटिंग ने उन्हें बताया,
2: प्रोफेसर मिलर, ये देखिए, इस लेख में ये दावा किया गया है कि जब पैनक्रियाटिक नली को सर्जरी से बांधकर बंद कर दिया जाता है तो अग्नाशय की वो कोशिकाएं जहां एंजाइम ट्रिप्सिन बनते हैं वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पर आइलैंड ऑफ लैंगरहांस की कोशिकाएं बची रह जाती हैं।
3: वाकई ये एक बहुत सरल विचार है।
2: हाँ, और ये तर्क संगत भी लगता है
3: डॉक्टर बेंटिंग।
2: हाँ,
3: मेरे अध्ययन और शोध का क्षेत्र स्नायु तंत्र की कार्य प्रणाली है। आपने जो शोध समस्या सुझाई है वो वास्तव में एंडोक्रिनोलॉजी का विषय है। लेकिन इसके लिए विश्वविद्यालय की छोटी सी प्रयोगशाला ठीक नहीं रहेगी। आपको ज्यादा बेहतर सुविधाओं और उपकरणों की जरूरत होगी।
2: तो प्रोफेसर मिलर, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
3: डॉक्टर बेंटिंग
2: जी,
3: आपको टोरंटो विश्वविद्यालय जाना चाहिए।
2: टोरंटो?
3: वहां शरीर क्रिया प्रणाली के प्रोफेसर हैं जॉन जेम्स रिकर्ड मैक्लियोट
2: जी,
3: जो कनाडा के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा विज्ञानी हैं। स्कॉटलैंड से आए ये मेहनती इंसान चिकित्सा विज्ञान विभाग के एसोसिएट डीन भी हैं।
2: अच्छा,
3: इन्हें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में विशेष महारत हासिल है। इनकी प्रयोगशाला आपके लिए सही जगह रहेगी।
2: ठीक है प्रोफेसर मिलर, मैं वहीं जाऊंगा उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: वेलकम।
0: अगले सप्ताह नवंबर 8 सन 1921 की सुबह डॉक्टर बेंटिंग प्रोफेसर जॉन मैक्लियोट से उनके दफ्तर में मिले।
2: प्रोफेसर?
4: हाँ,
2: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
4: हाँ, कृपया यहाँ बैठिए।
2: जी धन्यवाद। श्रीमान, मुझे प्रोफेसर मिलर ने आपके पास भेजा है।
4: किस लिए?
2: जी ये मेरे पास मधुमेह रोग के इलाज के लिए एक शोध का प्रस्ताव है। मेरी सोच का आधार है कि
4: बिल्कुल ठीक कहा आपने। पर ये सब आप करेंगे कैसे?
2: सर, पाचन प्रणाली में अग्नाशय क्या क्या और कैसे कैसे अपना कार्य करता है इसका पता लगाकर।
4: हाँ जी, हाँ, ये मेरा अपना भी विशेष शोध क्षेत्र है।
2: अच्छा सर, मैं सोचता हूँ कि अग्नाशय में कुछ ऐसे रस का रिसाव होता है जो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है।
4: पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि कोई रिसाव इसके लिए जरूरी है?
2: ये बिल्कुल स्पष्ट है, और कम से कम मैं ये कोशिश करके साबित करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं आपके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ।
4: क्या आपके पास पहले प्रयोग और शोध करने का कोई अनुभव है डॉक्टर बेंटिंग? क्या आपको रक्त में शक्कर की मात्रा मापना आता है?
2: जी जी नहीं, मैं रसायन शास्त्री नहीं हूँ।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मैं आपकी मदद करूंगा। आपका शोध में कोई प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए अन्वेषण की प्रयोजना तैयार करने में मैं आपकी सहायता करूंगा।
2: जी,
4: आप चूंकि रसायन शास्त्र के जानकार नहीं हैं, मैं आपके साथ काम करने के लिए एक रसायन शास्त्र प्रशिक्षित सहायक भी दूंगा।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
4: डॉक्टर बेंटिंग।
2: जी,
4: लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तरीका आप सुझा रहे हैं, यूरोप के अग्रणी नामी गिरामी शोधकर्ता पहले ही उसकी कोशिश करके देख चुके हैं, और उनमें से कोई भी अभी तक सफल नहीं हुआ।
2: जी सर।
4: उनके अलावा आप क्या अलग करना चाहते हैं?
2: मुझे उनके प्रयासों और परिणामों के बारे में पता नहीं है, फिर भी मैं खुद एक बार अपने तरीके से करके आजमाना चाहता हूँ सर।
4: डॉक्टर बेंटिंग, कम से कम आपको तर्क संगत तो बनना ही पड़ेगा।
2: जी जी सर।
4: विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको अपनी मर्जी के प्रयोग अपनी ही प्रयोगशाला में करने की इजाजत भला कैसे दे सकता हूँ? आपसे बेहतर और काबिल लोग ऐसे प्रयोग करने के लिए मौजूद हैं।
2: जी।
4: आपकी थ्योरी मुझे लगता है बेकार है।
2: सर, एक बार के लिए आप मान लीजिए कि डायबिटीज के विरुद्ध काम करने वाला कोई आंतरिक रसायन है।
4: ओके।
2: कोई अनजाना एक्स हार्मोन है। मैं उसे धागे से बंधे हुए अग्नाशय से अर्क बनाकर निकाल लेता हूँ और एक डायबिटीज रोग से पीड़ित कुत्ते में इंजेक्ट कर देता हूँ, और कुत्ते के रक्त में शक्कर की मात्रा घट जाती है। क्या ये सबूत काफी नहीं? मैं तो सिर्फ आपसे इस शोध को करने की अनुमति मांग रहा हूँ।
4: डॉक्टर बेंटिंग, मेरी सलाह है कि आप अगली गर्मियों के मौसम तक इंतजार करें, और उसके बाद एक या दो महीने के लिए आप टोरंटो आ सकते हैं।
2: शुक्रिया, धन्यवाद सर। प्रोफेसर मैकलियोट, अगर शोध के लिए मुझे सभी सुविधाओं को देने का आपका वादा बरकरार है, तो मैं आशा करता हूं कि अपने शोध प्रोजेक्ट पर गर्मियां शुरू होते ही मैं अपना काम शुरू कर दूंगा।
4: अपने शोध को पूरा करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं, तो मैं आपके लिए प्रयोग करने की सुविधाएं और जानवरों का इंतजाम करता हूं। मैं चार्ल्स हर्बर्ट बेस्ट से आपके साथ काम करने का अनुरोध करूंगा। वो शरीर क्रिया विज्ञान में स्नातक हैं, अभी वो किशोर उम्र में ही हैं, पर इस काम के लिए वो बेहतरीन हैं।
2: जी सर, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा।
4: बेस्ट में रसायन विश्लेषण का जुनून है, और आप एक अच्छे सर्जन हैं। आप दोनों मिलकर कुत्तों पर बहुबी प्रयोग कर सकते हैं।
2: और प्रयोगशाला की बाकी सुविधाएं?
4: अभी के लिए आप एक छोटी प्रयोगशाला से काम चला सकते हैं, जहां ऑपरेशन के बाद जानवरों को पिंजरे में रखने की व्यवस्था हो, और उसके साथ ही जुड़ा हुआ ऑपरेशन करने के लिए एक अलग विशेष कमरा भी हो, जिसे आप ऑपरेशन थिएटर कह सकते हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।
5: यह साधारण सी घटना बाद में एक महान खोज में तब्दील हुई। 1920 के दशक में डायबिटीज यानी मधुमेह एक खतरनाक रोग था, जिसमें मौत शर्तिया ही होती थी। डॉक्टर भी उतना ही इस रोग से डरते थे जितना कि इस रोग के मरीज। डॉक्टरों को सिर्फ इतना ही पता था कि बचने का एक ही तरीका है, कि मरीज को एक साधारण पर संतुलित आहार पर रखा जाए। ऐसे भोजन पर जिसमें शक्कर की मात्रा कम से कम हो।

0: आया। मेडिकल स्कूल की इमारत की दूसरी मंजिल पर 10 कुत्ते और एक टेबल पर बनी एक छोटी रसायन प्रयोगशाला उनके आगमन पर तैयार थी। सन 1921 को 17 मई के दिन मैकलियोड ने सर्जरी का पहला प्रयोग बेंटिंग और बेस्ट के जिज्ञासु दल को खुद करके दिखाया। प्रोफेसर मैकलियोड ने पहले कुत्ते की सर्जरी के बाद किसी दूसरी सर्जरी में हिस्सा नहीं लिया। जून 14 सन 1921 को वो 3 महीने के लिए लंबी छुट्टी पर स्कॉटलैंड चले गए और तब बेंटिंग और बेस्ट की जोड़ी कमर कसकर दिन रात एक करते हुए गर्मियों के मौसम में प्रयोगशाला की छोटी सी कोठरी में पसीने से तरबतर अपने प्रयोगों में जुट गई।
1: चार्ल्स, हमारे पास 10 कुत्ते हैं और हमें इनमें से 5 को डायबिटीज से ग्रसित रोगी बनाना है।
2: क्या?
1: हाँ, हमें बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी।
2: अब डॉक्टर बेंटिंग, तुम्हारा मतलब है कि इन 5 कुत्तों में एंटी डायबिटिक गुण उत्पन्न होंगे?
1: बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो चार्ल्स। अच्छा चार्ल्स, ये क्या यंत्र है?
2: ये कैलोरी मीटर है, रक्त में शक्कर की मात्रा मापने के लिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा चार्ल्स, इस शोध परियोजना में शामिल होने की तुम्हारी कोई खास वजह?
2: डॉक्टर बेंटिंग, बचपन में मेरी एक नन्ही सी दोस्त थी, मेरा मतलब मेरी बचपन की साथी, डायबिटीज की वजह से बहुत ही छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हो सकता है कि हमारे काम से कोई राह निकले और जो तुम कर रहे हो उससे एक दिन लाखों लोगों की जान बचाना मुमकिन हो सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल होगा। तुम्हें पता है कि इस काम का तुम्हें कोई मेहनताना नहीं मिलेगा?
2: हाँ डॉक्टर, प्रोफेसर मैकलियोड ने मुझे पहले ही बता दिया था।
1: अरे वाह, तब तो कोई समस्या नहीं है।
2: अच्छा डॉक्टर, कब शुरू करेंगे हम अपना काम?
1: बस अभी।

0: अर्क से किया गया और दूसरा कुत्ता बिना इंजेक्शन के रखा गया।
1: डॉक्टर बेंटिंग,
2: हाँ,
1: वो कुत्ता जिसे हमने इंजेक्शन नहीं दिया था वो मर गया।
2: हाँ, लेकिन चार्ल्स फिर भी वो 4 दिन तक जिंदा रहा।
1: हाँ।
2: अच्छा, उस पीले रंग के कोली कुत्ते का क्या हुआ?
1: तुम्हारा मतलब कुत्ता नंबर 92?
2: हाँ हाँ, वही वही वही नन्ना सा प्यारा सा कुत्ता। मैंने 8 cc एक्सट्रैक्ट इंजेक्शन उसे लगा दिया है।
1: मैं कैलोरी मीटर से उसके रक्त में शक्कर की मात्रा लगातार माप रहा हूँ।
2: चार्ल्स, आधी रात को रक्त में शक्कर की क्या मात्रा थी?
1: 12 बजे के करीब ये 43 थी।
2: 43। चार्ल्स, हर घंटे रक्त में शक्कर की मात्रा का रिकॉर्ड अपनी नोटबुक में लिखते रहो।
1: ठीक है डॉक्टर बेंटिंग। डॉक्टर बेंटिंग, इस कुत्ते की हालत में सुधार होता नजर आ रहा है।
3: ये देखिए,
1: रात के 2 बजे अभी ये 33 अंक पर है।
2: हाँ।
1: 3 बजे 29 अंक पर।
2: अच्छा।
1: और 4 बजे 21 अंक पर।
2: अरे वाह।
1: और 5 बजे ये 15 अंक पर है।
2: बहुत खूब।
1: यानी 6 घंटे में ये 43 अंक से गिरकर मात्र 15 अंक पर आ गया।
2: अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि उसके रक्त में शक्कर की मात्रा घट गई है।
1: हाँ डॉक्टर बेंटिंग, वाकई ये तो कमाल हो गया।
2: अरे वाह चार्ल्स, वाह कमाल कर दिया। सच में अब ये कुत्ता पूरी तरह स्वस्थ है और रोग के लक्षणों से मुक्त है। ओ चार्ल्स, हमने कर दिखाया।
1: लेकिन डॉक्टर बेंटिंग,
2: हाँ,
1: हमें अपना प्रयोग कई बार दोहराना पड़ेगा। हमें वो चीज मिल गई है जिसकी डायबिटीज के रोगी बरसों से प्रार्थना कर रहे थे।
2: हाँ, हाँ चार्ल्स, देखो देखो ये कुत्ता भी कितना खुश है ना। हाँ। और खुशी में अपनी पूंछ हिला रहा है। हाँ। हाँ। सचमुच चार्ल्स, हमने कर दिखाया।
1: हाँ डॉक्टर,
2: सच में। हाँ। आखिरकार हमने कर लिया,
1: कर दिखाया,
2: अपने मकसद में कामयाब हुए।
1: हाँ डॉक्टर।
2: हाँ। हाँ।
0: शोधकर्ताओं को लगा कि वे मधुमेह के इलाज के करीब पहुंच चुके हैं। ये कुत्ता जो उनका दोस्त बन चुका था 92 इंजेक्शनों की वजह से भला चंगा हो रहा था, पर उनके पास जरूरत के मुताबिक अर्क द्रव्य नहीं था। आखिर कुत्ता बीमार पड़ गया, उसके रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ने लगी और वो पेशाब भी बार बार करने लगा और वो कमजोर से कमजोर होता गया। इसके बावजूद वो रोग के साथ और इंजेक्शनों की मदद से पूरे 20 दिन तक जिंदा रहा। डायबिटीज से पीड़ित कुत्ते की मौत पर बेंटिंग के आंसू निकल पड़े, पर इस प्रयोग से इन दोनों शोधकर्ताओं को उम्मीद की किरण भी नजर आई।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम इंसुलिन की कहानी भाग 2। हमारा आज का समय यहीं समाप्त होता है, तो अब मुझे यानी अजीत को और
5: विमलेश को
4: आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबवा की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी RJ राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए

0: समय है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: एक ऐसा फल जो हर उम्र के व्यक्ति को पसंद आता है। जी हाँ, साथ ही अगर हमारे किसान उसका प्रसंस्करण करके उसके उत्पाद की बिकवाली करें तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। कौन सा है ऐसा फल, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: अमरूद की बागवानी पूरे भारत में की जाती है। विटामिन सी और पेक्टिन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर इस फल को आसानी से घर के आंगन से लेकर खेतों की बाड़ और बागों में उगाया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमरूद की खेती अधिक तापमान, गर्म हवा, बारिश, लवणीय या कमजोर मृदा, कम जल या जल भराव की दशा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ये सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम जल निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली रेतीली चिकनी मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में लगाना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, एप्पल कलर, ललित, अर्का मृदुला, श्वेता, पंजाब किरण। ऐसे करें खेत तैयार। पौधे की बढ़वार अच्छी हो और जड़े आसानी से अपनी पकड़ बना ले, इसके लिए खेत की दो बार तिरछी जुताई करें और फिर समतल करें। खेत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी ना खड़ा रहे। अब बात कर लेते हैं पौधे रुपाई के बारे में। तो अमरूद का बाग लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन तैयार पौधों को खेत या बाग में रोपा जाता है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है, लेकिन यदि सिंचाई की बेहतर सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी रुपाई का काम किया जा सकता है। पौधे की रुपाई के लिए पहले 60 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को तैयार करें। इसमें 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 40 से 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन पाउडर को ऊपरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर दें। मिट्टी सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरें। इसके बाद मिट्टी पर सिंचाई करें। गड्ढों में मिट्टी पौधा लगाने के 15 से 20 दिन पहले भर देना चाहिए। इस तरह तैयार गड्ढों में नियत समय पर पौधों की रुपाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। इस फसल में वैसे तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शरद ऋतु में पौधे की सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर और गर्मियों के मौसम में 7 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। साथ ही अमरूद के खेतों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहे। बारिश के मौसम में इस बात का खास ध्यान रखें कि बाग में अनावश्यक पौधे ना उग पाए। इसके अलावा अमरूद में कीड़े की समस्या बारिश के मौसम में ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए नीम की पत्तियों के उबले पानी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं अमरूद में उखटा रोग, तना कैंसर रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। पौधों की मजबूती और सही वृद्धि को बनाए रखने के लिए टहनियों की हल्की छटाई करनी जरूरी होती है। इसकी कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। इस तरह कटाई के बाद नई टहनियों से ज्यादा फल उत्पादन की संभावनाएं रहती है। अब बात कर लेते हैं फलों की तुड़ाई की। पौधा रोपण के 2 से 3 साल बाद अमरूद के फल लगने शुरू हो जाते हैं। तैयार फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है। फलों की तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। फलों को ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए। यदि फल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है तो किसान उसे प्रसंस्कृत करके भी अच्छी आय ले सकते हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अगर एक ही खेत से हमें दोहरा लाभ मिले तो कितना अच्छा होगा। ये संभव हो सकता है। अगर आप धान की खेती करते हैं तो उसी में आप मछली पालन भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपके मुनाफे को दोगुना कर सकता है। कैसे, आइए जानें हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन के जरिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है, जो धान की फसल के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि धान की फसल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पानी से भरे धान के खेत में किसान एक और लाभ ले सकते हैं और वो है मछली पालन। जी हाँ, पानी से भरे इन खेतों में किसान आसानी से मछली पालन कर सकते हैं। इस दोहरे लाभ में धान की पैदावार भी अच्छी होगी और किसान को दोहरा लाभ हो सकेगा। हालांकि धान की खेती और मछली पालन का ये कॉम्बिनेशन नया नहीं है। फिश राइस फार्मिंग चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देशों में काफी लोकप्रिय है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता हमारे किसानों का ध्यान भी आकर्षित कर रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। इस तकनीक में धान की फसल में जमा पानी में मछली पालन किया जाता है। अगर किसान चाहते हैं तो धान से पहले ही मछली का कल्चर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मछली कल्चर खरीद भी सकते हैं। ध्यान रहे कि इस तरीके से मछलियों का उत्पादन खेती, प्रजाति और उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। खेती की इस तकनीक में एक ही खेत में मछली व दूसरे जल जीवों को एक साथ रखा जाता है। इससे धान के उत्पादन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है, बल्कि खेत में पल रही मछलियों को भरपूर चारा मिलता रहता है। तो मछलियों को वेस्ट फसल के लिए जैविक खाद का काम करती है। इसके अलावा मछली पालन से धान के पौधों में लगने वाली कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। फिश राइस फार्मिंग करने के लिए निचली जमीन वाले खेत का चुनाव करें। इस तरह के खेत में काफी आसानी से पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ ही खेत को तैयार करते समय जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद से मछलियों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। फिश राइस फार्मिंग तकनीक में शुरुआत में किसान रोहू, मृगला, मुगली, कतला प्रजातियों की मछलियों का चयन कर सकते हैं। ये मछलियां उथले पानी में आसानी से रह लेती है। साथ ही बेहतर लाभ लेने के लिए धान की लंबे समय में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें, जैसे वानी धान CR26077, ADT6, ADT7। इससे मछलियों को 4 से 5 माह का समय मिल जाता है। ये मछलियां 3 माह में ही करीब 500 से 700 ग्राम की हो जाती है। किसान एक एकड़ के खेत में 400 किलो मछली का बीज या करीब 2000 मछलियां छोड़ सकते हैं। किसान इस बात का ध्यान रखे कि रुपाई के करीब 7 दिन बाद ही मछलियां छोड़े। साथ ही खेत में पानी का स्तर बनाए रखे। धान के खेत में करीब 6 इंच

0: ज्यादा पानी रखें। पानी का स्तर 9 इंच भी रख सकते हैं। इस तकनीक से मिलने वाले लाभ, मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है, फसल का उत्पादन बढ़ता है, प्रति यूनिट एरिया पर कमाई अच्छी होती है, उत्पादन में खर्च कम होता है, फार्म इनपुट की कम जरूरत पड़ती है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, उर्वरक पर कम खर्च होता है। इस तरह किसान उतनी ही भूमि में कम संसाधन में एक ही समय में दोगुना लाभ कमा सकते हैं।
1: तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें।
2: एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। आज किसान कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सीमित क्षमताओं को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। उनके ये प्रयास और उनसे मिली सफलता बाकी किसानों को भी नया करने की प्रेरणा दे रही है। लहलहाते खेतों के बीच चहलकदमी करते ये है किसान परमजीत सिंह, जिन्हें इनकी मेहनत और अलग खेती करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का लंबा दौर जिया है। वो बताते हैं कि पहले उनके परिवार में पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। परमजीत बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तभी से खेती किसानी में अपनी सेवाएं देने लगे थे और बचपन से खेतों में समय गुजारने के कारण परमजीत को खेती से लगाव होने लगा। लेकिन वो खेती में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कम संसाधन में भी अच्छा मुनाफा लिया जा सके। इसके लिए परमजीत ने बदलते वक्त के साथ खेती के तरीकों में भी बदलाव किया और पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जियों की खेती व बागवानी करने लगे।
3: क्योंकि सर जो पुराना समय है, जो ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, खेती तो हम करते थे लेकिन जो रवायती फसल है उसमें इतना मुनाफा भी नहीं हो पाता था। बड़ी मंदे हालात थे उस टाइम के, तो उस समय हमने बड़ा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में। उसके साथ साथ खेती भी करते थे लेकिन उस समय ऐसे हालात थे कि हम एक जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, 2.5 किलोमीटर हमारा स्कूल दूर था जी, तो हम सोचते थे कि अगर साइकिल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उस पे जाके जल्दी आ सकते हैं। लेकिन हालात ऐसे थे, वो भी नहीं था किस्मत में। तो खेती करते करते जो नया रेगुलेशन आया है उसके चलते फिर हमने भी खेती को चेंज किया और नई तकनीक से खेती करने लगे। उसमें सब्जी भी लगाई है, पहले बहुत गोभी वगैरह आलू की हम खेती करते थे, तो जब से फिर हमने खेती का काम पूरे अपने काम उससे किया है तो फिर इसको चेंज किया है और नई नई तकनीक से हमने खेती की है, हर तरह की मशीनरी का हमने प्रयोग किया है।
2: समय बीतता गया, नफा नुकसान लगा रहा, लेकिन उनकी मेहनत तब ज्यादा रंग लाई जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। हालांकि शुरू में एक छोटे से हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की, लेकिन इससे जो मुनाफा मिला उसने परमजीत के लिए सफलता के नए द्वार खोल दिए। आज परमजीत करीब 10 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग किस्में लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई फसल के लिए कैसे बाजार तैयार किया और कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए जानते हैं उन्हीं से।
3: और ये हमारी एक हिमाचल में मुंहबोली बहन है जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ। मैंने दो जो एक एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था, तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी पांच से छह एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। पहले पहले तो लगाई हमने, स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियां लगती हैं चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है। उसमें मेरे को बहुत फायदा मिला है, क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है, तो उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी, स्ट्रॉबेरी का, और लड्डू और बर्फी भी बना के सेल किए हैं, और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे।
2: स्ट्रॉबेरी भारत की जलवायु में ठीक से तालमेल बिठा सके, इसके लिए स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। परमजीत जी किन किस्मों को लगाते हैं, आइए जान लेते हैं।
3: हम हिमाचल से जो पुराना पौधा है उससे पौधा तैयार होता था, वो लगाते थे, उसकी प्रोडक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी और कम भी रहती थी, तो धीरे धीरे हमें भी जैसे जैसे काम करते आ रहे हैं तो पता चलता आ रहा है, तो फिर हमने जो इसका वैसे ये बाहर की वैरायटीज है, बाहर की फार्मिंग है, और इसका जो पौधा है वो भी कैलिफोर्निया, अमेरिका से और इटली वगैरह से आता है, जो हम वहां से मंगवाते हैं। पुणे की एजेंसियां हैं दो तीन, एक प्लांट पैराडाइज है, जैन ट्रेडर्स वाले हैं, और हैं दो तीन, वो बाहर से मंगवाते हैं मदर प्लांट, तो मदर प्लांट उनसे लेके 70 रुपए प्रति प्लांट के हिसाब से हमें वो मदर प्लांट मिलता है, उसको हम प्लांटेशन करवाते हैं हिमाचल में। टोटल इसकी जो पूरे संसार में वैरायटीज हैं वो तो 7 और 8 के करीब हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी, जो अर्ली वैरायटी है नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती है, 10-20 रुपए का फर्क रहता है, लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज्यादा कम है। जो कैमरोज है या ऐसे है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है।
2: परमजीत जी आज जिस मुकाम पर है वहाँ बागवानी विभाग का काफी सहयोग रहा है। वो बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने हर कदम पर साथ दिया, वहीं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी मदद की। आज आलम ये है कि परमजीत सिंह का उदाहरण देकर बागवानी विभाग काफी किसानों को भी आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है।
3: जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का ब्लॉक का, उसमें एचडीओ है युवराज भारद्वाज, उसने हमें इतना मोटिवेट किया है, उसने हमें बताया कि आप ये खेती करो, आपको इसमें ये मुनाफा है, तो इसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी, कि वो आगे जो 4-5 और मेरे गांव के लड़के हैं वो भी जैसे मशरूम वगैरह या स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहते हैं, उनकी हेल्प के लिए भी जुटे हुए हैं। बढ़िया है जी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमें बढ़िया मिला है।
4: 5 साल से जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने 1 एकड़ से 1/2 एकड़ से स्टार्ट किया था काम, उसे बहुत सी प्रॉब्लम आई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की आई दिक्कत, उसके बाद लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई, ये इनकी फैमिली का और इनके जो गांव का वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम रहा, उनका साथ रहा है, उसकी वजह से जो ये हैं आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आज इन्होंने 10.5 एकड़ लगाई हुई है, लास्ट टाइम जो इन्होंने 4.5 एकड़ लगाई थी, तो इन्होंने बोला इनका टारगेट जो है 25 एकड़ तक लगाने का इस स्ट्रॉबेरी का है। 2015 से मैं इनके टच में आया हूँ, तब से मैं लेके आज तक इनको तो हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनको बुलाते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं इनके गांव में, जैसे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और गांव के जो फार्मर्स हैं उनको इस हॉर्टिकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए ये उनको उत्साहित कर रहे हैं इस टाइम, और हमारे साथ हर साल 1-2 फार्मर इनकी वजह से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं।
2: आज परमजीत सिंह जी ने अपने कृषि के दायरे को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वो ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी तो बाकी सीजन में अंतर फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हो भी क्यों ना, इसी खेती ने आज उनके कई सपने साकार कर दिए हैं।
5: रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आप सुन रहे थे इस रेडियो रिपोर्ट को और जाना कि किस तरीके से हम अमरूद की बागवानी किस तरीके से कर सकते हैं, साथ में पशुपालन किस तरीके से कर सकते हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, धान की बुवाई हम कैसे कर सकते हैं, सफल किसान की कहानी को भी जाना कि किस तरीके से हमारे पंजाब के किसान ने स्ट्रॉबेरी करके अपनी आय में वृद्धि की है। तो ऐसी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ तीन ही खेती में फसलें उगाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें देखना होगा कि हमारे मिट्टी में कौन तत्व, किस तत्वों की कमी है, उस तत्वों को हम पूर कर हम किसी भी फसल को हम लगा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यानी विराम लेते हैं, इसके बाद हम छत पर बागवानी करने के तरीके किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उस विषय पर हमारे विषय विशेषज्ञ की सलाह हम जान लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। अपना रेडियो अपनी बात है।

0: समय है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आज मेरा नर्सरी में आने का जो मकसद है वो बहुत सिंपल है कि हमने अगर टेरेस में या बैल्कनी में अपने गार्डन बनाना है तो हमको किस किस चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पर नर्सरी में आने से पहले आपको अपने घर का पूरा म्योना करना पड़ेगा। समझो मैं टेरेस में खड़ी हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरा टेरेस कौन सी डायरेक्शन का है, साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, या खुले टेरेस में मेरे को चारों डायरेक्शंस मिलती हैं। डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने किस किस्म का पौधा लगाना है वो आपका डायरेक्शन ही बता पाएगा। बालकनी का भी यही हाल है। सेकंड, आपको किस चीज का शौक है, आपको फलों के पेड़ों का शौक है, आपको फूलों का शौक है, आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक है, या आपको सिर्फ ग्रीनरी का शौक है, जैसे आप फॉलिएज ही लगाना चाहते हैं, तो वो सब चीजों में आपको अपना डायरेक्शन देखना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं समझा दूं, सबसे ज्यादा धूप जो है वो साउथ में और वेस्ट में रहती है, तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन जरूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए और उसके बाद आप नर्सरी में आइए। अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए

0: जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए माली आओ जल्दी आओ या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए।
1: जब आप एक प्लांट को अपने घर लेकर आते हैं तो आपने उसकी देखभाल उसी तरह करनी होती है जिस तरह आप एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके प्लांट की हेल्थ कैसी है। जब एक प्लांट आपके घर आता है तो इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता है। ये देखना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी है, उस प्लांट में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि अगर आप बीमारी या कहीं डिजीज वाला प्लांट अपने घर ले आएंगे तो उसकी ग्रोथ होने में डिफिकल्टी हो सकती है। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से।
0: अगर आपके डॉक्टर, आपका जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको अपने आसपास में एक लोकल नर्सरी के साथ जरूर रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से जो आप पौधा लेके आएंगे वो आपको सही पौधा मिलेगा, क्योंकि नर्सरी वाले को अपनी रेपुटेशन भी संभाल के रखनी है। बड़ी बार लोग करते हैं मैं देहरादून से पौधा ले आई, मैं ये वाला पौधा केरला से ले आई या ये वाला पौधा मैं गुजरात से ले आई। बहुत अच्छी बात है, एक आधा पौधा आपके गार्डन में ऐसा हो व्हाई नॉट, बट अगर वो पौधा खराब हो जाता है तो आप किसको पकड़ेंगे। पर आपका अगर लोकल नर्सरी वाला होगा तो आप

उसको पकड़ सकते हैं, और उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपका पौधा एक्सचेंज भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने गलत सीजन में गलत पौधा दे दिया है। आप बड़ी बार देखेंगे लोगों को आजकल सक्यूलेंट एंड कैक्टाई का बहुत शौक हो गया है, बहुत सुंदर वैरायटीज उसमें आती हैं, पर कब हमने वो लेनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नर्सरी वाले भी सक्यूलेंट्स एंड कैक्टाई को एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं संभाल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं 70% ऑफ पे आपको दे देते हैं और आप भाग के जाके सारे उठा लाते हो, पर एक एक करके वो आपके घर में खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इम्पल्स बाय मत करिए। एग्जीबिशन देखी तो भाग के जाके सारे पौधे उठा लिए। इम्पल्स बाय में ज्यादा से ज्यादा पौधे नहीं चलते, दे आर कॉल्ड वन सीजन प्लांट। अगर आपने ट्यूलिप लाना है तो एक ही सीजन चलेगा, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं उस बल्ब को हर साल चला पाऊंगी, मुश्किल हो जाती है। नर्सरी वालों को इतनी मुश्किल होती है तो हम लोगों को क्यों नहीं होगी। एंड नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर्स हैं हमारे पास, गर्मी है तो भीषण गर्मी है, सर्दी है तो बहुत ठंड है, तो पौधों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई पौधा लाएं उसका पहला सीजन, हर जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है, अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी जिंदगी आपका ख्याल रखेगा। वो साउथ में और वेस्ट में रहती है, तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन जरूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए और उसके बाद आप नर्सरी में आइए। अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीजों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फोटोज खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को तो वो आपकी बहुत मदद कर दे।

जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए माली आओ जल्दी आओ या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए। अगर आपके डॉक्टर आपका जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको हर जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी जिंदगी आपका ख्याल रखेगा। जीप पे मरना शुरू हो जाता है और आप बड़े हैरान होते हो और आप कहते हो पौधा तो मैं बहुत हेल्दी लाया था या लाई थी और 10-15 दिन तक भी ठीक रहा, पता नहीं अब क्या हो गया, मेरा पौधा खत्म हो गया। तो उसके बारे में आप समझिए, उस पौधे को जो प्रोटेक्शन मिली है वो प्रोटेक्शन हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ग्रीन हाउस में जो पौधे पड़े हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनको घर लाके
अपने बैल्कनी में या अपने छतों पे रखने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी, या तो आपको पहले ये पौधों को कुछ टाइम के लिए शेड में रखना पड़ेगा, जैसे आपके घर में कोई नीचे पेड़ है, पेड़ के नीचे में उसको रखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करके उसको वो हार्श कंडीशन में लेके आइए। पौधे की हेल्थ की एक और बात मैं जो बताना चाहती हूँ, पौधे का जो स्टेम होता है वो बहुत अच्छी से देखिए। बड़ी बार क्या होता है, गमले के ऊपर से ही या पन्नी के ऊपर से ही 3-4 टहनियां निकल के आ जाती हैं, वो ठीक नहीं है। मैक्सिमम आपके पास 2 टहनियां ही निकल के आनी चाहिए। आप अगर ग्राफ्टेड पौधा ले रहे हैं, एक तो वो महंगा पड़ता है, पर वो ग्राफ्टेड पौधे में आपने देखना है कि वो ग्राफ्टिंग कहां से हो रही है। अगर बिल्कुल ही जड़ के पास से ग्राफ्टिंग है तो उसको मत लीजिए। कम से कम आपके गमले में 6-8 इंच का एक, जैसे कहते हैं ना, क्लीन स्पेस होना चाहिए और उसके बाद ग्राफ्टिंग हो तो वो पौधा ज्यादा अच्छा रहता है। जो पौधा अपनी ग्रोथ कहां से लेता है, पौधा अपनी ग्रोथ स्टेम से लेता है। वो स्टेम अगर अच्छी स्ट्रांग है, मजबूत है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग कह सकते हैं वो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बहुत बार आप देखते हैं लोग कुप करके बैठ जाते हैं या सीधा बैठ नहीं पाते हैं, लेट जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बैकबोन स्ट्रांग नहीं होती है। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रांग है तो आपकी सेहत अच्छी होगी। इसी तरीके से अगर आपका स्टेम स्ट्रांग है तो पौधा

0: की मजबूत रंग की है तो रखना है।
1: तो रंग बिरंगे पौधों को देख के मन मचल जाता है, खासकर फूल वाले जो गमले होते हैं उनको देख के लगता है सारे के सारे अपने घर में ले आएं। पर आपको समझना आना चाहिए कि जब फूल लगे हों तो वो वाला पौधा मत लीजिए, जिसमें बड्स हों, कलियां हों, उसको लीजिए। क्योंकि जब आप ये फूल वाले पौधों को घर लेके जाएंगे, जैसे ये पौधे को आप घर लेके जाएंगे, इसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो ये ग्रीन हाउस के अंदर है। इसको आप जब घर लेके जाएंगे तो ये सारे के सारे इसके जो फूल हैं ये ड्रॉप हो जाएंगे और आप फिर वेट करते रहेंगे शायद नेक्स्ट सीजन के लिए, जब इसमें फिर से फूल आएगा। पर अगर आप कलियां लेके जाएंगे, जैसे ऐसे कलियों वाला पौधा लेके जाएंगे, तो ये पौधा आपके घर में जाके एडजस्ट हो जाएगा और स्ट्रेस में आने के कारण ये जो कलियां हैं ये फूल बन जाएंगी, और जब ये फूल बन जाएंगी आपका गार्डन बहुत ही शानदार हो जाएगा। पौधा लेने के टाइम डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी हैं। आप किसी स्कूल में जाएंगे तो वहां भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही आप चलते हैं, तो पौधों में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अब डूज क्या होते हैं? आपके पौधे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टेम अच्छा होना चाहिए, उसमें जो ब्रांचिंग है वो अच्छी से हो, पर नीचे से पौधा उठ रहा है वहां पे आपकी ब्रांच एक या दो होनी चाहिए। एक या दो ब्रांच के बाद वो इस तरह करके अगर ब्रांचिंग करेगा तो वो पौधा आपका बहुत अच्छा हेल्थ लेगा। अननेसेसरी उसमें ब्रांचेस ना हो, जैसे इनवर्ड ब्रांचेस जो हम कहते हैं कि इधर से आपकी ब्रांच इधर आ रही है, इधर से ब्रांच इधर आ रही है, वो क्या करती है, हवा की डायरेक्शन को भी खराब कर देती है। तो आपको वो क्लिप करना है। टाइम टाइम पे आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है, टाइम टाइम पे आपको उसको खाना पीना देना है। तो जब आप पौधे को घर लेके जाएं, सबसे पहले जरूरी चीज है पौधे को एकदम तुरंत उसको लगाने की कोशिश मत करिए, उसको वहां पे छोड़ दीजिए अपने घर में मिट्टी पे, उसको एक्लिमेटाइज होने दीजिए, उसको आपकी हवा आपके एनवायरमेंट के साथ जुड़ने दीजिए। जो भी आप चीज करें स्टेप बाय स्टेप करें। पौधा जब भी लगाएं शाम को लगाएं, सुबह लगा के धूप में रख देंगे पौधा एकदम मुरझा जाएगा। बहुत अगर गर्मी है तो पौधों को घर के अंदर में ले आइए, उसको फिर शाम को फिर बाहर निकालिए। जब भी आप उस पे कोई दवाई छिड़कना चाहते हैं तो दवाई याद से शाम को छिड़केंगे, पर अगर आप उनको कोई नरिशमेंट देना चाहते हैं तो वो आप हमेशा सुबह में देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, और आपको अपने गार्डन का पता चल जाएगा तीन चीजों से, जिसको कहते हैं 3 B's, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज। अगर आपके गार्डन में ये तीन चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है आपका गार्डन बहुत अच्छी से चल रहा है। तो ये आपके गुड गार्डन के साइंस होते हैं। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप कोई कोर्स करते हैं, तो अगर आपको 3 B's का सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब है आपका गार्डन इज डूइंग वेरी वेल।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी हमने जाना कि किस तरीके से हम छत पर बागवानी कर सकते हैं, किस तरीके से नर्सरी लगा सकते हैं अपनी छतों पर, कौन कौन पौधे हम अपने छत पर लगा सकते हैं, ये सारी बातों को हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। साथ में हमने किसान साथियों ने जाना कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी हम कर सकते हैं, पशुपालन में किस तरीके से सावधानी, कौन सा जो महीना चल रहा है इस बरसात के मौसम में हम किस तरीके से अपने पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, ये सारी बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। नमस्कार।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है साहित्य और संगीत की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी संवेदनशील रचनाकार मौजूद हैं जिन्होंने जीवन की साधारण भूमिकाओं को अपनी असाधारण ताकत बनाया है। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और एक गृहिणी, इन्हीं अनुभवों की मिट्टी से जन्मी एक सशक्त कवित्री और लेखिका अनिजय वर्गीय जी। इनकी लेखनी में रिश्तों की गर्माहट है, प्रेम की अनुभूतियां हैं और जीवन के अनगिनत रंग हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए समय निकालकर इन्होंने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी कविताएं सदा संकलनों, शब्द शब्द कस्तूरी, नारी आदि में प्रकाशित हो चुकी हैं। महिला काव्य मंच, राष्ट्रीय शब्द और राग समूह, प्रहरी मंच और परसाई मंच जैसे साहित्यिक मंचों से जुड़कर इन्होंने मुंबई की साहित्यिक दुनिया में अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इनकी आगामी पुस्तक करची से कलम तक केवल एक शीर्षक नहीं बल्कि एक स्त्री की खूबसूरत रचनात्मक यात्रा की कहानी है। कविता के साथ साथ कथक और मधुबनी कला में भी इनकी गहरी रुचि है। तो आइए आज मिलते हैं उस संवेदनशील कलम से जो जीवन के हर भाव को शब्दों में पिरोना जानती है। हम स्वागत करते हैं कवित्री और लेखिका अनिता विजय वर्गीय जी का। अनिता जी का आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अभिभूत हूँ आज रेडियो पर आकर, लगता है बहुत ही मजा आने वाला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अनिता जी, आपने हमारे दिल की बात कह दी, बिल्कुल मजा आने वाला है। आपकी आवाज सुन के ही हमको बहुत अच्छा लग गया है। तो चलिए शुरुआत फिर शुरुआत से करते हैं, और शुरुआत आपके बचपन से ही कर लेते हैं। तो बताइए अनिता जी, कैसा आपका बचपन, पारिवारिक परिवेश कैसा था, कुछ अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में श्रोताओं को बताइए, कहाँ बड़ी कहाँ पली बड़ी हैं आप।
2: जी जी, बचपन का नाम आते ही ये दो पंक्तियां मेरे दिल में आती हैं कि निर्भय निश्चल बेफिक्रा प्यारा सा भोला बचपन, खो जाता यादों में इसकी मेरा बावरा सा ये मन। तो बचपन तो किसी का भी हो, आपका मेरा हम सब का, हम बचपन की गलियों में ऐसे खो से जाते हैं। तो बचपन की जो आपने बात कही है, तो बचपन मेरा राजस्थान के अलग अलग शहरों में बीता, और बहुत ही कभी बड़ा शहर था, कभी हम छोटे शहर में गए, गांव में गए, तो कभी हमने खेत खलिहान देखे, तो कभी हमने शहर देखे, तो इस तरह से हमारा बचपन बीता।
1: तो अनिता जी, अब ये बताइए कि आपने बचपन के बारे में बताया, आपकी जगह जगह शिक्षा हुई, तो क्या बचपन से ही साहित्य, कविता या कला या लिटरेचर की ओर आपका झुकाव था, या रुचि ये बाद में विकसित हुई, कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे हाँ। आपका शुरुआत
2: जी, बचपन में तो साहित्य की तरफ इतना रुझान नहीं था, और मतलब घर में भी कोई ऐसा विशेष साहित्यिक माहौल नहीं था। हाँ, मेरा नृत्य और पेंटिंग इस तरफ काफी, कला की तरफ इस तरह की काफी झुकाव रहा, लेकिन साहित्य के प्रति रुचि बाद में विकसित हुई।
1: जी, तो अब ये बताइए, आप कई तरह के रोल निभा रही हैं, आप एक बेटी भी थी शुरू में, पत्नी माँ गृहिणी के रूप में, तो ये कैसे आपको अनुभव रहे इस सारे दौर में, और इसके साथ में आपकी साहित्यिक यात्रा भी शुरू होती रही, और फिर
2: जी
1: आपने
2: जी
1: बंबई की यात्रा आपकी कैसे शुरू, इसके बारे में बताइए, तो थोड़ा हम आगे चलें।
2: मैं ये कहूंगी कि स्त्री का ये नैसर्गिक स्वभाव ही है कि वो अलग अलग रूपों में ढल जाती है, कभी बेटी, कभी बहू, कभी पत्नी, कभी बहन, कभी गृहिणी, हर रूप में ढल जाना उसकी प्रकृति होती है। और उसके हृदय की मरुधरा पे हर नया रिश्ता अंकुरित होता है जिसको वो अपने प्रेम से सींचती रहती है जीवन भर। लेकिन ये जो उसका जीवन पूरा इसी तरह से व्यतीत होता है, जब जीवन के उत्तरोत्तर समय में जब वो एक थेरेपी आती है 40+ 50 पर मिडिल एज में, तब जाके वो मुड़ के देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसने किन किन रूपों को इस तरह से जिया है, और वो ये सारे एहसास उसको बाद में होते हैं। पहले तो वो सब रोल निभाती रहती है, उसे खुद को नहीं पता होता है कि वो क्या निभा रही है, लेकिन उसके उत्तरोत्तर जीवन में जब देखती है तब उसे समझ आता है। तो मैंने जो ये मिडिल एज्ड वुमेन होती हैं, उन्हीं को मैंने सांझ सी औरतें नाम दिया है। वो जीवन के सांझ की तरह होती हैं, तो सांझ सी औरतें, तो उन्हीं के ऊपर आपका जो प्रश्न है ना, उसका जवाब इस कविता में आपको जरूर मिलेगा। तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। अक्सर चलते चलते यू रुक सी जाती हैं, मुड़कर ठहरना नहीं जानती, ये सांझ सी औरतें ढलना नहीं जानती। एक ही जीवन में कई जन्मों के रंग समेटे, बिखरना नहीं जानती ये सांझ सी औरतें, क्या क्या नहीं जानती। टूटती हैं, बिखरती हैं, फिर जन्म लेती हैं और सवर जाती हैं हर जन्म के साथ। उम्र के उत्कर्ष में हर पड़ाव पर लेती हैं नया जन्म, बार बार हर बार निसार होना जानती हैं ये सांझ सी औरतें, बीमार होना नहीं जानती। पहला जन्म जब माँ ने छुआ और दूसरा जब स्वयं माँ बनी, न जाने इस दौरान वह खुद कितनी बार जन्मी, बाबुल के आंगन से पिया की दहलीज तक न जाने कितने किस्सों की साक्षी बनी, और हर बार निखर आई नए रंगों में। ससुराल में धीरे धीरे सबके मन को छुआ, अनगिनत रिवाजों में दबी छुपी आवाजों में हजार बार गिरी और संभली, हर तजुर्बे का रंग अपने चेहरे पर ओढ़े दरिया की धार सी औरतें, अधिकार नहीं जानती हर ऊंच नीच से वाकिफ, दर्द को अपने आंचल में समेटे इनकार नहीं जानती ये सांझ सी औरतें, क्या क्या नहीं जानती। जी
1: भाई मजा आ गया, आपने तो एक तरह का पूरा शब्द चित्र खींच दिया हमारे सामने भारतीय महिलाओं का, और जिस तरह की ये सांझ का से जो आपने इसको कम किया है और बताया है, बहुत बहुत सुंदर। और मैं तो कहूंगा कि जो हमारी भारतीय महिलाओं का जीवन है किस तरह से, और जो ये नैसर्गिक शब्द आपने यूज किया है ना, कि उनकी एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, एक नैसर्गिक एबिलिटी होती है, कि आपने इन सारे रोल्स में वो इतना स्मूथली ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं एक रोल से दूसरी और की तरफ। तो ये बात सुन के और इस कविता में जिस तरह से आपने इसको पिरोया है, बहुत मजा आ गया। बस तो मैं आपसे एक गाने के लिए एक हम रुकना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए आप कि बम्बई आप कैसे पहुंच गई राजस्थान से।
2: ये तो मुंबई तक तो या तो लोग हीरो हीरोइन बनने पहुंचते हैं और मैं तो इसलिए पहुंची।
1: आप भी ऐसे ही पहुंची थी क्या, आपका क्या प्लान था वहां जाके?
2: नहीं, ऐसा नहीं। वो बोलते हैं ना कि बस जहाँ पिया का घर होता है वही अपना घर होता है, तो मेरे पति यहाँ पर काम कर रहे थे तो शादी के बाद मैं मुंबई आ गई। जी
1: चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो आपने पिया के घर की बात करती है, मेरे ख्याल में तो ये जया भादुड़ी की कोई पिक्चर थी, तो क्यों नहीं आज उसी का गाना सुन लेते हैं, आपका पिया का घर का गाना सुन लेते हैं ना। तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर आगे का सवाल में लेके आता हूँ।

0: हाँ, वेलकम बैक अनीता जी। अब
1: जी
0: शुरुआत करते हैं, थोड़ी आपकी कविता और लेखन की बातचीतें करते हैं। तो अब ये बताइए अनीता जी, की कविता से आपका रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ, और ये वो कौन सा ऐसा क्षण था जिसने आपको कलम उठाने के लिए प्रेरित किया? मतलब कभी कभी ट्रिगर होता है लाइफ में कि भाई इसकी वजह
1: जी
0: से मैं लेखन में मेरा जुड़ाव हुआ। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, घटना भी हो
1: जी
0: सकती है, कोई अपना
1: जी
0: भी हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
1: जी हाँ, ये ना आलोक जी, ये बहुत ही रोचक एक संस्मरण है, एक
0: जी
1: घटना है जो कि कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है।
0: जी
1: तो हुआ यूं कि मेरी जो बेटी है उसके स्कूल में हिंदी विषय का एक प्रोजेक्ट दिया गया बच्चों को,
0: ओके
1: और उसमें उनको डाकिया पर सब कुछ करना था। उन्हें डाक टिकट चिपकानी थी, उन्हें डाकिये की फोटो मतलब लगानी थी, और एक कविता उन्हें हिंदी में डाकिये पे लिखनी थी।
0: ओके
1: तो
0: अच्छा
1: और चूंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और मुंबई में हिंदी जो है, आप जानते हैं मुंबई में बच्चों को कितनी
0: मैं बिल्कुल, वहां
1: हिंदी
0: हिंदी का,
1: पढ़ाई
0: हिंदी में
1: जाती
0: हाथ
1: है।
0: तंग है थोड़ा, बिल्कुल
1: हाँ,
0: सही
1: तो
0: बात,
1: वो लाजमी था कि मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करती। तो
0: बिल्कुल
1: उस वजह से वो जो कविता लिखनी थी उस तब मैंने कलम उठाई और मैंने वो कविता लिखी, और उस कविता की चार पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं।
0: हाँ सुने।
1: हाँ बिल्कुल, तो ये कविता थी डाकिये को समर्पित। सूनी पगडंडी पर थी उनकी नजर, सूनी पगडंडी पर थी उनकी नजर, शायद कोई आए इस डगर। तभी साइकिल की घंटी बजाता डाकिया आया, लगता है आज सरहद पार से फौजी ने संदेशा भिजवाया। फौजियों के साथ साथ डाकिये को भी सलाम, जो करते हैं दिलों को जोड़ने का काम। तो ये छोटी सी कविता मैंने डाकियों उनके लिए, पोस्टमैन के लिए लिखी थी, और मतलब लिखनी पड़ी थी क्योंकि वो प्रोजेक्ट में देनी थी। तो इस तरह से कलम हाथ में आई, और जब उसके फ्रेंड्स वगैरह ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप लिख सकती हो, मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप और अच्छा लिख सकते हो, तो आप लिखा करो। तो वो भी यात्रा वहां शुरू नहीं हुई क्योंकि तब बच्चे छोटे थे और बड़े भी परिवार में थे, तो उनकी जिम्मेदारियों के बीच में वो लेखन को कहीं पंख मिले नहीं। फिर बाद में जब थोड़े बच्चे बड़े हुए उसके बाद मैंने लिखना वापस से शुरू किया।
0: वाह, बहुत सुंदर, ये बात तो बहुत सही है। लेकिन आपने जो करेक्टर पहला लिया था डाकिया, अब तो वो बिल्कुल विलुप्त प्राय सा ही हो गया है। ना
1: जी
0: डाकिया रह
1: जी
0: गया है, ना लेटर बॉक्स रह गए, लेटर बॉक्स भी नहीं
1: जी
0: दिखते अब तो कहीं भी।
1: हाँ, अब
0: जबकि
1: तो
0: वो किसी
1: हाँ
0: जमाने में तो डाकिया आया करता था, अब जब से कोरियर
1: भाई,
0: आने शुरू हो गए तब तो बात ही खत्म हो गई।
1: हाँ, तो वो जो कहते हैं ना खतों की महक एक अलग ही हुआ करती थी उस जमाने में।
0: बिल्कुल सही बात है। तो आप ये बताइए कि जब आपने कविताएं लिखना शुरू की, तो आपने जब अपनी पहली रचना कभी किसी को सुनाई होगी, तब कैसे प्रतिक्रिया मिली? मतलब जब आपने और लिख
1: जी
0: दिया, ये
1: जी
0: मान लिया पहली कविता तो ये डाकिये पे हो गई, इसके
1: हाँ
0: अलावा
1: हाँ
0: जब आपने और, तो आपने विषय का चुनाव कैसे किया कि भाई मैं ये विषय लूंगी ये लूंगी, कुछ बताइए
1: तो
0: इसके बारे में।
1: नहीं, ये तो मतलब ऐसे होता है ना कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो हमें याद भी नहीं होता कि उसने कब चलना शुरू कर दिया। तो वैसे ही ये जो है कविताओं की यात्रा है कि हम मतलब प्लान नहीं किया होता है कि हम पहली कविता का क्या विषय लेंगे, या ये सब स्वतः ही होता चला गया। तो ये जो सबसे पहली बार हुआ वो क्योंकि मुझे करना पड़ा इसलिए मुझे याद था, उसके बाद जो आगे क्या विषय होगा कैसे होगा वो अपने आप ही होता चला गया।
0: चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके इस डाकिये पे रुक के हम एक अच्छा सा डाकिये वाला गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ, वेलकम बैक अनिता जी।
1: जी
0: अभी
1: जी
0: थोड़ा आते हैं आपके मुंबई के साहित्यिक जगत के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, कोई छोटा शहर होता है, वहां अपनी पहचान बनाना फिर भी रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन मुंबई जैसे साहित्यिक जगत में आपने इतने मंचों पर काव्य पाठ भी किया है, इतनी संकलन में आपका प्रकाशन भी हुआ है, तो उसके बारे में हम कुछ बताइए हमें कि वहां किस तरह से आपने अपनी पहुंच बनाई, किस तरह से पहली बार वहां गई, आपको कौन लेके गया, कुछ ऐसी बातें बताइए हमें।
1: जी जी तो जैसे जब भी आप किसी चीज से जुड़ते हैं ना, तो रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाते हैं। तो वही यहाँ मुंबई में भी वैसा ही हुआ। और मुंबई में भी जब तक मैं साहित्य से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतना सब कुछ, मतलब हिंदी साहित्य भी इतना समृद्ध है। तो हाँ, तो धीरे धीरे, मतलब जैसे ओपन माइक्स में आप परफॉर्म करते हो, वहां पर आप जाते हो, वहां पर आपसे लोग जुड़ते हैं, फिर वो किसी और जगह पर आपको बुलाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक चेन बन जाती है और आप नए लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो महिला काव्य मंच के अध्यक्ष हैं, अलका अग्रवाल जी सिकदिया, वो व्यंगकार हैं काफी नामी, तो उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा और उसके बाद काफी चीजों से हम जुड़ते चले गए।
0: तो इस महिला काव्य मंच, राष्ट्रीय शब्द और राग समूह जैसे मंचों से आप जुड़ी, तो यहाँ क्या क्या फॉर्मेट क्या होता है, जैसे आप सब लोग अपनी अपनी कविताएं पढ़ते हैं या क्या,
1: तरह
0: किस तरह से सब लोग, क्या सिस्टम होता है?
1: से जी, जैसे महिला काव्य मंच और ये जितने भी मंच हैं, वो एक्चुअली कोविड के बाद में काफी सक्रिय हो गए, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को लगा कि हमें अपने फुर्सत के क्षणों में किस तरह से, मतलब लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो ऑनलाइन ही गोष्ठियां होने लगी और ऑनलाइन ही काफी कुछ एक्टिविटीज होने लगी। तो ये जितने भी इस तरह के ग्रुप्स हैं, वो काफी एक्टिव हो गए। तो उनका फॉर्मेट यही होता है कि महिला काव्य मंच में तो महिलाएं हैं, चाहे वो 4 साल की हो, चाहे वो 80 साल की हो, उन्हें महत्व दिया जाता है और वो अपनी भावनाएं किसी भी रूप में वहां आके कविताओं के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। और फिर हमारे एनुअल डेज भी होते हैं, और
0: अच्छा।
1: भी जब पॉसिबल होता है तो फिजिकल मीटिंग भी होती है, और इस तरह से अच्छे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं।
0: तो वहां इस मंचों पर आपने आपकी कौन सी प्रस्तुति या काव्य पाठ ऐसा आपने किया जो आपके बहुत करीब है और हमें सुना सके, तो एक कविता भी सुना दीजिए उसी
1: अच्छा
0: वही
1: अच्छा
0: में से पढ़।
1: एक्चुअली काफी सारी कविताएं हैं जो हम पढ़ते रहते हैं और जो कहते हैं दिल के करीब है। तो उस जैसे एक कविता, खत खत नुमा कविता एक मैंने लिखी थी, मेरे बेटे के लिए लिखी थी जब वो मिलिट्री में जा रहा था।
0: अरे वाह, अच्छा,
1: हाँ
0: आपका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में, ओके, वंडरफुल।
1: जी। तो देखिए, ये जो जीवन की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, जो पहली कविता मैंने लिखी थी वो ये थी कि सरहद पे फौजी और पोस्टमैन, उसका रिलेशन, और वो जो माँ बाप हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो वो बाद में जाके मेरे जीवन की कहानी बन गई, क्योंकि बेटा वहां पर सरहद है और हम यहाँ पर हैं। तो ये सारी, तो मैंने जब जिस समय वो तैयारी कर रहा था, वो जैसे कहते हैं ना, वो मेरे जो दिल के उद्गार थे, वो कविता मुझे बहुत प्यारी, वो काफी लंबी है, तो मैं सोचती हूँ कि हम कभी उसको और सुनाएंगे। और बाकी वो कविता मेरे दिल के बहुत करीब है जी।
0: नहीं, उसमें से अगर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहें तो सुना दीजिए, या कोई और अन्य सुना दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं।
1: एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। काश
0: जी
1: तुम समझ पाते, काश तुम समझ पाते, महक जाता है मन मोगरे के गजरों से, हीरों के हार किंचित चुभते हैं शूल की तरह। काश तुम समझ पाते। चांद तारे नहीं, ख्वाबों की जमी और तेरी बाहों का बिछौना, बस यही तो सामा है मेरी चाहत का, काश तुम समझ पाते। बुलंदियों के उरूस पर जो हासिल हुआ वो वक्त हमारा नहीं, जो तुम चुरा लाते चंद लम्हे प्रेम के वक्त से छीन कर, बस उन्हीं लम्हों को बांध कर रख लेती मैं प्रेम के आंचल की कोर में छुट्टे सिक्कों की तरह, और जीवन की थाप पर हर बार वो खनक सुन पाते, तुम भी मैं भी काश तुम समझ पाते।
0: अरे वंडरफुल, बहुत बहुत सुंदर, और शब्दों का चयन और बहुत अच्छा, और आपने एक इसमें शब्द यूज किया उरूज, जो उर्दू का शब्द है, और हिंदी वाले बहुत कम उस शब्द को यूज करते हैं। मेरा थोड़ा सा उर्दू से लगाव है और मैं बोलता भी हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपने एक हिंदी की कवित्री ने इतना अच्छा और बड़ा उसका बड़ा अच्छा यूज किया आपने, और आपकी जो भावनाएं ये तो बहुत अच्छी है। मैं तो थोड़ा सा इस पे और बात करना चाहेंगे, तो अच्छा ये बता दीजिए आप शॉर्ट में कि कोई प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार या सेलिब्रिटी ने भी आपका काम को अप्रिशिएट किया है, कुछ उनके बारे में बताइए, अनुभव है इसके साथ।
1: देखिए सेलिब्रिटीज का जहां तक सवाल है, मुंबई में आप जानते हैं कि काफी प्रोग्राम्स होते हैं और हम लोग काफी लोगों को देखते भी हैं, उनसे कुछ सीखते भी हैं, अच्छा लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कविता पाठ के समय वो है या नहीं है, ऐसा भी हो जाता है खैर, लेकिन हाँ इच्छा है कि किन्हीं सेलिब्रिटी तक हमारी बात पहुंचे और वो उसको सराहे तो उसकी खुशी अलग ही होती है। पर मुझे मेरी एक कविता है उसके जो उन्होंने एक पत्रिका आती है उसमें उन्होंने उसकी काफी अच्छी समीक्षा की, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जी, और उसका मतलब मुझे हमेशा दिल दिमाग में उनकी प्रतिक्रिया जो उन्होंने दी वो छपी हुई रहती है कि अगर प्रतिक्रिया अगर कोई दे तो ऐसी दे। जी
0: नहीं तो नाम तो बताइए उनका जिनने आपकी समीक्षा।
1: उनका नाम मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से, हाँ अक्सर उनका नाम है जितेंद्र जी जीतांशु, हाँ जी वो सदीनामा पत्रिका चलाते हैं, तो उन्होंने इस तरह से जी।
0: चलिए तो जितेंद्र जी के नाम से और उनकी साहित्यिक यात्रा के नाम पे रुककर हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं
1: जी।

0: हाँ अनिता जी, तो वेलकम बैक। अब
1: जी
0: ये आपने जो अभी, ये काश तुम समझ पाते, ये जो कविता आपने सुनाई, इसी को
1: जी
0: सुन के मेरे दिमाग में, जहन में ये सवाल आ रहा है कि आपकी कविताओं में स्त्री प्रेम और जीवन के भाव बहुत गहराई से दिखाई देते हैं, तो
1: जी
0: इन विषयों से आपका ऐसा इमोशनल कनेक्ट कैसे बन गया, भावनात्मक जुड़ाव कैसे बना, इसके बारे में बताइए।
1: जी जी तो इसके बारे में तो आलोक जी ये कहना चाहूंगी कि एक नारी के रूप में जन्म लिया है तो उसके भाव होना तो स्वाभाविक है। और प्रेम तो ऐसा है कि अगर प्रेम नहीं तो जीवन नहीं, तो ये एक ऐसा त्रिकोण बन जाता है जो किसी भी नारी या पुरुष भी उनके जीवन में बहुत अहम स्थान रखता है। तो इसीलिए ये भावनात्मक जुड़ाव जो है मैं इन सभी विषयों से महसूस करती हूँ, क्योंकि जीवन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रेम के बारे में भी हम, मतलब प्रेम करते करते भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ पाते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर ये कमी रह गई तो उसको कैसे सही सुधारा जाए। तो ये इस तरह से एक बहुत ही स्वाभाविक सा जो एक त्रिकोण है वो हमारे जीवन में बन जाता है।
0: चलिए, ये बात तो मैं आपकी समझ गया। अब मैं थोड़ा और आपके साथ ये जो प्रश्नों की हमारी भूमि है, इस पे आगे चलना चाहता हूँ। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी याद या कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको कभी भीतर तक छू गई हो और आपकी कलम चल पड़ी हो, या आपको अभी तक याद रहती है, भले ही आपने उसको शब्दों में नहीं उतारा हो, लेकिन
1: जी
0: आपको
1: जी
0: हमेशा याद रहती है, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई
1: जी
0: शायद
1: जी
0: बात,
1: तो
0: क्योंकि
1: ये
0: हमारे हमारे रेडियो स्टेशन पे सब बहुत ही इस पर बातें करते हैं, बहुत सहज भाव से। आप बताइए, बिल्कुल अच्छा लगेगा लोगों
1: हाँ
0: को
1: हाँ
0: सुनकर।
1: नहीं, फीलिंग्स तो देखिए, जब हम संवेदना के स्तर पर अगर कोई चीज को महसूस करते हैं तब वो जो भाव होते हैं ना, वो मुझे लगता है हमेशा हमें याद रह जाते हैं और हम उनको लिखना चाहते हैं, या ना भी लिखें तो वो हमारी स्मृतियों में कहीं बने रहते हैं।
0: जी
1: तो ऐसी, मतलब आज वो कविता अभी मेरे सामने नहीं है, बट ऐसी कोविड टाइम्स में जब हुआ था कि सब तरफ आपको पता ही है किस तरह से समय एकदम बदल गया था, लोगों को बिल्कुल
0: सही बात।
1: पैसा हाथ में ही नहीं था, तो जो हमारे घर में काम करने वाली जो मेड्स होती हैं उनके लिए बहुत ही एकदम संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि वो काम पे भी नहीं आ सकती, पैसा भी नहीं मिल रहा है। तब फिर
0: बिल्कुल
1: उनको जहन में रख के फिर मैंने, मुझे एक कविता ऐसे उपजी थी तो वो मैंने लिखी थी, तो
0: अच्छा अच्छा
1: वो मेरे को अभी भी याद आती है कई बार।
0: जी
1: जी जी
0: अच्छा, ये बताइए, जैसे ये लेखन की जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए अलग अलग लेखकों के अलग अलग विचार होते हैं, आपके लिए
1: जी
0: क्या है, ये आत्म अभिव्यक्ति है, आत्मचेतना है, यह समाज से संवाद कायम करने का कोई माध्यम, क्या क्या है इसको, क्या विचार सोचती हैं आप?
1: जी लेखन, जैसे लेखन आत्म अभिव्यक्ति तो ऑब्वियसली होता ही है कि जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको हम लिख देते हैं, और आत्म विकास भी होता है इससे, क्योंकि जैसे जैसे हम लिखते हैं तो जीवन के रहस्यों की कई परतें होती हैं, मतलब आपकी कलम चलती है तो आप जीवन को और गहराई से जान पाते हैं, तो ये भी होता है उसमें। और संवाद का भी माध्यम है, क्योंकि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो संवाद के तौर पे तो वो जरूर लोगों तक पहुंचता है और आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तीनों ही चीजें साथ में
0: बिल्कुल
1: चलती।
0: बिल्कुल सही बात।

0: हाँ, तो वेलकम बैक अनिता जी।
1: जी
0: अब आप रह रही हैं मुंबई जैसे बड़े मेट्रो के अंदर, तो ये जो महानगर का जीवन आप इतने वर्षों से गुजार रही हैं, इसको आप किस नजर से देखती हैं? और क्या आपको यहाँ के रिश्तों में, यहाँ के वातावरण में और यहाँ के जीवन में कुछ अलग दिखाई देता है बाकी जो आम शहर है उनसे? क्या क्या विचार है, इतने साल रहने के बाद आप कैसे देखती
1: जी
0: हैं?
1: बाकी महानगरों में तो मैं रही नहीं, मुंबई के अलावा, तो मैं मुंबई की ही बात करूंगी। तो
0: जी
1: मुंबई महानगर, एक्चुअली मुंबई स्वयं में एक व्यक्तित्व है। मुंबई जो महानगर है वो बहुत, मतलब यहाँ के लोग बहुत जाबाज हैं। अगर डे टू डे लाइफ में हम लोगों बातचीत नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है सब एक दूसरे के काम आते हैं। और वो 26 जुलाई का जो फ्लड हुआ था उसमें मुंबई की जो दिलेरी की कहानियां, तो वो तो आप सभी को मालूम है
0: बिल्कुल
1: किस
0: सर।
1: तरह से मुंबई, इसके अलावा जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सीरीज वाले ट्रेन में, तब भी उसके अगले दिन भी सुबह मुंबई की जो ये जो स्पिरिट है उसके अगले दिन भी चल रहने की, मुंबई खुला था, पूरे पूरे स्कूलें खुली थी, सब कुछ खुला था, कुछ बंद नहीं हुआ था। तो ये मुंबई की जो स्पिरिट है वो अपने आप में बहुत, मतलब आपको प्रेरणा देती है।
0: नहीं, बहुत सही
1: जी
0: बात करी है। मुझे याद है कि वो फ्लड की जो बात मुझे भी याद आ गई। 2005 में एक फ्लड आया था, मुझे याद है। बहुत बहुत बहुत बड़ा फ्लड था। तब भी लोग एकदम दूसरे दिन तैयार हो गए थे, काम पे आने लग गए थे। बहुत बड़ी बात। तो अब ये बताइए, जैसे आजकल के रिश्तों के अंदर जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ब्रेकअप्स भी बहुत हो रहे हैं, टूटते विवाह भी हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये मजबूरी है या भावनाओं की कमी है? इस विषय में आप, आपका लेखन, लेखक मन क्या सोचता है, किस तरह देखती है आप इस सब?
1: ये आजकल के रिश्तों में जो बिखराव है उसका मेन जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि एडजस्टमेंट नहीं है। लोग बाग एक दूसरे के लिए जो कहते हैं ना, पहले हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करते थे, एडजस्ट भी करते थे, अंडरस्टैंडिंग भी होती थी। अभी क्योंकि अभी दोनों वर्किंग है, मेल फीमेल, और दोनों के वर्कलोड भी है, तो एक वो होता है कि महानगरीय जीवन है, आपको दोनों को काम करना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रेशर रहता है उसमें। फिर वो प्रेशर आपके घर तक पहुंचता है, वर्कलोड इतना होता है कि वो बहुत सारी चीजें अब सामान्य होने लगी हैं, वो भी है। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों को मिलजुल के ही गृहस्थी भी संभालनी पड़ेगी, बाहर भी संभालना पड़ेगा, तभी रिश्ते जो हैं वो सुधरे हुए रहेंगे।
0: बिल्कुल
1: इस तरह से मैं तो जैसे
0: हाँ, नहीं, सही बात है, सही बात है।
1: नहीं लेखक तो जी जी
0: तो आप, हाँ, तो अब जैसे महिलाओं का जो रोल है वो भी बहुत बदल गया है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई है, फाइनेंशियल अर्निंग भी करने लग गई है, और ये जो
1: जी
0: लिबर्टी महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिल रही है, इसको आप कैसे सोचती हैं? क्या ये एक परिवार के लिए ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या क्या विचार है आपके?
1: तो एक्चुअली आलोक जी, ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही, मतलब क्या
0: विशद
1: इस तरह का
0: है,
1: टॉपिक है।
0: विशद है, विशद है
1: हाँ, और
0: बहुत।
1: देखिए जिसको हम स्त्री की स्वतंत्रता कहते हैं, मैं एक्चुअली उसको स्वतंत्रता नहीं मानती हूँ, मैं स्त्री की मौलिकता की पक्षधर हूँ कि स्त्री अपने मौलिक स्वभाव में रह के कुछ कर रही है ना, वो उसकी स्वतंत्रता है, ना कि वो पुरुषों की तरह जो कर रही है वो उसकी स्वतंत्रता है।
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया।
1: हाँ, तो ये चीज इसलिए मुझे, जब हम कहते हैं कि हमने स्त्री को स्वतंत्र बना दिया, तो मुझे लगता है नहीं, हमने उसे स्वतंत्र नहीं बना दिया, हमने उसको एक और ढांचे में उसको फिट कर दिया। मैं मानती हूं कि आज के जमाने में ये मजबूरी है कि आपको दोनों को वर्किंग होना पड़ेगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं है करियर के पीछे परिवार छोड़ देना, ये और बहुत सारी चीजें हैं वो, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगी। और दूसरा, मेरी जैसी महिलाएं जो कि अभी तक परिवार को देख रही थी, अब जो समय मिला है तो उनको मैं एक ऐसी टर्म के नाम से संबोधित करती हूँ, एंडेंजर्ड वुमेन, जो कि विलुप्त तो हो रही है अब, क्योंकि गृहिणी नाम जो है लुप्त तो होता जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर कोई गृहिणी रही नहीं है, धीरे धीरे सब वर्किंग होते जा रहे हैं, तो ये इस तरह की बातें हैं।
0: सही बात है, सही बात है
1: जी।
0: तो चलिए, ये जो महिलाओं का बदलता रूप है, इस पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं इसके बारे में, तो फिर आगे बातचीत को, अब अपनी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, बस एक दो सवाल और फिर हमें बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ बात करते में। तो श्रोताओं देखिए कितनी अच्छी बातें बता रही है। एक गृहिणी के एंगल से अनिता जी एक स्त्री के रोल को कितनी अच्छी तरह से डिफाइन कर रही है। तो आप ये बताइए, कथक और मधुबनी कला जैसी रुचियां आपकी कविताओं को किस प्रकार एनरिच करती हैं या समृद्ध करती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी जी, तो आलोक जी, मैं मतलब ये मानती हूँ कि कोई भी कला हो वो आपको समृद्ध करती है। अगर आप एक कलाकार हैं तो आप सृजन करेंगे, आप अगर लेखक हैं तो नई कविताओं को सृजन करेंगे तो वो आपको समृद्ध करेगा। अगर आप एक डांसर हैं तो आप कुछ नया उसमें मतलब नए क्रिएशन करेंगे, या आप एक पेंटर हैं तो ये जितनी भी कलाएं हैं जीवन में वो आपको समृद्ध बनाती हैं। और कविताओं को समृद्ध करने से मैं इसको इस तरह से समझती हूँ कि जैसे कथक है या लेखन है या पेंटिंग है, ये सब आप एक तरह मेडिटेशन है। अगर आपका ध्यान भटेगा तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अगर आप लिखते हैं तो वो आपको एक माहौल चाहिए अच्छे से लिखने के लिए। अगर आप कथक करें, एक भी स्टेप आपने गलत किया तो आपका पूरा गलत हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये आपके कंसंट्रेशन को, आपके मेडिटेशन को इसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए मैं इन सबको आपस में इस तरह से मैं जोड़ लेती हूँ ताकि वो मेरे पर्सनल उसमें विकास में भागीदारी दें।
0: ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। म्यूजिक है या डांस है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग भी अगर आप कर दें तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उस पर। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही अनिता जी आपने कि कोई भी आर्ट फॉर्म है उसमें आप जब तक बिल्कुल फोकस नहीं करोगे तब तक वो आपका आपकी वो कृति अच्छी बनेगी नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आप।
1: और तो मतलब कलाकार में एक जो है ना, एक प्यास होती है और वो हर बार नया कुछ करना चाहता है, और ये प्यास ही जो है वो उसका जीवन आगे चलाती है। तो मतलब हम अध्यात्म से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं कला को, क्योंकि ईश्वर स्वयं कलाकार हैं, वो खुद दुनिया का सृजन करते हैं। तो हम भी अगर कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन तक हम उनके और नजदीक जा पा रहे हैं, तो यही मेरा उद्देश्य है।
0: बिल्कुल। तो अब बताइए, जीवन के इस फेज में, इस पड़ाव पे कोई अधूरा सपना, कोई आगे आने वाले सपने, क्या सोचती है, क्या करना अभी जीवन में बाकी है, क्या सोच रही है आप?
1: तो अधूरे सपने तो नहीं कहूंगी मैं, मेरे पास एक बकेट है, एक लिस्ट है, तो उसमें कुछ कुछ मैं इजाफा करती रहती हूँ, जितना पॉसिबल होता है मैं सीखती रहती हूँ और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं चार लाइंस आपको सुनाना चाहूंगी।
0: सुनाइए प्लीज।
1: उम्र दराज हो चली है हसरतें, उम्र दराज हो चली है हसरतें, अब इन्हें किताब की मानिंद पढ़ती हूँ। जिंदगी एक फलसफा मोहब्बत का, कभी रजती हूँ कभी सवरती हूँ।
0: बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। अब बहुत बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उम्र दराज हो चुकी है सुनते, क्या आपने बहुत बढ़िया लिखा। तो अंत में उन महिलाओं के लिए क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, जो आपने तो अपनी राह तलाश ली, जो अभी भी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने को कहीं दबा देते हैं, कुछ इनके
1: जी,
0: लिए
1: जी.
0: कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी जी बिल्कुल, मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूंगी, जैसे मेरी बहुत सारी, मेरे जो घर में आसपास फ्रेंड्स बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें भी ये करना है, हमें ये पसंद है, ये करना है, पर क्या करें, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम तो मतलब घर में ये वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती ही है। तो ये मदन मोहन दानिश साहब की ये दो पंक्तियां हैं वो मुझे याद आ रही है कि
0: जी।
1: दुनिया तुम्हें फूल तो नहीं देगी, दुनिया तुम्हें फूल तो नहीं देगी, मिले हैं कांटे तो कांटों को ही गुलाब करो, जुगनुओं को समेट लो मुट्ठियों में और रात आए तो आफताब करो। तो मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो
0: रात को
1: मतलब
0: जगमगा दो सर, बहुत सुंदर।
1: जी जी तो इस तरह से मतलब आपको उन्हीं में से कुछ करके निकलना पड़ेगा, तभी आप अपना कुछ अपने लिए वक्त निकाल पाएंगी और अपना ध्यान रख पाएंगी। और ये वक्त की मांग भी है, क्योंकि अभी सब परिवार आप देख रहे हैं कि बच्चे दूसरे शहरों में हैं, महिलाएं अकेली घर में रह गई हैं, और अब इतना शारीरिक श्रम नहीं उन्हें करना पड़ता कि वो पूरे दिन गृहस्थी में लगी रहें, तो वो बचे हुए समय का क्या करेंगी, अच्छे किसी चीज से जुड़ी रहें तो उन्हीं के लिए बेहतर है।
0: तो श्रोताओं, आज की इस आत्मीय बातचीत में हमने जाना कि किस तरह जीवन की जिम्मेदारियों के बीच में भी सपनों को जिया जा सकता है, और कैसे संवेदनाएं जब शब्दों का रूप लेती हैं तो कविता बन जाती है। अनिता विजयवर्गीय जी ने यह साबित किया कि पहचान केवल मंचों और पुरस्कारों से नहीं बनती, बल्कि अनुभवों, संवेदनाओं और सच्चे भावों से बनती है। उनकी यात्रा हर उस स्त्री को प्रेरणा देती है जो अपने भीतर किसी अधूरे सपने को अब भी संजोए बैठी है। अनिता जी, हमारे साथ अपने जीवन के इतने सुंदर अनुभव साझा करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपने जी इतनी अच्छी कविताएं सुनाई उनके लिए भी हमारी तरफ से विशेष धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपकी कलम यूं ही जीवन के रंगों को शब्द देती रहे, और आपकी आगामी पुस्तक करछी से कलम तक पाठकों के दिल तक पहुंचे। धन्यवाद।
1: धन्यवाद आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट में एक ये ख्वाब रखा था कि मुझे रेडियो पर अपनी आवाज सुननी है, और आज आपने उस ख्वाब को पूरा कर दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत मेरा हार्दिक नमस्कार और प्रेम पहुंचे, धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, आप सुनते रहिए जिंदगी के रंग गीतों के संग, मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर, सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

0: दोस्तों, मैं लाया हूं कुछ बेहद सुंदर कहानियां जो हमें प्रेरित करेंगी, बहुत कुछ सिखाएंगी। तो लीजिए सुनिए।
1: आत्मा से तृप्त लोग कैसे होते हैं। मेरे एक मित्र बस स्टैंड पर बैठे अपने शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। अभी बस स्टैंड पर लगी नहीं थी। महाशय बैठे बैठे एक किताब पढ़ रहे थे, तभी लगभग 10 साल की एक बच्ची पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लीजिए, 10 के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूंगी। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा था, शायद भाई होगा उसका। मेरे मित्र ने कहा कि उसे पेन तो नहीं चाहिए। इसके जवाब में उसका सवाल बहुत ही प्यारा सा था, तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। मित्र ने कहा, बेटा पेन तो नहीं चाहिए पर तुम कुछ खाओगे जरूर। और फिर उन्होंने बैग में से बिस्किट के 2 पैकेट निकाले और दोनों को पकड़ा दिए। लेकिन मेरे मित्र की हैरानी की सीमा न रही जब उस बच्ची ने 1 बिस्किट का पैकेट वापस कर दिया और कहा, बाबूजी हमारे लिए 1 काफी है। मेरे मित्र जवाब सुनकर चौंक गए। उन्होंने दोबारा कहा, अरे रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे मित्र की आत्मा को झिंझोड़ दिया उस बच्ची के जवाब ने, जब उसने कहा, तो फिर आप क्या खाएंगे। दोस्तों, इस संसार में करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग इंसानियत को ताक पर रखकर लोगों को बेतहाशा लूटने में लगे हुए हैं। वहां एक भूखी बच्ची ने मानवता की पराकाष्ठा का पाठ पढ़ा दिया। मैंने अंदर ही अंदर अपने आप से कहा, इसे कहते हैं आत्मा के तृप्त लोग। लोभवश किसी से भी इतना ना लेना कि उसके हिस्से का भी हम खा जाएं। मानवता की पराकाष्ठा का पाठ है, बहुत सुंदर।
0: दोस्तों, मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता जी की खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं। एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

0: हम जानते हैं आपकी राय कभी कितनी खोखली हो सकती है, जान लेते हैं। मान लीजिए आप धूप में कहीं जा रहे हैं, पसीने से तरबतर, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिलता। ऐसे में आप एक पेड़ की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी सामने की एक इमारत की पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी एक व्यक्ति से आंखें मिलती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। आपने तत्काल उस व्यक्ति के बारे में एक राय बनाई। कितना सहृदय व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। आप पानी लेने के लिए तेज तेज कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं, लेकिन नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आप एक और राय बनाते हैं। आप उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं, बेवकूफ, कहीं का उल्लू का पट्टा, ढीला, आलसी कहीं का। यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है कि उसे इस देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालत देखकर उसने आपको पानी की बजाय नींबू पानी देना ज्यादा ठीक समझा, इसलिए उसे थोड़ा टाइम लग गया। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में अब क्या राय है आपकी। कितना अच्छा आदमी है, उसने कितना अच्छा सोचा मेरे लिए। अब जैसे ही आप शरबत का एक घूंट पीते हैं तो आपको पता चलता है कि जी शरबत में तो चीनी है ही नहीं। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में क्या राय है आपकी। बेवकूफ, नालायक, कंजूस, चीनी नहीं डाल सकता था। आपके चेहरे के खट्टेपन को भरा हुआ देखकर वो व्यक्ति धीरे से चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, माफ कीजिएगा, उसे पता नहीं था कि आप कितनी चीनी लेंगे, इसलिए वो अलग से चीनी लाया है, अब आप जितनी चाहें डाल लें। अब उसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं आप। अब आप मनन कीजिए कि एक सामान्य सी स्थिति में भी अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदल रही है, तो क्या हम किसी के भी बारे में राय देने लायक हैं? इसलिए दोस्तों, किसी के बारे में जल्दी से ना राय ना बनाना। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में या स्थिति में क्या एक्शन कर रहा है, ये वो ही बेहतर जान पाएगा ना। हो सकता है अपनी स्थिति में आप भी ठीक हो और वो भी ठीक हो। वास्तव में दुनिया में हम सभी को इतना समझ में आया है कि अगर कोई व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो बड़ा अच्छा है, वरना बहुत बुरा है। सोचिए, बात में दम है।
1: बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो।

दोस्तों मैं बस अब भी आता हूं, जाइएगा नहीं कहीं, एक और कहानी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं। तब तक ये गीत सुनिए।

हेलो दोस्तों, आपको पता है उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन। इसलिए दोस्तों से मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल से संपर्क बढ़ाइए और खूब बकवास कीजिए। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए और डिप्रेशन से बचिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। एक घंटा न्यूज देख लो तो लगेगा कि कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। अब तो मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। सांस भी अच्छी चल रही है, फेफड़े भी एकदम टनाटन है, वरना ये तो पूरा इंतजाम किए बैठे हैं मुक्ति धाम पहुंचाने का। इसलिए सभी मित्रों से अनुरोध है कि सोच को सकारात्मक बनाएं, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं, टीवी की व्यर्थ की खबरों को छोड़कर संगीत या मनपसंद कार्यों में स्वयं को लगाएं और परिवार में खूब इंजॉय करें। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बंदर को उदासी के कारण मरने की इच्छा हुई तो उसने सोते हुए शेर के कान खींच दिए।

खिंचवाते और खिंचवाते रहिए, पंगा लेते रहिए, सुस्त न रहें, मस्ती करते रहें, अपने मित्रों से संपर्क बनाए रखें। विश्वास कीजिए, आपका मन सदा ही प्रफुल्लित रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। क्यों, ठीक है ना?

अच्छे की ओर देखकर जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो आगे ही देखना पड़ेगा ना। तो होता यूं है कि समय की अपनी गति है और हमारी अपनी। अक्सर वो तो आगे बढ़ जाता है, कौन, समय, और हम पीछे रह जाते हैं। हम बीते समय की खट्टी मीठी कई दफा दुख देने वाली यादों में ही अटके रहते हैं। हमारी और समय की गति में जितना अंतर बढ़ता जाता है, हमारी परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए पीछे देखना बंद करें। मेरा मकसद केवल जिंदा रहना नहीं है, मुझे कामयाब भी होना है। और मैं ऐसा कुछ जोश, कुछ करुणा, कुछ हास्य और अपने अंदाज में करूं कि बस मजा आ जाए। तो भाई, जब तक सांसें हैं, समझो तब तक जीते तो सभी लोग हैं। लेकिन जब जीने के साथ अपने अपने सपने, अपनी चाहतें, अपनी आवाज और अंदाज जोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी कुछ और हो जाती है। फिर उस जिंदगी में किसी और की नहीं, हमारी अपनी झलक होती है। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कोशिशें तो देखिए भैया करनी ही होंगी, लेकिन केवल एक चीज को पाने के लिए बेचैन बने रहना ठीक नहीं है। संतुलन तो देखिए बनाकर रखना ही पड़ेगा। अपने मन को समझाकर आगे बढ़िए। फिर कई बार सब कुछ कर देने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं। कहते हैं जो चीज हमारे लिए बनी है वो हम तक पहुंचेगी जरूर, भले ही वो दो पहाड़ों के नीचे दबी हो। जो चीज हमारे लिए नहीं है, लाख कोशिशें कर ले, वो भले ही आपके होठों के बीच दबी हुई हो, छूट ही जाएगी।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसा हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम की अदाकारा हैं सायरा बानो। दोस्तों, सायरा बानो जी का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आइए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। आगे जाने से पहले सुनते चलते हैं दोस्तों ये गीत।

दोस्तों, सायरा बानो जब 16 साल की थी तभी से उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो कथक और भरतनाट्यम की बहुत प्रवीण नर्तकी थी। लीजिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। सायरा बानर्जी की बहुत सी फिल्मों में विश्वजीत और जॉय मुखर्जी के साथ उन्होंने अभिनय किया और इनकी जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही। लीजिए, पेश खिदमत है उनकी फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। जंगल में एक भैंस भागी हुई जा रही थी। चूहे ने रोका, क्या हो गया बहन, इतनी तेजी से भागी जा रही हो? भैंस ने कहा, पुलिस आई है हाथी को पकड़ने। चूहे ने कहा, तो वो हाथी को पकड़ने आई है, तुम तो हाथी नहीं हो। उसने कहा, भैया ये हिंदुस्तान की पुलिस है, अगर पकड़ लिया ना तो 20 साल तो साबित करने में निकल जाएंगे कि मैं भैंस हूं, हाथी नहीं हूं।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? लीजिए दोस्तों, सुनिए सायरा बानो जी की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: उसने कहा, हम उम्र में बड़े हैं तुमसे। हमने कहा, आप प्यार ज्यादा कर लेना हमसे। उसने कहा, हमें तो प्यार करना ही नहीं आता। हमने कहा, तो फिर अपने हिस्से का भी करवा लेना हमसे। नमस्कार, आदाब, और मेरे तमाम अजीज दोस्तों को मेरा बहुत बहुत आदाब। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, रेडियो का ये माइक्रोफोन एक ऐसा पुल है जो दिलों के फासले पल भर में मिटा देता है। जब फोन की घंटी बजती है और कोई सुनने वाला अपने दिल की बात साझा करता है तो लगता है जैसे एहसासों का एक नया पर्दा उठ रहा हो। हमारे शो, हमारे प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक के इस एपिसोड में आज फिर हमने अपने कुछ बेहद अजीज दोस्तों से सीधे फोन कॉल पर जुड़ने वाले हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका पसंदीदा गजल गायक कौन है, उनकी दिल पसंद गजल कौन सी है, और उस नगमे से उनकी जिंदगी का कौन सा हसीन लम्हा जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस सुरीली शाम का आगाज करते हैं और मिलाते हैं अपने आज के सफर की पहली कॉल। ट्रन ट्रन,
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो आलोक जी।
3: हेलो आरती जी,
2: कैसे हैं आप?
3: बहुत बहुत बढ़िया, और अब और बहुत बहुत बढ़िया हो गए।
2: आलोक जी, हमारे फरमाइशी प्रोग्राम में मैंने सोचा कि आपकी अब एक बार फिर से फरमाइश की गजल सुनाई जाए हमारे दोस्तों को, तो इसलिए मैंने आपको फोन किया है। तो आप हमें ये बताइए, हमारे सुनने वालों को भी, कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
3: बिल्कुल बिल्कुल आरती जी। तो आरती जी, सबसे पहले तो मेरा आदाब कबूल फरमाएं आप और चानी।
2: बहुत बहुत आदाब आपको।
3: और उसके बाद आपको दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर आपका कार्यक्रम अल्फाज से एहसास तक सच कुछ आपके नाम को साबित करता है। आपकी मखमली हल्की सी हस्की सी आवाज गजलों के लिए जैसे खास तौर पर बनाई गई, और उससे आपकी खूबसूरत शायरी और गजलों का बेहतरीन सिलेक्शन हर एपिसोड को एक यादगार महफिल बना देता है। अगर आप इजाजत दें तो एक शेर अर्ज कर दूं, आपकी शान में पेश कर दूं।
2: आपने इतनी तारीफ कर दी है, अभी आप शेर भी सुनाएंगे?
3: अरे तो फिर आप, मैं अपनी पसंद का गजल गायक भी तो बता रहा हूँ, वो जो मैं हर किसी को नहीं बताता।
2: ठीक है,
3: ठीक है ना। तो आती जी, जब लफ्ज आपकी आवाज का आंचल ओढ़ लेते हैं
2: जी,
3: तो गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।
2: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इससे अच्छा और कोई क्या बोल सकता है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार।
3: चलिए चलिए, तो फिर हम अब आपकी जो फरमाइश थी कि मैं अपने फेवरेट गजल गायक के बारे में बात करूं, तो अब उनके बारे में बात कर लेते हैं।
2: जी जी जी, बताइए।
3: तो देखिए, मेरी पसंद की बात करूं तो मेरे सबसे पसंदीदा गजल गायक हैं तलत महमूद साहब।
2: ओके।
3: हालांकि बाद में जगजीत सिंह, पंकज उदास, अनूप जलोटा, चंदन दास सब बहुत अच्छे अच्छे गजल गायक आ गए, लेकिन ये हमेशा है मेरे दिल के करीब ही रहे
2: जी।
3: और आप कहेंगे कि भाई तलत साहब क्यों पसंद है, तो देखिए मेरे ख्याल से गजल की नजाकत, रवानी, उसका दर्द जिस तरह तलत साहब की आवाज में उतरता है ऐसा बहुत कम सुनाई देता है। उनकी गायकी में जो ठहराव है, अदायगी है, नफासत है, और जो एक बहुत फेमस चीज जिसकी हर कहते थे नौशाद साहब ने भी जब उनको सुना था यही कहा था, जो हल्की सी लर्जिश है वो बेमिसाल
2: है।
3: ऐसा लगता है कि हर लफ्ज दिल की गहराइयों से निकलकर मुझे रंगीन के दिल तक पहुंच रहा हो।
2: बहुत खूब, बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो आपके तलत महमूद साहब आपके फेवरेट हो गए, तो आप उनकी गजल बताइए, कौन सी हम गजल सुनाएं?
3: अब गजल तो मैं बताता हूँ, लेकिन आप ये नहीं पूछेंगे मुझसे कि मेरे को पसंद क्यों है तलत साहब,
2: वो तो इसके बाद पूछेंगे ना, पहले आप गजल बताएंगे फिर हम वो पूछेंगे कि गजल क्यों पसंद है।
3: गजल कौन सी पसंद है? गजल मेरे को उनकी बहुत सारी पसंद है, क्योंकि किसी जमाने में मेरे पे उनके एलपी हुआ करते थे, उस जमाने रिकॉर्ड पेयर हुआ करते थे, तो मैं उन पे गजलें सुना करता था।
2: okay.
3: तो इनके थे श्याम गम की कसम, है मेरे दिल कहीं और चल जिन्हें नादा तुझे हुआ क्या है, जाए तो जाए कहाँ,
2: बहुत
3: सारी हैं, जलते हैं जिसके लिए सुजाता की, वो बहुत ही मेरी खास है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अब आप एक बताइए ना कोई।
3: अब मैं ये कहूंगा कि आज आप सुनाइए मुझे मेरी फरमाइश की गजल जहां आ रही,
2: फिर वही शाम।
3: हाँ नहीं, फिर वही शाम नहीं, शाम गम की कसम आज गम ही है।
2: ये जहां आ रही नहीं है, ये तो फुटपाथ की है।
3: हाँ फुटपाथ की है, तो ये वाली सुनाइए और जहां आ रही, हाँ जहां आ रही वो वाली है, शाम गम की कसम, फिर वही शाम, फिर वही गम, फिर वही तन्हाई। तो मैं आज तो ये मेरे ख्याल में जहारा और फुटपाथ अगर आप दोनों सुना सके तो बहुत अच्छा है, ये तो जहारा की ये वाली सुना दी।
2: ओके ठीक है,
3: है ना,
2: ठीक है
3: जहारा की सुना दीजिए।
2: ठीक है,
3: जहारा जो फिल्म थी वो गजब की थी,
2: बिल्कुल
3: और
2: बिल्कुल।
3: बहुत ही गजब की, मदन मोहन साहब का उसमें म्यूजिक था।
2: ठीक है आलोक जी, तो हम सुनते हैं फिर आपकी पसंद की गजल फिल्म जहां आरा से तलत महमूद साहब की आवाज में, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुनाइए।

0: वाह क्या बात है। अभी आपने सुना जयपुर से हमारे रेडियो SN के बेहद सीनियर RK जाने माने पॉडकास्टर और यूट्यूबर आलोक जी को। आलोक जी की अपनी आवाज में एक खास जादू है, लेकिन जब बात उनकी अपनी पसंद की आती है तो उन्होंने गजल गायकी के शहंशाह तलत महमूद साहब का चुनाव किया। फिल्म जहां आरा का ये अमर नगमा, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। और तलत साहब की आवाज़ का वो रेशमी कंपन, थरथराहट वाकई रूह को एक अजीब से सुकून से भर देता है। आलोक जी, आपकी इस नफीस पसंद ने आज के हमारे प्रोग्राम का आगाज बेहद संजीदा और दिलकश बना दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, अब मिलाते हैं आज की अपनी दूसरी कॉल और देखते हैं कि कौन है उस तरफ। ट्रेन ट्रेन
1: हेलो
2: हेलो हेलो हेमंत जी,
1: आते जी
2: कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको?
2: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक तरीके से आ रही है। तो हेमंत जी, हम अपना गजल का फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मुझे आपका भी ख्याल आया, बिकॉज SN फैमिली के तमाम जितने भी हमारे कलाकार लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं एक एक करके सबको कॉल करके उनसी पसंद की गजल हम सब लोग अपने दोस्तों को सुनाएंगे। तो हेमंत जी, मुझे आप ये बताइए कि आपकी पसंद का गजल सिंगर कौन है?
1: जी एक्चुअली मैं गजलों और गजलें सुनता हूँ, गजलें मुझे बहुत पसंद है, और मैं गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह जी, पंकज उदास साहब, इनकी भी गजलें सुनना पसंद करता हूँ। मेरे फेवरेट सिंगर है जगजीत सिंह साहब, उनकी गजलें मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल छू लेने वाली गजलें होती हैं उनकी, बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, बहुत अच्छे लिरिक्स होते हैं, इसलिए मुझे जगजीत सिंह साहब की गजलें बहुत पसंद है।
2: तो हेमंत जी, ये बताइए हमारे दोस्तों को कि आपको जगजीत सिंह साहब की, वैसे तो बहुत सारी गजलें हैं जो सबको बहुत पसंद होंगी, पर कोई एक खास गजल आपको जो आपकी फेवरेट हो?
1: जी आरती जी, मुझे उनकी जो गजल है, जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह जी के गाये हुए गजल है ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, ये गजल बहुत ही पसंद है। ये 1987 में फर्स्ट टाइम आई थी ये मूवी, आज में आई थी ये गजल, लिरिक्स इसके लिखे हुए हैं सुदर्शन फाकिद साहब ने।
2: बिल्कुल जी,
1: और बहुत ही सुंदर, कुछ छू लेने वाली गजल है,
2: बाकी बहुत बहुत खूबसूरत। तो आपको क्यों पसंद है ये इतनी हेमंत जी?
1: जी इसके जो लिरिक्स है बहुत ही अच्छे हैं, और जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह जी ने इसे बहुत ही अच्छे से गाया है। ये गजल सुनकर हमें अपने बचपन की याद आ जाती है, और क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन बैकग्राउंड से हूँ, विलेज बैकग्राउंड से हूँ, तो जो उसमें जो भी उसमें लिखा गया है उन लिरिक्स में, मैं उसे कनेक्ट महसूस करता हूँ। जैसे उसमें लिखा है, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना वो गिर के संभलना, ये वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, बहुत ही सुंदर लिरिक्स है,
2: बहुत सुंदर।
1: मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो गुड़िया जिसे बच्चे कहते थे ना, बहुत ही अच्छी, अपने बचपन की याद आ जाती है ये गजल सुनकर।
2: बहुत खूबसूरत आपके तासुरात हैं इस गजल को लेकर, आपके एहसास अपने सारे बचपन के, अपने शहर के, अपने गांव के इसके साथ जुड़े हुए हैं, और आप इन बोलों के साथ अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है हेमंत जी। तो सुनते हैं फिर हमारे सब दोस्तों के साथ मिलकर आपकी ये नायाब पसंद की गजल, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू आरती जी, थैंक यू।

0: नागपुर से हमारे बहुत ही खास दोस्त हेमंत नेसरे जी की बातें सुनकर तो ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे की ओर बहने लगा हो। हेमंत जी का बचपन गांव में बीता है और जब उन्होंने इस गजल के मिसरे कड़ी धूप में घर से निकलना, वो चिड़िया वो तितली वो जुगनू पकड़ना अपनी आवाज में सुनाए तो वो अपने अतीत से पूरी तरह जुड़ गए। जगजीत सिंह साहब और सुदर्शन फाकिर साहब की ये रचना सिर्फ एक गजल नहीं है बल्कि हम सबके बचपन का एक खूबसूरत दस्तावेज है। हेमंत जी, आपकी इस भावुक और मासूम याद ने महफिल में एक मीठा सा दर्द भर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आइए दोस्तों, अब रुख करते हैं अगली कॉल का।
1: हेलो
2: हेलो अनुप्रीता मैम।
1: हेलो आरती जी, गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। How are you doing? आप कैसे हैं?
2: मैं तो बस आजकल अपने प्रोग्राम को बनाने में ही बिजी रहती हूँ। मेरा तो सारा टाइम इसी पे निकलता है आजकल।
1: बहुत बहुत ही अच्छा है और आवाज सुन के आपकी और अच्छा लगता है। और सच अ नाइस इनिशिएटिव गजल का प्रोग्राम जो आप करते हैं।
2: थैंक यू सो मच अनुप्रीता मैम। हमारा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, मैंने हेमंत सर से भी बात की है, उनकी भी पसंद की गजल मैंने नोट की है और अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। और आप मुझे ये बताइए मैम कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है और फिर उसकी कौन सी गजल आपको पसंद है और वो क्यों पसंद है?
1: ऑलराइट, तो वैसे तो बहुत सारे गजल सिंगर्स हैं जो मुझे पसंद हैं, जैसे जगजीत सिंह हैं, गुलाम अली साहब हैं और तलत अजीज साहब की गजलें मैं सुना करती थी और आशा भोसले जी की गजलें। तो मैं अगर ऐसे नंबर वाइज लगाऊं तो मैं शायद आशा भोसले जी को फर्स्ट नंबर पे रखूंगी फेवरेट गजल। उनकी गाई हुई गजलें मुझे बहुत पसंद है। फिर वो फिल्म से भी हैं और उनकी एल्बम्स भी आई हुई हैं। राइट, तो वो पसंद है। उनकी एक एल्बम थी जो उन्होंने गुलाम अली साहब के साथ बनाई थी, उसका नाम था मिराज ए गजल।
2: हाँ जी हाँ जी।
1: तो वो 1983 में वो एल्बम रिलीज हुई थी, तो उसकी मुझे सारी गजलें पसंद है। बट उसमें से भी अगर हम नंबर करें तो फर्स्ट नंबर पे मैं वो वाली गजल बताऊंगी आपको, यू सजा चांद के छलका मेरे अंदाज का रंग, यू फजा महकी की बदला तेरे अंदाज का रंग। तो ये वाली गजल मुझे बहुत पसंद है। वो इसलिए भी पसंद है कि एक तो म्यूजिक उसका बहुत यूनिक है, कान में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उसमें जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं और आशा भोसले जी का जो उर्दू बोलने का तरीका है वो बहुत सुंदर है। हाँ, तो वो कानों में एकदम ऐसा मिठास घोलता है।
2: जो उनका तलफ्फुस है वो सुन के कोई कह ही नहीं सकता कि एक नॉन उर्दू स्पीकिंग खातून उसको गा रही हैं मराठी एक्सेंट में या किसी भी चीज में, कुछ भी ऐसा नहीं लगता। ऐसे लगता है जैसे कोई उर्दू स्पीकिंग मोहतरमा ही उनको गा रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ
1: दैट इज द ब्यूटी। और मतलब वो ऐसी एक सीखने वाली चीज है कि वो सुन सुन के आप उसको इमिटेट करें उस लेवल पे तो हम पहुंच।
2: गाना चाहेंगी, गुनगुनाएंगी?
1: मैं ट्राई करूंगी।
2: हाँ, करिए ना।

0: वाह ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर मैम। आपके साथ तो पूरी गजल का प्रोग्राम हम करेंगे। आज तो आपने हमको बता ये गजल की लाइन सुना के ना बस बस मुरीद बना दिया
1: थैंक यू सो
0: आपके।
1: मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. थोड़ी सी कोशिश की मैंने
0: नहीं,
1: तो, एंड
0: इंस्टेंटली अगर आप इतना अच्छा गा सकती हैं तो जब आप म्यूजिक के साथ इसको गाएंगी तो फिर वो कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। आई एम रियली वेटिंग फॉर इट मैम। तो
1: डेफिनेट.
0: अब हम सुनते हैं आपकी पसंद की गजल, अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं। थैंक यू सो मच अनुप्रीता मैम, थैंक यू सो मच
1: थैंक
0: हमारे
1: यू
0: साथ
1: आरती
0: जुड़ने के
1: जी,
0: लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस. एंड डेफिनेटली वी वुड आई वुड लव टू हैव अ प्रोग्राम विथ यू. डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर इट. थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू सो मच।

0: वाह दोस्तों, हेमंत जी से बात करने के बाद जब उनकी शरीक हयात अनुप्रीता नेसरे जी से बात हुई तो संगीत का एक और हसीन रंग सामने आया। अनुप्रीता जी अपने कॉलेज के दिनों से ही आशा ताई की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि गैर उर्दू भाषी होते हुए भी आशा ताई जिस सफाई और नफासत से उर्दू लफ्जों का उच्चारण करती हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। एल्बम मेराज से उस्ताद गुलाम अली साहब के साथ गाई ये गजल फिर कुछ इस तरह जान, वाकई गायकी का एक अद्भुत नमूना है। अनुप्रीता जी, आपकी इस बेहद नफीस पसंद का दिल से शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ाते हैं अपना अगला कदम और लेते हैं हमारे प्रोग्राम की चौथी कॉल।
1: हेलो
2: हेलो डियर रमा।
1: हेलो आरती जी, कैसे हैं आप?
2: आप कैसे हो?
1: मैं बहुत बढ़िया।
2: रमा, हम गजल का फरमाइशी प्रोग्राम बना रहे हैं और मैं चाह रही थी कि मैं आपसे भी आपकी फरमाइश जानूं और उसको फिर हम रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए रमा कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
1: मेरे फेवरेट गजल सिंगर है जगजीत सिंह जी।
2: वेरी नाइस। क्यों पसंद है आपको इतने?
1: बस उनकी वॉइस की जो टोन है, द वे उनकी सिंगिंग की जो न्यूएंसेस है,
2: yes.
1: और द वे उनकी वर्सटाइलिटी जो है, वो सब मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं जो हमारे दिल में होती है बट हम कभी बोल नहीं पाते हैं,
2: कह नहीं पाते। सही बात।
1: या सो इसलिए मुझे उनके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं।
2: तो कौन सी गजल आपको पसंद है उनकी?
1: सो अगर मेरी फरमाइश आप सच में प्ले करेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्ले प्यार का।
2: इसीलिए तो फोन किया है आपको, बताइए ना।
1: तो प्यार का पहला खत
2: लिखने को
1: वक्त लगता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल गजल है।
2: बहुत सुंदर चॉइस है आपकी, बहुत सुंदर। मेरे को भी बहुत पसंद है ये गजल। और आपको क्यों पसंद है इतनी ये गजल?
1: मतलब इस ये गजल से आई थिंक एवरी पर्सन हु इज इन लव कैन रिलेट टू इट। जैसे मतलब हम जब किसी से प्यार करना शुरू करते हैं, इन द सेंस वो जो इनिशियल हेजिटेशंस है और यू नो जो शाइनेस है, जो भी है, वो इतने अच्छे से उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि हर चीज का जो वक्त लगता है, उस वक्त हमें जो एक्साइटमेंट एंग्जाइटीज होती हैं, उसको कैसे स्लो डाउन करके उस प्रोसेस को इतना ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है कि एंड इवन द एग्जांपल्स दैट ही हैज यूज्ड इन द सॉन्ग्स टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे पसंद है ये सॉन्ग।
2: या मुझे ये बताओ कि आप एक लाइन फटाफट गा दो। आपकी आवाज बहुत पसंद है मुझे।
1: ओह थैंक यू सो मच। सो प्यार का पहला खत लिखने

0: वक्त तो लगता है नए परिंदों को उड़ने में, वक्त तो लगता
1: बहुत कुछ। उस दिन आपका प्रोग्राम आ रहा था, मैं तो आपकी मुरीद हो गई आपकी आवाज की। यू हैव सच ए
0: थैंक यू
1: ब्यूटिफुल वॉइस रमा।
0: थैंक यू सो मच। आपको
1: यस
0: भी थैंक यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी प्लेइंग वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सॉन्ग
1: क्यों नहीं,
0: गजल्स,
1: क्यों
0: आई मीन
1: नहीं,
0: या
1: क्यों
0: थैंक
1: नहीं।
0: यू।
1: थैंक यू सो मच रमा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं हमारी रमा की खूबसूरत पसंद पर एक खूबसूरत सी गजल। थैंक यू रमा, थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच। या

0: क्या बात है। माया नगरी मुंबई से हमारी बहुत ही आला दर्जे की सिंगर, हमारी दोस्त रमा आनंद जी की पसंद ने तो दिल जीत लिया। रमा जी खुद संगीत को बहुत गहराई से समझती हैं। उन्होंने बताया कि जगजीत सिंह साहब की आवाज में जो एक विविधता है, जो बारीकियां यानी न्यूएंसेस हैं, वो हर कलाकार के लिए एक सीख है। और ये गजल प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। एक ऐसा एहसास है जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर जरूर रिलेट करता है। वाकई रमा जी, आपके इस नफीस फरमाइश ने आज की महफिल में मोहब्बत की एक मीठी सी रंगत घोल दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब दोस्तों, वक्त हो चला है अपने इस सुरीले सफर की आखिरी कॉल मिलाने का। तो देखते हैं कौन है उस तरफ। चुन चुन।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो।
2: हाँ जी आरती जी,
1: कैसे हो वीना?
2: आई एम फाइन, आप कैसे हैं आरती जी?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीना, आपको गजलें पसंद है?
2: जी हाँ, गजलें किसको पसंद नहीं, सभी को पसंद है।
1: तो मैं अपने प्रोग्राम में फरमाइशी प्रोग्राम बना रही हूँ गजलों का। मैंने सोचा कि हम अपनी एसएम फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनको उनकी पसंद की गजलें हम ब्रॉडकास्ट करें, तो उसी सिलसिले में मैंने आपको फोन किया है।
2: ओके।
1: तो वीना, आप ये बताइए कि आपका फेवरेट गजल सिंगर कौन है?
2: जगजीत सिंह जी।
1: वेरी नाइस, बड़ी ऑब्वियस सी चॉइस है। जगजीत सिंह को कौन भला नहीं पसंद करेगा।
2: Yes.
1: अभी ना ये भी बताइए कि इनकी आपको फेवरेट गजल कौन सी है इनकी?
2: इनकी मुझे एक फिल्मी गजल बहुत अच्छी लगती है, जो बहुत सिंपल है और लेकिन दिल के बहुत करीब, और मुझे लगता है सभी लोग रिलेट कर सकते हैं, और वो है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया।
1: वेरी नाइस, बहुत उम्दा चॉइस है आपकी। ये तो बताओ वीना कि ये गजल आपको इतनी पसंद क्यों है?
2: वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी के अपने जीवन काल में ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं उनको, जिनका उनका बहुत सहारा मिलता है, मतलब मानसिक तौर पे और इमोशनल बेसिस पे उनको काफी सहारा मिलता है। तो इट रिलेट्स टू, इट कैन बी एनीबडी, इट कैन बी योर लवर और कोई भी हो सकता है, कलीग हो सकता है, दोस्त हो सकता है। यस,
1: जिंदगी में कोई भी मसीहा बन के आ सकता
2: बिल्कुल,
1: है,
2: बिल्कुल
1: रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये ना मैं चाहूंगी कि आप इस गजल को हमको एक लाइन गा के सुनाएं।
2: ओके

0: ख्याल आया।
1: तो फिर चलिए सुनते हैं आप और हम और हमारे सारे दोस्त आपकी पसंद की ये गजल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। थैंक यू वीना, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू
1: सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।

वाह, बेंगलोर से हमारी बेहद गुणी दोस्त वीना नायक की आवाज और उनकी ये पसंद सीधे दिल में उतर गई। वीना जी खुद एक बहुत बेहतरीन गायिका है और रेडियो एसएन पर हाल ही में उनका ब्रॉडकास्ट हुआ सिंगिंग शो, हम सब ने बहुत पसंद किया था जब उन्होंने अपनी सुरीली आवाज में इस गजल की एक लाइन गुनगुनाकर फरमाइश की तो महफिल जैसे खिल उठी। जगजीत जी और चित्रा जी का ये नगमा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, हमारी आज की इस महफिल का सबसे हसीन इख्तिताम साबित हुआ। वीना जी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फोन की घंटी से शुरू हुआ एहसासों, बचपन की यादों और सुरीली फरमाइशों का ये हसीन कारवां आज के इस एपिसोड में यहीं पर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जयपुर से हमारे सीनियर आरजे आलोक जी, नागपुर से हेमंत नेसरे जी और अनुप्रीता नेसरे जी, मुंबई से हमारी उम्दा गायिका रमा आनंद जी और बेंगलोर से वीना नायक जी, आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने अपनी खास पसंद से अल्फाज से एहसास तक की इस शाम को इतना यादगार बना दिया। चलते चलते आज की इस रूहानी महफिल के नाम दो लाइन्स मैं भी कहती हूँ कि कुछ बातें दिल की दिल में ही रह जाती हैं, कुछ बातें दिल की दिल में ही रह जाती हैं, सुरों के परिंदे उड़कर राह दिखा जाते हैं, फासले जितने भी हों शहरों के दरमियां, फासले जितने भी हों शहरों के दरमियां, अल्फाज ही हैं जो एहसासों को मिला जाते हैं। इसी सुरीले एहसास और मीठी यादों के साथ अब वक्त हो चला है कि मैं आपसे रुख्सत लूं। वादा है कल ठीक इसी वक्त फोन की कुछ नई घंटियां, कुछ नए शहरों और आप ही के चुने हुए अनमोल एहसासों के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो एसएन और रेडियो टांडिया भील। अब अपनी दोस्त और हम नफस आरती रॉय को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराते भी रहिए और यूं ही सुरीली गजलें गुनगुनाते रहिए। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, क्योंकि कहीं कहीं छोटी छोटी बरसात हो गई है, यानी छुटपुट बरसात हो गई है और हमारे किसान साथी तैयारी करने में जुट गए हैं कि जैसे ही अब अगली बार बरसात हो वैसे ही अपने खेतों में अपने बीज को लगा दें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है, कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है, उसको किस तरीके से हम समतलीकरण कर सकते हैं इससे पहले, बोनी से पहले, और साथ साथ में मेड़बंदान भी कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठते हैं, यानी वैज्ञानिक बैठते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अमरूद के बागवानी के तरीके क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। धान की बुवाई से पहले किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। खासतौर पर हम पशुओं पर भी चर्चा करेंगे कि इस माह हमें पशुओं का किस तरीके से देखरेख हमें करना चाहिए, इस विषय पर। साथ में हम बातचीत करेंगे, वो बातचीत होगी कि छत पर बागवानी जो हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हम देर नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी किस तरीके से तैयार की जाती है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मौसम आधारित जानकारी। आने वाले 5 दिनों में आसमान में छिटपुट से घने बादल रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस व 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा पश्चिम दिशा से 17.4 से 28.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 11.0 मिलीमीटर होने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर कृषि परामर्श की बात करें तो जिले में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से मध्यम से छुटपुट बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की खेती हेतु खेत तैयार कर लें। फसलों के बीज की बुवाई का समय और उर्वरक व बीज का मिलाकर बुवाई कभी ना करें और फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इस हेतु बीज उर्वरक कल्चर, फफूदनाशक दवाओं की व्यवस्था भी साथ में कर लें। खरीफ फसलों की बुवाई 3 से 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें। स्वयं से तैयार बीज की सफाई कर लें व अंकुरण की प्रतिशत अवश्य जांच लें। अंकुरण का प्रतिशत यदि 70% आता है तो ठीक है, आपका बीज अच्छा है, बोने लायक है। यदि 70% से कम आता है तो नए बीज की व्यवस्था भी साथ में कर लें। जो मक्का की फसल है उसके लिए जो परामर्श दिया गया है, बताया गया है, वो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त किस्म जो है वो JVM 421 है, HPQM 1 है, JM 216 या फिर उत्तम अवधि की संकर किस्म की व्यवस्था कर लें बीजों की। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की खेती हेतु उपयुक्त किस्म जो है JS 2069, JS 2098, RS 24, JS 2029, RVS 2001-4 आदि की व्यवस्था कर लें। उड़द के लिए उड़द की उत्तम किस्म है उत्तरा, JU 86, PU 31, प्रताप उड़द 1 की व्यवस्था अवश्य कर लें। कपास की उन्नत किस्म है DCH 32, BT 2, कपास की किस्मों की व्यवस्था कर लें। साथ साथ में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं उनमें खासतौर पर अगर नर्सरी के पौधों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उनके रोकथाम के लिए प्रोफेनोवस दवा जो रहती है 3.0 मिलीमीटर प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव कर दें। अदरक और हल्दी की खेती हेतु प्रकंड की बुवाई करें। साथ में बुवाई के पूर्व प्रकंद को डाइएन M45 और कार्बोडाइजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर 20 से 30 मिनट डुबो कर रखें। बरसात की सब्जियों की रोपणी में जल निकास की उचित व्यवस्था भी कर लें। तो ये थे हमारे मौसम आधारित जानकारी जो हम आपको उपलब्ध करा रहे थे। साथियों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं अमरूद की बागवानी करने से पहले हम किस तरीके से सावधानी, किस तरीके से हमें अमरूद की बागवानी लगानी चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस विराम के बाद।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: एक ऐसा फल जो हर उम्र के व्यक्ति को पसंद आता है। जी हाँ, साथ ही अगर हमारे किसान उसका प्रसंस्करण करके उसके उत्पाद की बिकवाली करे तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। कौन सा है ऐसा फल, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: अमरूद की बागवानी पूरे भारत में की जाती है। विटामिन सी और पेक्टिन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर इस फल को आसानी से घर के आंगन से लेकर खेतों की बाड़ और बागों में उगाया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमरूद की खेती अधिक तापमान, गर्म हवा, बारिश, लवणीय या कमजोर मृदा, कम जल या जल भराव की दशा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ये सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम जल निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली रेतीली चिकनी मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में लगाना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, एप्पल कलर, ललित, अर्का मृदुला, श्वेता, पंजाब किरण। ऐसे करें खेत तैयार। पौधे की बढ़वार अच्छी हो और जड़े आसानी से अपनी पकड़ बना ले, इसके लिए खेत की 2 बार तिरछी जुताई करें और फिर समतल करें। खेत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी ना खड़ा रहे। अब बात कर लेते हैं पौधे रुपाई के बारे में। तो अमरूद का बाग लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन तैयार पौधों को खेत या बाग में रोपा जाता है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है, लेकिन यदि सिंचाई की बेहतर सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी रुपाई का काम किया जा सकता है। पौधे की रुपाई के लिए पहले 60 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को तैयार करें। इसमें 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 40 से 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन पाउडर को ऊपरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर दें। मिट्टी सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरें। इसके बाद मिट्टी पर सिंचाई करें। गड्ढों में मिट्टी पौधा लगाने के 15 से 20 दिन पहले भर देना चाहिए। इस तरह तैयार गड्ढों में नियत समय पर पौधों की रुपाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। इस फसल में वैसे तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शरद ऋतु में पौधे की सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर और गर्मियों के मौसम में 7 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। साथ ही अमरूद के खेतों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहे। बारिश के मौसम में इस बात का खास ध्यान रखें कि बाग में अनावश्यक पौधे ना उग पाए। इसके अलावा अमरूद में कीड़े की समस्या बारिश के मौसम में ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए नीम की पत्तियों के उबले पानी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं अमरूद में उखटा रोग, तना कैंसर रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। पौधों की मजबूती और सही वृद्धि को बनाए रखने के लिए टहनियों की हल्की छटाई करनी जरूरी होती है। इसकी कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। इस तरह कटाई के बाद नई टहनियों से ज्यादा फल उत्पादन की संभावनाएं रहती है। अब बात कर लेते हैं फलों की तुड़ाई की। पौधा रोपण के 2 से 3 साल बाद अमरूद के फल लगने शुरू हो जाते हैं। तैयार फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है। फलों की तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। फलों को ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए। यदि फल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है तो किसान उसे प्रसंस्कृत करके भी अच्छी आय ले सकते हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अगर एक ही खेत से हमें दोहरा लाभ मिले तो कितना अच्छा होगा। ये संभव हो सकता है। अगर आप धान की खेती करते हैं तो उसी में आप मछली पालन भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपके मुनाफे को दोगुना कर सकता है। कैसे, आइए जाने हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन के जरिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है, जो धान की फसल के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि धान की फसल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पानी से भरे धान के खेत में किसान एक और लाभ ले सकते हैं और वो है मछली पालन। जी हाँ, पानी से भरे इन खेतों में किसान आसानी से मछली पालन कर सकते हैं। इस दोहरे लाभ में धान की पैदावार भी अच्छी होगी और किसान को दोहरा लाभ हो सकेगा। हालांकि धान की खेती और मछली पालन का ये कॉम्बिनेशन नया नहीं है। फिश राइस फार्मिंग चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देशों में काफी लोकप्रिय है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता हमारे किसानों का ध्यान भी आकर्षित कर रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। इस तकनीक में धान की फसल में जमा पानी में मछली पालन किया जाता है। अगर किसान चाहते हैं तो धान से पहले ही मछली का कल्चर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मछली कल्चर खरीद भी सकते हैं। ध्यान रहे कि इस तरीके से मछलियों का उत्पादन खेती, प्रजाति और उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। खेती की इस तकनीक में एक ही खेत में मछली व दूसरे जल जीवों को एक साथ रखा जाता है। इससे धान के उत्पादन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है, बल्कि खेत में पल रही मछलियों को भरपूर चारा मिलता रहता है, तो मछलियों को वेस्ट फसल के लिए जैविक खाद का काम करती है। इसके अलावा मछली पालन से धान के पौधों में लगने वाली कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। फिश राइस फार्मिंग करने के लिए निचली जमीन वाले खेत का चुनाव करें। इस तरह के खेत में काफी आसानी से पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ ही खेत को तैयार करते समय जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद से मछलियों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। फिश राइस फार्मिंग तकनीक में शुरुआत में किसान रोहू, मृगला, मुगली, कतला प्रजातियों की मछलियों का चयन कर सकते हैं। ये मछलियाँ उथले पानी में आसानी से रह लेती है। साथ ही बेहतर लाभ लेने के लिए धान की लंबे समय में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें, जैसे वानी धान CR26077, ADT6, ADT7। इससे मछलियों को 4 से 5 माह का समय मिल जाता है। ये मछलियाँ 3 माह में ही करीब 500 से 700 ग्राम की हो जाती है। किसान एक एकड़ के खेत में 400 किलो मछली का बीज या करीब 2000 मछलियां छोड़ सकते हैं। किसान इस बात का ध्यान रखे कि रुपाई के करीब 7 दिन बाद ही मछलियां छोड़े। साथ ही खेत में पानी का स्तर बनाए रखे। धान के खेत में करीब 6 इंच या इससे ज्यादा पानी रखे। पानी का स्तर 9 इंच भी रख सकते हैं। इस तकनीक से मिलने वाले लाभ: मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है, फसल का उत्पादन बढ़ता है, प्रति यूनिट एरिया पर कमाई अच्छी होती है, उत्पादन में खर्च कम होता है, फार्म इनपुट की कम जरूरत पड़ती है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, उर्वरक पर कम खर्च होता है। इस तरह किसान उतनी ही भूमि में कम संसाधन में एक ही समय में 2 गुना लाभ कमा सकते हैं।
1: तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें।
3: HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर ले। आज किसान कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सीमित क्षमताओं को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। उनके ये प्रयास और उनसे मिली सफलता बाकी किसानों को भी नया करने की प्रेरणा दे रही है। लहलहाते खेतों के बीच चहलकदमी करते ये है किसान परमजीत सिंह, जिन्हें इनकी मेहनत और अलग खेती करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का लंबा दौर जिया है। वो बताते हैं कि पहले उनके परिवार में पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। परमजीत बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तभी से खेती किसानी में अपनी सेवाएं देने लगे थे और बचपन से खेतों में समय गुजारने के कारण परमजीत को खेती से लगाव होने लगा। लेकिन वो खेती में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कम संसाधन में भी अच्छा मुनाफा लिया जा सके। इसके लिए परमजीत ने बदलते वक्त के साथ खेती के तरीकों में भी बदलाव किया और पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जियों की खेती व बागवानी करने लगे।
4: क्योंकि सर जो पुराना समय है, जो ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, खेती तो हम करते थे लेकिन जो रवायती फसल है उसमें इतना मुनाफा भी नहीं हो पाता था, बड़ी मंदे हालात थे उस टाइम के। तो उस समय हमने बड़ा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में, उसके साथ साथ खेती भी करते थे, लेकिन उस समय ऐसे हालात थे कि हम एक जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, 2.5 किलोमीटर हमारा स्कूल दूर था जी, तो हम सोचते थे कि अगर साइकिल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उस पर जाके जल्दी आ सकते हैं, लेकिन हालात ऐसे थे, वो भी नहीं था किस्मत में। तो खेती करते करते जो नया रेगुलेशन आया है उसके चलते फिर हमने भी खेती को चेंज किया और नई तकनीक से खेती करने लगे, उसमें सब्जी भी लगाई है। पहले बहुत गोभी वगैरह आलू की हम खेती करते थे, तो जब से फिर हमने खेती का काम पूरे अपने काम उससे किया है तो फिर इसको चेंज किया है और नई नई तकनीक से हमने खेती की है, हर तरह की मशीनरी का हमने प्रयोग किया है।
3: समय बीतता गया, नफा नुकसान लगा रहा, लेकिन उनकी मेहनत तब ज्यादा रंग लाई जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। हालांकि शुरू में एक छोटे से हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की, लेकिन इससे जो मुनाफा मिला उसने परमजीत के लिए सफलता के नए द्वार खोल दिए। आज परमजीत करीब 10 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग किस्में लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई फसल के लिए कैसे बाजार तैयार किया और कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए जानते हैं उन्हीं से।
4: और ये हमारी एक हिमाचल में मूंगफली बहन है जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है, जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ। मैंने दो जो एक एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था, तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। पहले पहले तो लगाई हमने, स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियां लगती हैं चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है, उसमें मेरे को बहुत फायदा मिला है, क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है, तो उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी, स्ट्रॉबेरी का, और लड्डू और बर्फी भी बना के सेल किए हैं, और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे।
3: स्ट्रॉबेरी भारत की जलवायु में ठीक से तालमेल बिठा सके, इसके लिए स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। परमजीत जी किन किस्मों को लगाते हैं, आइए जान लेते हैं।
4: हम हिमाचल से जो पुराना पौधा है उससे पौधा तैयार होता था, वो लगाते थे, उसकी प्रोडक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी और कम भी रहती थी, तो धीरे धीरे हमें भी जैसे जैसे काम करते आ रहे हैं तो पता चलता आ रहा है, तो फिर हमने जो इसका वैसे ये बाहर की वैरायटीज है, बाहर की फार्मिंग है, और इसका जो पौधा है वो भी कैलिफोर्निया, अमेरिका से और इटली वगैरह से आता है, जो हम वहां से मंगवाते हैं। पूना की एजेंसियां हैं 2-3, एक प्लांट पैराडाइज है, जैन ट्रेडर्स वाले हैं, प्योर हैं 2-3, वो बाहर से मंगवाते हैं मदर प्लांट, तो मदर प्लांट उनसे लेके 70 रुपए प्रति प्लांट के हिसाब से हमें वो मदर प्लांट मिलता है, उसको हम प्लांटेशन करवाते हैं हिमाचल में। टोटल इसकी जो पूरे संसार में वैरायटीज हैं वो तो 7 और 8 के करीब हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी, जो अर्ली वैरायटी है नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती है, 10-20 रुपए का फर्क रहता है, लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज्यादा कम है। जो कैमरोज है या ऐसे है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है।
3: परमजीत जी आज जिस मुकाम पर है वहाँ बागवानी विभाग का काफी सहयोग रहा है। वो बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने हर कदम पर साथ दिया, वहीं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी मदद की। आज आलम यह है कि परमजीत सिंह का उदाहरण देकर बागवानी विभाग काफी किसानों को भी आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है।
4: जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का ब्लॉक का, उसमें HDO है युवराज भारद्वाज, उसने हमें इतना मोटिवेट किया है, उसने हमें बताया कि आप ये खेती करो, आपको इसमें ये मुनाफा है, तो इसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी। कि वो आगे जो 4-5 और मेरे गांव के लड़के हैं, वो भी जैसे मशरूम वगैरह या स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहते हैं, उनकी हेल्प के लिए भी जुटे हुए हैं। बढ़िया है जी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमें बढ़िया मिला है।
5: 5 साल से जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने एक एकड़ से हाफ एकड़ से स्टार्ट किया था काम, उसे बहुत सी प्रॉब्लम आई। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की आई दिक्कत, उसके बाद लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई। ये इनकी फैमिली का और इनके जो गांव का वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम रहा, उनका साथ रहा है, उसकी वजह से जो ये हैं आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आज इन्होंने 10.5 एकड़ लगाई हुई है, लास्ट टाइम जो इन्होंने 4.5 एकड़ लगाई थी, तो इन्होंने बोला इनका टारगेट जो है 25 एकड़ तक लगाने का स्ट्रॉबेरी का है। 2015 से मैं इनके टच में आया हूँ, तब से मैं लेके आज तक इनको तो हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनको बुलाते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं इनके गांव में, जैसे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं और गांव के जो फार्मर्स हैं उनको इस हॉर्टिकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए ये उनको उत्साहित कर रहे हैं इस टाइम, और हमारे साथ हर साल 1-2 फार्मर इनकी वजह से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं।
3: आज परमजीत सिंह जी ने अपने कृषि के दायरे को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वो ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी तो बाकी सीजन में अंतर फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हो भी क्यों ना, इसी खेती ने आज उनके कई सपने साकार कर दिए हैं।
6: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आप सुन रहे थे इस रेडियो रिपोर्ट को और जाना कि किस तरीके से हम अमरूद की बागवानी किस तरीके से कर सकते हैं, साथ में पशुपालन किस तरीके से कर सकते हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, धान की बुवाई हम कैसे कर सकते हैं, सफल किसान की कहानी को भी जाना कि किस तरीके से हमारे पंजाब के किसान ने स्ट्रॉबेरी करके अपनी आय वृद्धि की है। तो ऐसी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही खेती में फसलें उगाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें देखना होगा कि हमारे मिट्टी में कौन तत्व, किस तत्वों की कमी है, उस तत्वों को हम पूर कर हम किसी भी फसल को हम लगा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यानी विराम लेते हैं, इसके बाद हम छत पर बागवानी करने के तरीके किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उस विषय पर हमारे विषय विशेषज्ञ की सलाह हम जान लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: समय है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: आज मेरा नर्सरी में आने का जो मकसद है वो बहुत सिंपल है कि हमने अगर टेरेस में या बैल्कनी में अपने गार्डन बनाना है तो हमको किस किस चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पर नर्सरी में आने से पहले आपको अपने घर का पूरा म्योना करना पड़ेगा। समझो मैं टेरेस में खड़ी हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरा टेरेस कौन से डायरेक्शन का है, साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, या खुले टेरेस में मेरे को चारों डायरेक्शंस मिलती हैं। डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने किस किस्म का पौधा लगाना है वो आपका डायरेक्शन ही बता पाएगा। बालकनी का भी यही हाल है। सेकंड, आपको किस चीज का शौक है, आपको फलों के पेड़ों का शौक है, आपको फूलों का शौक है, आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक है, या आपको सिर्फ ग्रीनरी का शौक है, जैसे आप फॉलिएज ही लगाना चाहते हैं, तो वो सब चीजों में आपको अपना डायरेक्शन देखना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं समझा दूं, सबसे ज्यादा धूप जो है वो साउथ में और वेस्ट में रहती है। तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन जरूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए, और उसके बाद आप नर्सरी में आइए। अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीजों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फोटोज खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को तो वो आपकी बहुत मदद कर दे।

0: जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए माली आओ जल्दी आओ या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए।
1: जब आप एक प्लांट को अपने घर लेकर आते हैं तो आपने उसकी देखभाल उसी तरह करनी होती है जिस तरह आप एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके प्लांट की हेल्थ कैसी है। जब एक प्लांट आपके घर आता है तो इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता है। ये देखना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी है, उस प्लांट में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि अगर आप बीमारी या कहीं डिजीज वाला प्लांट अपने घर ले आएंगे तो उसकी ग्रोथ होने में डिफिकल्टी हो सकती है। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से।
0: अगर आपके डॉक्टर, आपका जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको अपने आसपास में एक लोकल नर्सरी के साथ जरूर रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से जो आप पौधा लेके आएंगे वो आपको सही पौधा मिलेगा, क्योंकि नर्सरी वाले को अपनी रेपुटेशन भी संभाल के रखनी है। बड़ी बार लोग करते हैं मैं देहरादून से पौधा ले आई, मैं ये वाला पौधा केरला से ले आई या ये वाला पौधा मैं गुजरात से ले आई। बहुत अच्छी बात है, एक आधा पौधा आपके गार्डन में ऐसा हो व्हाई नॉट, बट अगर वो पौधा खराब हो जाता है तो आप किसको पकड़ेंगे। पर आपका अगर लोकल नर्सरी वाला होगा तो तो आप उसको पकड़ सकते हैं, और उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपका पौधा एक्सचेंज भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने गलत सीजन में गलत पौधा दे दिया है। आप बड़ी बार देखेंगे लोगों को आजकल सक्यूलेंट एंड कैक्टाई का बहुत शौक हो गया है, बहुत सुंदर वैरायटीज उसमें आती हैं, पर कब हमने वो लेनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नर्सरी वाले भी सक्यूलेंट्स एंड कैक्टाई को एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं संभाल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं 70% ऑफ पे आपको दे देते हैं, और आप भाग के जाके सारे उठा लाते हो, पर एक एक करके वो आपके घर में खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इम्पल्स बाय मत करिए। एग्जीबिशन देखी तो भाग के जाके सारे पौधे उठा लिए। इम्पल्स बाय में ज्यादा से ज्यादा पौधे नहीं चलते, दे आर कॉल्ड वन सीजन प्लांट। अगर आपने ट्यूलिप लाना है तो एक ही सीजन चलेगा, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं उस बल्ब को हर साल चला पाऊंगी, मुश्किल हो जाती है। नर्सरी वालों को इतनी मुश्किल होती है तो हम लोगों को क्यों नहीं होगी। एंड नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर्स हैं हमारे पास, गर्मी है तो भीषण गर्मी है, सर्दी है तो बहुत ठंड है, तो पौधों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई पौधा लाएं उसका पहला सीजन, हर जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है, अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी जिंदगी आपका ख्याल रखेगा। वो साउथ में और वेस्ट में रहती है, तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन जरूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए, और उसके बाद आप नर्सरी में आइए।

लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीजों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फोटोज खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को तो वो आपकी बहुत मदद कर

जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए माली आओ जल्दी आओ या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए। अगर आपके डॉक्टर, आपका जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको हर, जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी जिंदगी

चीख पे बनना शुरू हो जाता है और आप बड़े हैरान होते हो और आप कहते हो पौधा तो मैं बहुत हेल्दी लाया था या लाई थी और 10-15 दिन तक भी ठीक रहा, पता नहीं अब क्या हो गया, मेरा पौधा खत्म हो गया। तो उसका उसके बारे में आप समझिए, उस पौधे को जो प्रोटेक्शन मिली है वो प्रोटेक्शन हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ग्रीन हाउस में जो पौधे पड़े हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनको घर लाके अपने बालकनी में या अपने छतों पे रखने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी, या तो आपको पहले ये पौधों को कुछ टाइम के लिए शेड में रखना पड़ेगा, जैसे आपके घर में कोई नीचे पेड़ है, पेड़ के नीचे में उसको रखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करके उसको वो हार्श कंडीशन में लेके आइए। पौधे की हेल्थ की एक और बात मैं जो बताना चाहती हूँ, पौधे का जो स्टेम होता है वो बहुत अच्छी से देखिए। बड़ी बार क्या होता है, गमले के ऊपर से ही या पन्नी के ऊपर से ही 3-4 टहनियां निकल के आ जाती हैं, वो ठीक नहीं है। मैक्सिमम आपके पास 2 टहनियां ही निकल के आनी चाहिए। आप अगर ग्राफ्टेड पौधा ले रहे हैं, एक तो वो महंगा पड़ता है, पर वो ग्राफ्टेड पौधे में आपने देखना है कि वो ग्राफ्टिंग कहां से हो रही है। अगर बिल्कुल ही जड़ के पास से ग्राफ्टिंग है तो उसको मत लीजिए, कम से कम आपके गमले में 6-8 इंचेस का एक जैसे कहते ना क्लीन स्पेस होना चाहिए और उसके बाद ग्राफ्टिंग हो तो वो पौधा ज्यादा अच्छा रहता है। जो पौधा अपनी ग्रोथ कहां से लेता है, पौधा अपनी ग्रोथ स्टेम से लेता है। वो स्टेम अगर अच्छी स्ट्रांग है, मजबूत है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग कह सकते हैं वो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बहुत बार आप देखते हैं लोग कुप करके बैठ जाते हैं या सीधा बैठ नहीं पाते हैं, लेट जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बैकबोन स्ट्रांग नहीं होती है। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रांग है तो आपकी सेहत अच्छी होगी। इसी तरीके से अगर आपका स्टेम स्ट्रांग है तो पौधा

0: मत, रंग भी है ऊपर रखना है।
1: तो रंग बिरंगे पौधों को देख के मन मचल जाता है, खासकर फूल वाले जो गमले होते हैं उनको देख के लगता है सारे के सारे अपने घर में ले आए। पर आपको समझना आना चाहिए कि जब फूल लगे हों तो वो वाला पौधा मत लीजिए, जिसमें बड्स हों, कलियां हों, उसको लीजिए। क्योंकि जब आप ये फूल वाले पौधों को घर लेके जाएंगे, जैसे ये पौधे को आप घर लेके जाएंगे, इसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो ये ग्रीन हाउस के अंदर है। इसको आप जब घर लेके जाएंगे तो ये सारे के सारे इसके जो फूल हैं ये ड्रॉप हो जाएंगे और आप फिर वेट करते रहेंगे शायद नेक्स्ट सीजन के लिए, जब इसमें फिर से फूल आएगा। पर अगर आप कलियां लेके जाएंगे, जैसे ऐसे कलियों वाला पौधा लेके जाएंगे, तो ये पौधा आपके घर में जाके एडजस्ट हो जाएगा और स्ट्रेस में आने के कारण ये जो कलियां हैं ये फूल बन जाएंगी, और जब ये फूल बन जाएंगी आपका गार्डन बहुत ही शानदार हो जाएगा। पौधा लेने के टाइम डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी हैं। आप किसी स्कूल में जाएंगे तो वहां भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही आप चलते हैं, तो पौधों में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अब डूज क्या होते हैं? आपके पौधे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टेम अच्छा होना चाहिए, उसमें जो ब्रांचिंग है वो अच्छी से हो, पर नीचे से पौधा उठ रहा है वहां पे आपकी ब्रांच एक या दो होनी चाहिए। एक या दो ब्रांच के बाद वो इस तरह करके अगर ब्रांचिंग करेगा तो वो पौधा आपका बहुत अच्छा हेल्थ लेगा। अननेसेसरी उसमें ब्रांचेस ना हो, जैसे इनवर्ड ब्रांचेस जो हम कहते हैं कि इधर से आपकी ब्रांच इधर आ रही है, इधर से ब्रांच इधर आ रही है, वो क्या करती है, हवा की डायरेक्शन को भी खराब कर देती है। तो आपको वो क्लिप करना है। टाइम टाइम पे आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है, टाइम टाइम पे आपको उसको खाना पीना देना है। तो जब आप पौधे को घर लेके जाएं, सबसे पहले जरूरी चीज है पौधे को एकदम तुरंत उसको लगाने की कोशिश मत करिए, उसको वहां पे छोड़ दीजिए अपने घर में मिट्टी पे, उसको एक्लिमेटाइज होने दीजिए, उसको आपकी हवा आपके एनवायरमेंट के साथ जुड़ने दीजिए। जो भी आप चीज करें स्टेप बाय स्टेप करें। पौधा जब भी लगाएं शाम को लगाएं, सुबह लगा के धूप में रख देंगे पौधा एकदम मुरझा जाएगा। बहुत अगर गर्मी है तो पौधों को घर के अंदर में ले आइए, उसको फिर शाम को फिर बाहर निकालिए। जब भी आप उस पर कोई दवाई छिड़कना चाहते हैं तो दवाई याद से शाम को छिड़केंगे, पर अगर आप उनको कोई नरिशमेंट देना चाहते हैं तो वो आप हमेशा सुबह में देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, और आपको अपने गार्डन का पता चल जाएगा तीन चीजों से, जिसको कहते हैं 3 Bs, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज। अगर आपके गार्डन में ये तीन चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है आपका गार्डन बहुत अच्छी से चल रहा है। तो ये आपके गुड गार्डन के साइंस होते हैं। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप कोई कोर्स करते हैं, तो अगर आपको 3 Bs का सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब है आपका गार्डन इज डूइंग वेरी वेल।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी हमने जाना कि किस तरीके से हम छत पर बागवानी कर सकते हैं, किस तरीके से नर्सरी लगा सकते हैं अपनी छतों पर, कौन कौन पौधे हम अपने छत पर लगा सकते हैं, ये सारी बातों को हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। साथ में हमने किसान साथियों ने जाना कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी हम कर सकते हैं, पशुपालन में किस तरीके से सावधानी, कौन सा जो महीना चल रहा है इस बरसात के मौसम में हम किस तरीके से अपने पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, ये सारी बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। नमस्कार।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आप लो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आप लो रेडियो
4: आपड़ी बातें।
2: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और दोस्तों, हमारे किसान साथियों के लिए खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं और खास तौर पर उन सेगमेंटों पर बात करते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है। और श्रोता साथियों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम तीन तीन कंपोनेंटों पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम कि हमारे किसान साथी, चूंकि मशरूम की खेती करना बड़ा मुश्किल बात तो नहीं है क्योंकि सरकार इसके लिए ट्रेनिंग्स देती है, सब्सिडी भी देती है, लेकिन मशरूम की खेती आखिरकार कैसे की जाती है इस पर हम खास बातचीत करेंगे। साथ साथ में हम सीप की जो खेती रहती है यानी मोतियों की खेती रहती है, अभी आपने सुना होगा कि मोतियों की खेती कैसी होती होगी, उस पर भी आज हम जिक्र करेंगे। और साथ साथ में हम सफल किसान की कहानी हम लेकर आएंगे और साथ में एक और कंपोनेंट जोड़ना चाहेंगे आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में कि केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना आखिरकार क्या है, किसानों को के आय को बढ़ाने के लिए, पशुपालन को बढ़ाने के लिए किस तरीके की योजना है, कैसे हमारे किसान साथी इसमें पंजीकरण करा सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, तीनों चारों कंपोनेंटों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ बातें करना चाहते हैं अपने किसान साथियों से, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि बरसात का मौसम जैसे ही आए और हम अपनी फसल लगाना स्टार्ट कर दें। लेकिन उन किसान साथियों से कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम तैयारी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसी भी हम कार्य को करते हैं उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमें इस कार्य को करना होगा, इस कार्य को करने के लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे इसको किया जाता है, ये सारी बातचीत हम ध्यान में रखते हैं, एक सोचते हैं कि कैसे खेती की जाती है, कैसे इस काम को किया जाता है। ऐसे ही खेती की बात आती है कि हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि आगे चलकर हम भविष्य में या फिर आगे चलकर कौन सी खेती करें, कैसे करें, क्योंकि उनके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, पथरीला इलाका है, सीमित खेती है, सिंचाई के ज्यादा साधन नहीं है। किसान साथी सोच रहे हैं क्या करें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम लेकर आते हैं आपके लिए नई नई जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से। और बहुत सारी बातें हम अपने श्रोता साथियों को बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बातचीत और बहुत सारे मुद्दों को रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम जल्द शुरू करने वाला है और आप जुड़े रहिए हमारे रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम से और सुनते रहिए आप अपने मन पसंदीदा कार्यक्रमों को। चलिए, आपको हम देर नहीं करवाते हैं और हमारे सेगमेंटों का समय होता है और सुनते हैं। सबसे पहले सेगमेंट में हम आज जानेंगे कि किस तरीके से मशरूम की खेती की जाती है, कौन सा उपयुक्त समय रहता है हमारे किसान साथियों के लिए, कैसे की जाती है, आइए इस खास रिपोर्ट को। और साथ साथ में हम सुनेंगे इसमें केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में। तो ऐसे ही बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, अपना रेडियो अपनी बात है।
5: आज मशरूम फार्मिंग में सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन एवं कौशल विकास के फलस्वरूप एक बड़े वर्ग ने इसकी कृषि को अपना व्यवसाय बना लिया है। कम पूंजी, कम जगह एवं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाने की इन्हीं हसरतों ने आज मशरूम फार्मिंग को जन्म दिया। अब आप भी यदि घर बैठे मात्र कुछ पैसों की लागत से अपना खुद का मशरूम बिजनेस शुरू कर लाखों कमाना चाहते हैं, तो मशरूम का व्यापार खास आपके लिए ही है। आज काफी लोग मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे हैं। कि मशरूम की खेती से पहले एक उपयुक्त स्थान का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होता है। मशरूम काफी नाजुक होती है, इसलिए भंडारण से वितरण के बीच ज्यादा देर आपकी फसल को खराब कर सकती है। साथ ही मार्केट से ज्यादा दूरी आपकी कुल लागत को भी बढ़ा सकती है। मशरूम की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री तक का तापमान अनुकूल माना जाता है। साथ ही मशरूम के विकास के लिए नमी की भी काफी आवश्यकता होती है। हवा में 85 से 90 प्रतिशत तक की आर्द्रता बनाए रखना एक चैलेंज हो सकता है। अमूमन मशरूम की खेती के लिए मई से अक्टूबर तक का समय बिल्कुल उपयुक्त समझा जाता है। हालांकि आवश्यक वातावरण एवं माहौल बना आप 12 महीने इसकी खेती कर सकते हैं। शुरुआती चरण में यदि आप मशरूम की खेती छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, तो 400 स्क्वायर फीट तक की जगह आपके लिए उपयुक्त रहेगी। भारत में मशरूम की खेती के लिए मूलतः 3 तरह की क्यारियां बनाई जाती हैं। इसमें पहला है लटकाकर। इसमें मशरूम के लिए कंपोस्ट का निर्माण कर प्लास्टिक बैग में कंपोस्ट रख बीच में बीज की एक परत बना लें। ऊपर से कंपोस्ट की परत दर परत में बीज को रोपकर प्लास्टिक का मुंह धागे से बांध दें। किसी स्टैंड के सहारे कंपोस्ट को झुला कर रख दें। ये विधि खासकर उनके लिए काफी उपयुक्त है जबकि आपके पास जगह का अभाव हो। मशरूम उगाने की दूसरी विधि है जमीन में क्यारियां बनाकर। जमीन में क्यारियां बना कंपोस्ट को फैलाकर बीज को रोपा जाता है। समय समय पर सिंचाई एवं आवश्यक देखभाल के फलस्वरूप मशरूम की खेती की जाती है। और मशरूम उगाने की तीसरी विधि है बांस का बेड बनाकर। यदि आप जमीन में क्यारियां बना खेती नहीं करना चाहते, तो फिर आप बांस का मचान बना सकते हैं। बांस अथवा किसी लकड़ी की मदद से जमीन से थोड़ा ऊपर बांस का बेड अथवा मचान बना उस पर मशरूम के बीज बो सकते हैं। अब आपको जरूरत होगी मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट की तैयारी करने की। मशरूम की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है कंपोस्ट की तैयारी, जिसमें बीजों को बोया जाता है। भारत में ज्यादातर कंपोस्ट की तैयारी में पुआल का उपयोग किया जाता है। पुआल बाजार से काफी कम कीमत पर आसानी से खरीदा जा सकता है। अब बारी है पुआल को कंपोस्ट में बदलने की। शुरुआती दौर में 5 से 10 किलो तक पुआल से काम चल जाएगा। सबसे पहले भूसे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। ध्यान दे, टुकड़ा न बहुत छोटा न बहुत बड़ा हो। आधा इंच का पुआल आदर्श माना जाता है। अब भूसे को किसी टब अथवा टंकी में पानी से भर रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ दे। ध्यान दे, पुआल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ाने के लिए आप सॉल्युबल लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके नजदीकी खाद्य भंडार से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। रात भर कंपोस्ट को भिगोने के बाद अब इस कंपोस्ट को निकालकर जमीन पर सूखने के लिए छोड़ दें। ध्यान दें, पुआल न ज्यादा गीला न ही ज्यादा सूखा रहे। 2 से 3 घंटे बाद पुआल को हाथ से दबाकर चेक कर लें। यदि काफी दबाने पर थोड़ा पानी निकल रहा है, तो ये कंपोस्ट आपके लिए आदर्श है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाई गई क्यारियों में अब आप इस कंपोस्ट को फैलाते एवं थोड़ी थोड़ी दूरी पर मशरूम के बीजों को बो दें। अब दोबारा बीजों के ऊपर एक परत कंपोस्ट की दें तथा बीज रोप दें। इस प्रकार परत दर परत कंपोस्ट के बीच में बीज रोप कर कुछ दिन के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे, कमरे का तापमान 35 से 40 डिग्री तक बना रहे। आवश्यक नमी बनाए रखने के लिए हर 2 से 3 दिनों के अंतराल में पानी का छिड़काव करते रहें। मशरूम की फसल को कीट पतंगों एवं अन्य हानिकारक कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करें। ध्यान रहे, कमरा में किसी तरह की रोशनी ना पहुंचने पाए। फसल होने में 3 से 4 हफ्तों का वक्त लगता है। कोशिश करें बीच बीच में आवश्यक नमी एवं कमरे का तापमान चेक करते रहे। शुरुआती दौर में 30 किलोग्राम भीगे पुआल से 5 किलो तक फ्रेश मशरूम उगाया जा सकता है। मशरूम के भंडारण एवं वितरण में ज्यादा समय न लगाएं। आप प्लास्टिक में 100, 250, 500 ग्राम अथवा 1 किलो का पैक बना इसे या तो सीधा मार्केट में उतार दें अथवा किसी सब्जी वाले के हाथों अपनी फसल बेच दें। जरा इन बातों पर भी ध्यान दें। मशरूम के बीज को आवश्यक नमी पहुंचाने के लिए हर 2 से 3 दिनों के बीच में पानी का छिड़काव करते रहें। रूम में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कंपोस्ट को छूने अथवा मशरूम के बीजों के संपर्क से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं एवं कोशिश करें कमरे में जूते चप्पल इत्यादि पहनकर प्रवेश ना करें। भारत में आप इन जगहों से मशरूम की खेती करना सीख सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पूसा दिल्ली राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार ओडिशा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन R&D सेंटर मुरथल सोनीपत ICAR रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर NEH रीजन उमरोई रोड बोरापानी मेघालय डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च ICAR चंपाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में और अभी आपने सुना इस महत्वपूर्ण जानकारी को और जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी चूंकि पथरीला इलाका है तो क्या कर सकते हैं तो मशरूम की खेती भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं जाना कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मशरूम की खेती कर सकते हैं क्या क्या लाभ हैं कहाँ कहाँ बेच सकते हैं और इससे कितना लाभ होता है मशरूम की खेती करने से ये सारी बातों को हमने जाना इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं कि जो हमारी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है केंद्रीय पशु पंजीकृत योजना के बारे में जानेंगे लेकिन यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ सुनते रहिए रेडियो 90.8 FM आपड़ा रेडियो अपनी बात है

0: किसानों को पशुओं की खरीद और बिक्री में मदद मिले और किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना लागू किया, जिसके तहत गाय और भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों के दुग्ध उत्पादन का रिकॉर्ड करके पशु पंजिका में लिखा जाता है। इस कार्यक्रम में उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रमाणीकरण और पशुओं के उत्पादन का लेखा जोखा लिखा जाता है। पशु पंजीकरण योजना के उद्देश्य इस प्रकार है। पंजीकरण के माध्यम से बेहतर जर्म प्लाज्म यानी उच्च कोटि की आनुवांशिकी का पता लगाना, प्रजनन क्षेत्र में पशुओं का व्यवस्थित दुग्ध अभिलेखन शुरू करना, पशु चुनाव के लिए दुग्ध अभिलेखन कार्य को बढ़ावा देना, सभी पंजीकृत किए हुए पशुओं के इकट्ठे किए हुए आंकड़ों को प्रकाशित करना ताकि पशु पालकों का मार्गदर्शन हो और पशुओं को खरीदने व बेचने में इसका योगदान मिले, पशुओं की खरीद बिक्री और आयात निर्यात को नियंत्रित करना ताकि उनकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके तथा आयात व निर्यात के लिए स्तर निर्धारित किया जा सके, पशु पालकों को योजना के बारे में जागृत करना और जानकारी देना ताकि पशुओं के सुधार में उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना में पशु पंजीकरण पुस्तक होती है, इसमें उन पशुओं की सूची रखी जाती है जो कि पशु पंजीकरण पुस्तक के नियम व नियमावली पर खरे उतरते हैं। इस पंजीकरण के तहत पंजीकृत पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, जो पशुपालकों को पशु खरीदने तथा बेचने में मदद करते हैं। अब सवाल ये है कि इस योजना के तहत सुविधा का लाभ कैसे उठाया जाए। ये सुविधा देसी गाय व भैंसों के लिए है। इस सुविधा का लाभ गौशाला और अभिलेखन केंद्र के आसपास के पशु झुंड उठा सकते हैं। पंजीकृत पशुओं का ब्यौरा कंप्यूटरीकृत होता है। पशु पालकों तक योजना को आसानी से पहुंचाने के लिए दुग्ध अभिलेखन केंद्र पशु चिकित्सालय पर रखा जाता है। खास बात ये है कि पशु पंजीकरण इकाइयां दुग्ध अभिलेखन योजना को समयबद्ध विस्तार के लिए प्रशिक्षण भी देती है। गौरतलब है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हरियाणा में गाय और मुर्रा भैंस के लिए संयुक्त रूप से एक यूनिट 1962 में रोहतक में स्थापित की गई। ये इकाई हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में संचालित है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गिर व कांकरेज गाय और सूरती भैंस के लिए एक इकाई अहमदाबाद में स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंत में दो और इकाइयां एक आंध्र प्रदेश में और एक राजस्थान में स्थापित की गई। इस प्रकार चार इकाइयां रोहतक हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात, ओंगल आंध्र प्रदेश और अजमेर राजस्थान में चल रही है। पशु पालक स्थानीय केवीके या कृषि विभाग से संपर्क कर केंद्रीय पशु पंजीकरण योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। अब नई चीज हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों को हम वही चीजें बताते रहते हैं, वही बातें सुनाते रहते हैं। आज कुछ नया करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अब कि सीप की खेती, जो मोतियों की खेती रहती है, वो किस तरीके से होती है। ये भी एक व्यवसाय है हमारे किसान साथियों की, नई चीज है। आइए जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मोतियों का खेती कर सकते हैं। लेकिन साथियों, इनसे बातचीत करने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं प्यारे से गीत को।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, अभी आपने इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी मोतियों की खेती कर सकते हैं, कैसे इसका प्रशिक्षण, कहाँ प्रशिक्षण मिलेगा, इसकी सारी जानकारी इस सेगमेंट में सुनते हैं।
1: भारत में मोतियों का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे हम सरल भाषा में सीप पालन या मोती की खेती कहते हैं। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। मोती एक प्राकृतिक रत्न है जो सीप में बनता है। जब सीप में कोई बाहरी पार्टिकल जैसे मिट्टी के कण या कोई सूक्ष्म जीव चला जाता है, तो वो उसे बाहर निकालने के लिए एक तरल छोड़ती है। ऐसे ही धीरे धीरे उस कण पर सीप परत दर परत एक चमकदार कोटिंग बना देती है और फिर एक निश्चित समय बाद यही मोती बन जाता है। सीप पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करना होता है जहां सीप को आसानी से पाला जा सके। सीप को छोटे स्तर से घर में पाला जा सकता है, जबकि बड़े स्तर पर पालने के लिए तालाब की जरूरत होती है। इसके बाद किसान को सीप खरीद कर सीपों को खुले पानी में दो दिन के लिए रखते हैं, जिससे धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वो उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिनेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10x10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर यानी 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ पीठ के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 माह बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वो सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण ले। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण की जानकारी ली जा सकती है।
0: अभी आपने कि हमारे किसान साथियों ने सुना कि किस तरीके से मोतियों का हम खेती कर सकते हैं, यानी हम मोतियों का जो खेती रहती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे प्रशिक्षण लिया जाता है, ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से जानी है। और भी बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम, यानी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बनी रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: जब किसान की मेहनत सार्थक होती है तो खेतों में खुशी की तरंगे बिखरने लगती है और बंजर जमीन भी हरियाली की चुनर ओढ़ लेती है। वैसे तो राजस्थान की धरती को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के किसान प्रकृति का सीधा सामना करते हुए सफलता की कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने कृषि का शायद ही कोई क्षेत्र छोड़ा हो जिसमें कामयाबी ना पाई हो। जयपुर राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहाँ जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम कृषि के साथ साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना और सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आज वो जिस मकाम पर है उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया। आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही है, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल है। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती है, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है।
1: ये राजस्थान में पानी की काफी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस है, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे फार्म पॉन्ड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पॉन्ड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पॉन्ड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पॉन्ड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। साथ ही फार्म पॉन्ड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है और जिसमें 67,000 रुपए मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपए मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियां डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियां हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियां हैं, जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं। और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियां नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है, जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियां डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूं कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पॉन्ड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत।

एक उन्नतशील किसान बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमें वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए आप समय समय पर कृषि विस्तार अधिकारी अपने झाबुआ जिले में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, खासतौर पर जो KBK रहता है उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो नई नई पद्धति से और नई नई योजनाओं के साथ लाभ लेकर आप एक अच्छी पद्धति से खेती करके मुनाफा कमा सकते हैं, यही हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है। मित्रों, अब हमारा समय होता है आज के कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

गीत संगीत की इस महकती हुई शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त समीर, और चलिए मिलते हैं एक और उभरते हुए कलाकार से, एक नए टैलेंट से। कौन है ये, क्या है ये, इनके बारे में जानते हैं और इनके गीतों का मजा लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आपके ही आज के कलाकार प्रोग्राम को।

आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो कलाकार हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में हैं, जो सिंगर जो टैलेंट हमारे साथ हैं, उनका नाम है प्रीतपाल जी। बाकी हम सारी जानकारी उनके बारे में उनको ही जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को उन्हीं के गाए हुए इस प्यारे से गीत से। पहले उनका गीत सुनते हैं ना।

0: बहुत बहुत प्यारा गीत। प्रितपाल जी, वेलकम टू अवर प्रोग्राम।
1: थैंक यू सर, इट्स अ प्लेजर।
0: सो आपको जानने के लिए बस यूं ही मजे मजे में कुछ बातें करेंगे, जैसे कि आपका जन्म कहां पर हुआ और अब भी आप कहां रहते हो, उस जगह के बारे में कुछ बताइए।
1: मेरा जन्म झारखंड के एक छोटे से टाउन में, मुसाबनी करके एक टाउन है, वहां पर मेरा जन्म हुआ। और मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरे 5 बहनें हैं और वो बहुत ही सपोर्टिव हैं मुझे, हमेशा के लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। और मैं अभी फिलहाल बैंगलोर में जॉब करता हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं जहाँ पे पैदा हुआ, मेरा जन्म जहाँ पे हुआ, वहाँ पे उस जगह की खासियत ये है कि उस जगह पे वो कॉपर माइंस का एरिया था, मीन्स वहाँ पे माइनिंग होती है कॉपर की।
0: ओके।
1: तो वहाँ पे पूरे भारत से लोग वहाँ पे आते थे और काम करते थे। और अभी

0: एक्सपीरियंस था, और वो बहुत ही मतलब ग्रीनरी वाली जगह है, तो मैं नेचर से बहुत ज्यादा लगाव रखता हूँ, तो इसलिए वो मुझे और भी ज्यादा खास है।
1: वाओ, अमेजिंग। ये एक अजीब सी और बहुत ही खूबसूरत जानकारी है झारखंड के एक इलाके बारे में, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। दोस्तों, मजा आ गया सुन के, तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत बढ़िया गीत, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं प्रीत जी, और चलिए आपके बचपन में जाते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: वैसे तो बचपन में जैसे आपको पता है कि हर बच्चे के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है कि मैं ये भी बन जाऊं, मैं वो भी बन जाऊं। तो मेरे अंदर भी कुछ इच्छाएं थी जो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा इच्छा वो तेज थी कि मैं हाँ ये बनूं। तो पहले मैं ऐसे हर हर बच्चे को रहता है कि हर लड़के को रहता है कि वो एक ना एक दिन क्रिकेटर बने। तो पहले पहले मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत हम क्रिकेट बहुत खेलते थे बचपन से, तो वो बहुत ही इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं कोचिंग लूं वगैरह। बट पढ़ाई पे ज्यादा फोकस देने का मतलब रहा। उसके बाद मैं ये भी था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ बहुत मतलब दिलचस्पी थी मेरी कंप्यूटर्स के अंदर। तो मैं एक तरीके से अपने आप को देखता था कि मैं एक फ्यूचर में चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। तो जो मैंने फिर आगे चल के उसकी पढ़ाई की, मैंने इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस पे, और फिर मैं उसको अचीव कर पाया अपने ड्रीम को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। और सिंगिंग साथ में ही चलती थी घर पे, मेरे एक्चुअली म्यूजिकल एनवायरनमेंट था। मेरे पापा गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन करते थे, अभी भी करते हैं, और मेरे सिस्टर वगैरह भी वो भी एक्चुअली म्यूजिक का उन्होंने भी तालीम ली है। तो पहले से ही म्यूजिकल एनवायरनमेंट था, तो मेरा थोड़ा सा वहाँ पे रुझान था। बट बहुत और ज्यादा रुझान बढ़ा जब मैंने 2005 में सारे गामा पा का जो एक सीजन आया था उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो फिर मैं उस पे बहुत और ज्यादा तीव्र हो गई इच्छा तो सिंगिंग लाइन पे आने की। तो फिर मैंने उस पे ज्यादातर फोकस किया, और मैं फिर 11th स्टैंडर्ड से अपने स्कूल के इवेंट्स पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया मैंने।
0: That's nice. बड़ी मजेदार बात। आपने यूं तो पहले सोचा कि आप क्रिकेटर बने, लेकिन फिर आपने जो सोचा वो आप बन भी गए, क्या बात है। वैसे बस यूं ही पूछ रहा हूं जल्दी से, क्रिकेट टीम में या क्रिकेट में एज सच आपके हीरो कौन रहे?
1: मेरे हीरो मतलब ऐसे बहुत कोई ऐसा नहीं है, बट मैं ज्यादातर कुछ है नाम जो सबको ऐसे पसंद रहते हैं। तो मुझे ऐसे कुछ नाम है, जैसे मुझे महेंद्र सिंह धोनी पसंद है क्योंकि उनका वो अपना हर किसी का अपना अपनी एक खूबी है, अपना एक कैरेक्टर है जो मुझे पसंद आता है। तो मुझे महेंद्र सिंह धोनी में उनकी कामनेस पसंद आती है, मुझे विराट कोहली में उनकी हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटी पसंद आती है, जो कभी गिव अप नहीं करते हैं वो पसंद आती है। और फिर मुझे हरभजन सिंह पसंद है, उनकी हमें उनके अंदर भी मुझे फाइटिंग स्पिरिट जो है वो पसंद आती है। फिर और सबसे नए चेहरों में मुझे अर्शदीप सिंह पसंद है। तो वो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स मुझे ऐसे पसंद है क्रिकेट। और सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं पसंद करता।
0: ऑफ कोर्स। तो दोस्तों आपने सुना प्रीतपाल जी को क्रिकेट में जो लोग पसंद हैं, जो प्लेयर्स पसंद हैं, वो क्यों पसंद हैं, उनके किसी एक पर्टिकुलर क्वालिटी के वजह से। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत प्रीतपाल जी की आवाज़ में।

0: अभी हम लोग अपने बचपन में ही हैं प्रितपाल जी, तो अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: हाँ, तो बचपन में मेरे साथ ऐसे बहुत सारी अच्छी यादें हैं, बट एक याद है जो मुझे मतलब बहुत ही लाइक सरप्राइजिंग कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग तरीके से मुझे खुशी मिली थी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे स्कूल पे बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते रहते थे, जैसे कि कोई ओलंपियाड हो गया या फिर कोई एक्सटेम्पोर हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे। और मुझे ये था कि मैं हर कॉम्पिटिशन में पार्ट लेता था, वो मुझे पहले से था। तो मैं ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते थे तो मैं पार्ट ले लेता था, बट मेरे अंदर ये नहीं था कि मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं किसी में जीत जाऊं या फिर विन या प्राइज मिल जाए मुझे। तो मैं बस पार्ट ले लेता था, उसके बाद उसको भूल जाता था। फिर एक दिन हम असेंबली पे हमारे वो किसी इवेंट या किसी कंपटीशन की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी चल रही थी, तो हम सब असेंबली में खड़े थे। अब मुझे याद भी नहीं था कि मैंने उस इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया है। तो फिर वो उसका रिजल्ट जब आया तो मुझे उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया, बट वो नाम एक्चुअली उन्होंने गलत किया। मेरा नाम प्रितपाल है और उन्होंने प्रिताल सिंह करके अनाउंस किया। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, बट फिर बाद में मुझे लगे ऐसा नाम का कोई और तो है नहीं, मैं ही हूँ। तो फिर सबने बोला कि तुम ही हो, तो फिर वो मुझे एक बहुत सरप्राइजिंग लगा कि मुझे एट अ सरप्राइज, जब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तब मुझे वो मेरे नाम का अनाउंसमेंट हुआ और मुझे स्टेज पे बुलाया गया और मुझे मेडल मिला। मैथ्स ओलंपियाड था वो, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है। वो मेरी एक बहुत अच्छी याद है कि वो सरप्राइज मुझे अचानक से मिला और मुझे खुशी मिली और मेरे पेरेंट्स को भी खुशी मिली।
0: भाई वाह, क्या बात है, बड़ी सुंदर बात, बड़ी ही सुंदर याद आपके पास। तो चलिए दोस्तों, सुने एक प्यारा सा गीत प्रितपाल जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया प्रीतपाल जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, आपका सबसे पसंदीदा खाना, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली डू यू लाइक टू ईट, कोई डिश, कोई ऐसी व्यंजन जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसके बारे में बताएं।
1: ऐसे मुझे बहुत बहुत ज्यादा कोई चीजें ऐसे फेवरेट नहीं बोल सकते, बट मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब जैसा मूड हो मैं वैसा खाना पसंद करता हूँ। तो अभी कभी कभी मुझे मूड होता है कि मैं आलू पराठे खा लूँ तो वो खा लेता हूँ, वो मुझे पसंद है। फिर कभी कुछ जैसे वेस्टर्न में खाने का मन हुआ तो मैं फिर पिज्जा वगैरह को प्रेफर करता हूँ। फिर या फिर कभी कभी घर की सिंपल राइस, दाल रोटी या दाल चावल पसंद है। और सबसे सिंपल चीज मुझे दाल चावल और आलू का चोखा पसंद है,
0: ओके
1: तो वो मैं बहुत अच्छे से खाता हूँ। बस ऐसे ही मूड के ऊपर डिपेंड करता है। और कभी मीठा खाने का बहुत क्रेविंग हुई तो मैं फिर कुछ भी मीठी चीज खा लेता हूँ, जैसे केक हो गया या फिर कोई चॉकलेट हो गई या कुछ हो गया ऐसे।
0: ऑलराइट, बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना कि प्रीतपाल जी अपनी पसंद अपने मूड को देखते हुए बदल भी लेते हैं। वेरी नाइस, चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत प्रीतपाल जी की ही आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए प्रीतपाल जी, आप तो क्योंकि गायक हैं तो एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि ऐसा कौन सा गीत है, कौन सा सॉन्ग है जो आपकी पर्सनालिटी को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, आपकी शख्सियत को सूट करता है?
1: वैसे तो मेरे सबसे फेवरेट सिंगर सोनू निगम जी है, तो बट मुझे एक सॉन्ग है जो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से मुझ पे सूट कर सकता है, वो है के का यारो दोस्ती,
0: ओके
1: जो उन्होंने गाया था। तो क्योंकि उस पे उन्होंने जो एक दोस्त की जो अहमियत होती है और दोस्त की जो क्वालिटीज होती है, मैं उनको अपने अंदर डालने की हमेशा कोशिश करता हूँ। हमेशा हमेशा अपने दोस्तों के लिए ट्राई, मतलब उनके समय में बुरे हो या फिर अच्छे हो, सब सब समय उनके साथ रहने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो सॉन्ग मेरे ऊपर सूट करेगा।
0: बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं प्रीतपाल जी की आवाज में।

0: अमेजिंग, बहुत ही प्यारा गीत। तो प्रीतपाल जी, अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों है?
1: मेरे बहुत मतलब बहुत सारे कुछ दोस्त हैं जो बचपन से हैं, जो अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, जो स्कूल के टाइम से हैं। तो उनमें से कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं मेरे। तो एक दो है जिनका नाम मैं ले सकता हूँ कि एक है वो रितु नाम है उनका, और ऐसे कुछ है सारा दिन दो करके है, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मतलब है बहुत अच्छे हैं। तो उनकी क्वालिटी मुझे सबसे अच्छी ये लगती है कि वो मतलब हमें या मुझे कोई भी सिचुएशन हो, मुझे कभी किसी चीज के बारे में वो जजमेंट नहीं पास करते, मतलब वो मुझे जज नहीं करते हैं। अगर मैं किसी परेशानी में हूँ तो मैं उनसे कभी भी बात कर सकता हूँ, और वो मुझे हमेशा सुनते हैं, और अपना इनपुट्स अगर मैं मांगता हूँ तो वो देते हैं, और वो बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं हमसे। तो ये मेरे मुझमें मतलब ये मैं बिलीव करता हूँ हमेशा कि एक दोस्त के अंदर ये होना चाहिए कि वो कभी अपने दोस्त को जज ना करे, और वो हमेशा हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे, और उनको जब भी जैसे उनको सिर्फ सुने। हर इंसान को एक ऐसा दोस्त या एक ऐसा साथी चाहिए जो उसको हमेशा सुने, और मतलब बिना किसी जजमेंट के सुने, ताकि वो अपने अंदर की सारी बातें उनसे शेयर कर सके।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए दोस्तों, एक और प्यारा सा गीत हो जाए प्रीतपाल जी की आवाज में।

0: बहुत प्यारा गीत। प्रीतपाल जी, आपका कोई निक नेम है क्या और क्या मतलब है उसका?
1: ऐसे मुझे बहुत से लोग बहुत सारे निकनेम से बुलाते हैं, तो मैं जैसे मुझे मैंने आपको पहले बताया कि मैं क्रिकेटर बनने का शौक रखता था, तो मुझे मैं बहुत कुछ कुछ बॉलर्स जो होते हैं गेंदबाज उनकी बॉलिंग एक्शंस कॉपी करता था, तो उनमें सबसे अच्छे से मैं बोलता हूँ मैं कॉपी कर सकता था हरभजन सिंह की। तो उस रीजन की वजह से और एक्चुअली क्योंकि मैं सिख भी हूँ, तो उन दोनों रीजन की वजह से मेरे घर पे मेरे आसपास के जो भी नेबर्स वगैरह जो भी थे सब मुझे भज्जी भज्जी करके बुलाते थे।
0: अरे वाह।
1: तो वो एक निकनेम मुझे वहां पे मिला था, तो अभी भी मैं जाता हूँ तो कुछ लोग अभी भी मुझे वहां पे भज्जी बुलाते हैं, तो वो बहुत ही एक प्यारा निकनेम मुझे मिला है। और ऐसे घर पे मुझे कोई स्पेसिफिक निकनेम नहीं, मतलब घर पे मुझे बाबू करके ही बुलाते हैं।
0: That's very nice.
1: तो
0: बड़ी प्यारी बात।
1: और ऐसे बस कोई कोई प्रीत बुला देता है। और एक सिंगिंग से रिलेटेड है कि मैं जिमी रब्बी शेरगिल के सॉन्ग जो एल्बम निकला था बुला के जाना मैं कौन, तो उनका सॉन्ग बहुत गाता था, तो उनके ऊपर भी कोई कोई मुझे बुला बुला देता था ऐसे मजाक में। तो ऐसे बहुत सारे निकनेम्स हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी बात। चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत प्रीतपाल जी की आवाज में ही।

0: बहुत बढ़िया प्रीतपाल जी, अगर आपको अपने देश भारत के अलावा, एक इमेजिन कीजिए बस यूं ही, किसी और देश में रहने को मिले तो कहाँ रहना पसंद करेंगे आप?
1: वैसे तो भारत सबसे सबसे प्यारा देश है पूरी दुनिया में रहने के लिए, तो उसके अलावा कोई और देश है नहीं। बट मुझे एक्चुअली, जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे नेचर से बहुत लगाव है, तो मैं किसी ऐसी कंट्री में जाना रहना चाहूंगा जहाँ पे वो नेचर हो। तो वो है, वैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गए, स्वीडन हो गए, तो ये सारे जो जगह है ये मुझे अभी भी बहुत पसंद है, जो अभी भी मैं वहां जाना चाहता हूँ, एटलीस्ट एक बार तो जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत मतलब हरियाली है और नेचर से बहुत जुड़ सकते हैं आप वहां पे, क्योंकि वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट मतलब ज्यादा वेस्टर्न या मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, तो हुआ भी है तो वो नेचर को मद्देनजर रखते हुए हुआ है, तो मैं इसीलिए उन सारी जगह पे रहना पसंद करूंगा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, हो जाए एक और गीत प्रीतपाल जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया प्रीतपाल जी, आगे बढ़ते हुए अपने पसंदीदा रंग के बारे में हमें बताइए, कौन सा कलर, कौन सा रंग ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है और क्यों?
1: मेरा सबसे फेवरेट रंग ब्लू है। मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है क्योंकि ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है एक कामनेस और एक सूदिंग नेचर को, जो मैं समझता हूँ कि मेरे मैं बहुत मतलब मेरे अंदर है, वो पेशेंस है, कामनेस है
0: जी।
1: और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं वो बनाए रखूँ। हाँ, कभी कभी हर बंदा होता है कि वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हमेशा काम रहूँ और ब्लू कलर मुझे उसमें बहुत हेल्प करता है, मुझे वो बहुत पसंद है इसलिए।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा, बड़ी ही प्यारी बात। तो चलिए दोस्तों, हो जाए एक प्यारा सा गीत प्रीतपाल जी की ही आवाज में।

0: अमेजिंग. आगे बढ़ते हैं प्रीतपाल भाई. और अगर मैं किसी को आपके बारे में इंट्रोड्यूस करूं, आपको इंट्रोड्यूस करूं, आपके बारे में बताऊं, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं? आप मुझे बताइए, मैं वैसा ही उनको दूंगा.
1: मेरे बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बनना भी चाहता हूँ और कोशिश जारी है. तो मुझे लगता है कि कोई अगर मेरे बारे में बात करे तो वो मेरे बारे में बताए कि जैसे मैं कि बहुत एक एक ऑनेस्ट और एक जो बंदा ऑनेस्ट है और वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है और जो जो एक म्यूजिक के लिए उसका डेडिकेशन या उसका म्यूजिक लवर है. तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन हो मेरे लिए.
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत प्रीतपाल जी की ही आवाज में.

0: और प्रितपाल भाई, अब हम अपने प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए सिंगर्स के लिए और हमारे सुनने वालों के लिए कुछ कहिए, बात कीजिए उनसे।
1: मैं बस ये कहना चाहूंगा, जो भी अगर नए सिंगर्स हैं तो वो अपने जैसे सिंगिंग भी एक एक तरीके की आर्ट है, राइट, तो उन उसके लिए अपना समय दें और हमेशा कभी भी गिव अप ना करें। जैसे अगर उनके अंदर इच्छा है किसी चीज को लेकर या किसी भी पैशन को लेकर उसके अंदर, तो वो कभी भी गिव अप ना करें, हमेशा चाहे जितना भी समय लग जाए वो हमेशा उसके साथ रहें, जुड़े रहें, और ऐसे जनरली हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करें और हमेशा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें सोचें, ताकि हम ऐसे ही खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सोच के रिएक्ट ना करें। हमेशा कभी भी कुछ भी बोले तो दो बार सोच के बोले और हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सेप्ट करें और फिर बात करें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रितपाल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपकी गीत मजा आ गया सुन के उनको। थैंक यू सो मच प्रितपाल भाई।
1: थैंक यू, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये मैं पहली बार किसी ऐसे रेडियो इवेंट पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: अमेजिंग,
1: थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी।
0: थैंक यू दोस्तों, अगर आप भी आज के कलाकार प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, नए टैलेंट्स के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करें। नंबर है 9656517317, ये है 9656517317। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेहद शानदार गायकी, बेहद शानदार टैलेंट, एक और हसीन संगीत और गीत से भरी हुई शाम के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा एक नए टैलेंट के साथ। सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आज के कलाकार के इस बहुत ही सौंधे सौंधे से बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपको एक अलग तरह की खुशबू आएगी। ये प्रोग्राम है खास करके गजलों का, और आज हमारे साथ जो गजल गायक मौजूद हैं वो हैं राजीव पांडे साहब। राजीव पांडे साहब हमारे साथ पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन हमें मौका मिला है उनसे दोबारा बात करने का, उनकी गायकी को दोबारा सुनने का एक अलग अंदाज में। तो फिर राजीव भाई का मैं स्वागत करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको शुक्रिया कहता हूं, और उनसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को एक बार फिर से जरा उनकी याददाश्त तरोताजा हो जाए कि भला आप कौन हैं, कहाँ हैं, बताइए ना जरा।
1: सर मैं राजीव पांडे, मेरा नाम राजीव पांडे है। हाँ। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है, एंड जबलपुर बहुत फेमस है भेड़ाघाट के लिए, भेड़ाघाट फॉर मार्बल रॉक्स। जबलपुर फेमस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज के लिए, अराउंड 6-7 फैक्ट्रीज हैं जबलपुर में। एंड मैंने अपना एजुकेशन जबलपुर से ही किया, मैंने BSc विथ मैथ्स किया, उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में काम किया हूँ, फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू रीजनल मैनेजर, कुछ 18-19 साल। उसके बाद सर मैं फार्मास्यूटिकल से इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया, मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में था कुछ 10 साल।
0: okay.
1: और उसके बाद मेरी वाइफ रत्ना पांडे जी का एक अपना स्कूल है, एक किंडरगार्टन स्कूल है, जो वो की 23-24 साल से चला रहे हैं। तो पिछले 10 सालों से मैं उनके साथ ही उनके काम में सम्मिलित हुआ, उन्हीं के काम को साथ में मिलके हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो शी इज माई बॉस इन दिस न्यू बिजनेस, न्यू वर्क। हमारे स्कूल के काम में वो मेरी बॉस हैं, बिकॉज मैं तो फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस वाला आदमी था, फिर एजुकेशन फील्ड में आ गया। वैसे एजुकेशन में मेरे मदर फादर भी हुआ करते थे। मेरे फादर रिटायर्ड हुए थे एज अ प्रिंसिपल, मेरी मदर भी टीचर थी, तो हमारी फैमिली में एजुकेशन का ही बहुत वो था। से मेरी वाइफ ने फॉलो किया उसको, और अब मैं उनके साथ कर रहा हूँ।
0: बहुत खूब।
1: मेरे जी मेरे दो बच्चे हैं, मेरी डॉटर मुक्शदा एंड मानस, माय सन, बोथ आर इन IT इंडस्ट्री। तो ऐसा है सर।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारी याददाश्त वापस से तरोताजा हुई कि राजीव पांडे जी कौन है। तो राजीव भाई चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि गजलों की तरफ आपका झुकाव कैसे हो गया?
1: जी सर, जैसे कि पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था, मेरे फादर बहुत अच्छे सिंगर थे, इज नो मोर नाउ, अब है नहीं वो। तो मैंने मुकेश गाना सीखा उनसे, और उन्होंने मुझे कुछ, मैं जब 18 साल का था उस समय उन्होंने मुझे एक टेप रिकॉर्डर ला के दिया, और वो टेप रिकॉर्डर के साथ एक कैसेट था, वो कैसेट था अनफॉरगेटेबल्स का।
0: अच्छा जी, अच्छा जी।
1: जगजीत जी का कैसेट था अनफॉरगेटेबल्स का। गायन का शौक तो था, फादर को सुनते सुनते मैंने सीखा हुआ था
0: जी।
1: बट जब मैंने वो कैसेट सुना तो मेरी म्यूजिक के प्रति एक टोटल, जो कहना चाहिए, लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया, तो वहां से ही मेरा गजलों की तरफ झुकाव हुआ। फिर जगजीत सिंह के जितने एल्बम हुआ करते थे सभी एक एक लाके हम सुना करते थे। फिर मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ रत्ना को भी सेम शौक था जगजीत सिंह को सुनने का, तो हम दोनों एक से हो गए म्यूजिक के शौकीन, और वो भी जगजीत सिंह के। तो फिर हर प्रकार के उनके, जब भी उनका कोई एल्बम आने को होता था तो हम लोग पहले से रेडी होते थे कि एल्बम लॉन्च हुआ है, उसी दिन हमको वो एल्बम ला के फिर सुनना है। और ऐसे सर म्यूजिक के प्रति, गजल के प्रति इतना लगाव हुआ कि एक लंबा समय गजलें सुनते सुनते निकाला। फिर जगजीत सिंह जी के साथ फिर गुलाम अली साहब को भी सुनने लगे, मेहंदी हसन खान साहब को भी बहुत सुना, और फिर गाने का जुनून तो था ही, पहले हिंदी का मतलब फिल्मी गाने गाया करते थे, साथ में गजलों को भी गाना स्टार्ट कर दिया। पिछले कुछ 4-5 साल से, जब से सर मैं स्टार मेकर से जुड़ा और बहुत नई फील्ड के, इस म्यूजिक फील्ड के बहुत लोग मिले, तो मैं गजलें और ज्यादा गाने लगा।
0: बात खूब।
1: बहुत खासकर जगजीत सिंह साहब को। जी
0: जी, तो चलिए दोस्तों, हमने ये जाना कि गजलों की तरफ राजीव पांडे जी का झुकाव कैसे हुआ, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम की और इन गजलों को सुनते हैं जो राजीव जी ने हमारे लिए तैयार की। आइए, पेश खिदमत है।

0: तो राजीव भाई, बहुत ही खूबसूरत गायकी और गजलों का एक अलग माहौल होता है, एक अलग तरीका होता है। हमें थोड़ा सा बताइए, आपने बताया मेहंदी हसन साहब को सुना आपने, जगजीत सिंह साहब की आवाज की वजह से आप गजलों के मुरीद हो गए, गुलाम अली ऑफकोर्स कहने की ही कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा समझाइए, खास करके मैं जानना चाहूंगा गजलों के कितने तरीके की गजलें होती हैं, मतलब कुछ टाइप्स होते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, या मतलब जैसे कि अगर हम हिंदी के गानों की बात करें तो रोमांटिक होता है, मतलब कोई उदासी वाला गाना होता है, कोई जॉली नेचर का गाना होता है, कोई मौसम पर होता है, तो क्या गजलों में भी इस तरीके के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं?
1: सर वैसे मैं बहुत ज्यादा ये चीज समझने में डीप में नहीं गया, बट हाँ जहां तक गजल रोमांस को लेके ही गजल है
0: जी,
1: और गजल का रूप ही जो बना वो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है। फिर साथ में जगजीत सिंह साहब ने कुछ गजलें गाई जिसको कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से रिलेटेड भी, जो बहुत अच्छे शायरों ने जो गजल लिखी उनको भी गाया उन्होंने। पर जहां तक मेरा मानना है गजल में एक संजीदगी होती है, एक बड़ा ठहराव होता है, एक बड़ा सुकून मिलता है। रही बात तो ये मेन तो रोमांस और प्यार से रिलेटेड ही है जहां तक मैं समझता हूँ
0: जी। लेकिन कई बार राजीव भाई मुझे ऐसा महसूस हुआ गजलें सुनते हुए कि ज्यादातर, मतलब ऑफ कोर्स प्यार मोहब्बत रोमांस ही है उसमें, बट ज्यादातर मुझे लगा कि बहुत पेनफुल हैं गजलें, ज्यादातर दिल टूटे हुए लोगों की, दारू का एक ग्लास हाथ में लेकर बैठे हुए रोते हुए गजलों को गाना
1: जी जी जी,
0: तो
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: बात
1: जी,
0: मुझे कुछ समझ में नहीं आई, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या मतलब गजलें क्या सिर्फ कुछ दुखी इंसान होते हैं उन्हीं की पसंद है, या वही गाते हैं, या वो शायर भी दिल टूटे हुए होते हैं वही लिखते हैं, मतलब वाय गजल इतनी हमेशा दुखी क्यों होती है?
1: सर ये बात तो कहना बिल्कुल सही, क्योंकि गजल हर व्यक्ति के जो म्यूजिक पसंद करने वाले होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी के पसंद की चीज हो गजल
0: जी,
1: क्योंकि ये बात तो पक्की है कि गजल, जैसा आपने बोला कि हाँ जैसे शराब के पे बहुत गजल बनी है, पीने वालों पर, पिलाने वालों पर बहुत गजल बनी है
0: जी,
1: है टूटे हुए दिल की बहुत गजल बनी है। तो जहां तक मुझे भी ऐसा लगता है जब गजल सुनते हैं और गजल गाते हैं कि गजल कोई वो वाला गायन नहीं है जिसको कि सेलिब्रेशन वाली चीज उसमें आए है, या एक वैसा माहौल हो कि बहुत हंसी खुशी वाला माहौल हो वहां गजल चल रही हो। गजल थोड़ा सा जैसे हम बोलते हैं मुकेश साहब के गाने जो थे वो थोड़ा दर्द भरे हुआ करते थे
0: जी,
1: हैं तो वैसा ही यहाँ पर गजल में भी वो दर्द तो है, जिंदगी का जो दर्द है वो उभर के निकल के आता है गजलों में, शब्दों में, धुनों में, उसकी गायकी में, सभी जगह
0: जी। तो ये सवाल दरअसल मेरे दिमाग में लगातार उठता रहा है दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे हैं, राजीव पांडे साहब ने अपनी बात रखी है, बिल्कुल सही है, आपके क्या विचार हैं जरा मैसेज करके हम सब लोगों को बताइए ना। चलिए तब तक आगे बढ़ते हुए इन प्यारी सी गजलों का आनंद उठाते हैं, लुत्फ उठाते हैं, डूबते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं इन्हें। पेश करता हूं ये गजलें।

0: बहुत खूब, बहुत ही बहुत खूब। दरअसल राजीव भाई, पिछली ही बात जो चल रही थी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा उसको, क्योंकि ठीक है हर एक का मिजाज अलग अलग होता है। कोई दरअसल कुछ दिनों पहले मैं एक फ्रेंड के यहाँ गया था और उनके बेटे का बर्थडे था और बालकनी पर बैठ के उन्होंने केक वेक किया हुआ था, अरेंज किया हुआ था, बारबेक्यू वगैरह किया हुआ था। तो वहाँ पर बैठे और उनके बर्थडे, उनके बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट करना था और उन्होंने अपने टैबलेट के ऊपर गजलें लगा दी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा अटपटा सा लगा कि ये मतलब क्या, मतलब ये ओकेजन क्या है और वो सुना क्या रहे हैं। तो कुछ और वो बड़े, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था साहब की क्या माहौल बना दिया मैंने। मुझे बहुत ही अटपटा लगा, उनको टोकना नहीं चाहता था, उन्हीं के घर पे उन्हीं के यहाँ इन्वाइटेड था मैं, तो मैंने उनसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा यार भाई डिस्टर्ब हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, इसको बंद कर दो यार। लेकिन बहुत अटपटा सा लगा कि लोगों को समझ में नहीं आती है बात की कि किस ओकेजन पे क्या करना चाहिए। चलिए ये उनकी अपनी सोच होगी, कोई बात नहीं। आप यह बात आपकी गजलों की हो रही है, तो अगर स्पेसिफिक बात करें, आपने कहा आप मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, जगजीत जी, है ना, इनको आपने ज्यादा सुना, इसके अलावा भी कोई और कोई गजल गायक हो जिनकी गायकी ने आपको बहुत बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो?
1: सर जैसे कि मुकेश जी की भी जो प्राइवेट गजल्स थी,
0: जी हाँ,
1: जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, मैं अपने फादर से सुना करता था, चांद आहें भरेगा फूर दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। तो मुकेश साहब की बहुत सी प्राइवेट गजल्स थी
0: जी।
1: वो भी वो मैं सुना करता था अपने फादर से, फिर मैं खुद भी गाता था, अभी भी गाता हूँ। तो हमारे इवन रफी साहब ने भी प्राइवेट गजल्स गाई हुई है। अनूप जलोटा साहब जब शुरू में अपनी गायकी स्टार्ट किया उन्होंने, तो उनका एक गजल का एल्बम निकला था, चांद अंगड़ाइया ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। फिर इवन तलत अजीत साहब की गजल्स बहुत अच्छी हैं, फिल्मों में उनने गजल्स बहुत अच्छी गाई हुई है। हरिहरन साहब बहुत अच्छे गजल के सिंगर हैं। सो ऐसा तो सभी गायकों ने गजल्स गाई हैं, बट ये जगजीत सिंह जी हुए जिनने की गजल को स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में आम लोगों तक पहुंचाया। अदरवाइज गजल जो उर्दू पोएट्री है वो सबके समझ की बात नहीं हुआ करती थी
0: जी।
1: हम खान साहब को पहले सुनते थे तो बहुत से अल्फाज उनके हमें इस समझ से परे होते थे
0: जी,
1: बट हम उनको गाने के समय उच्चारण करने की कोशिश करते थे। फिर जगजीत जी जब गजलों को लेके आए तो उनने इसको थोड़ा सा काफी कुछ हमारे लिए इजी किया
0: जी।
1: पहले पहले गायकी भी गजल की बड़ी टफ हुआ करती थी, मोस्टली क्लासिकल हुआ करता था, आठ आठ नौ नौ मिनट की गजल हुआ करती थी।
0: हाँ।
1: और बहुत ज्यादा आपको आपकी गायकी, आपके सुर पक्के होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत बीच बीच में आलाप लेना पड़ता था, बहुत सरगम की जरूरत पड़ती थी। फिर जब जगजीत जी इसको लेके आए तो गजल्स की टाइमिंग भी कम हुई, कुछ 5-6 मिनट्स की गजल होने लगी, थोड़ा इजी गोइंग हो गई उनको गाने में। तो देखा जाए गजल का प्रॉपर उसका प्रचार जो हुआ, जो हम आप सब समझ पाए, वो जगजीत जी के थ्रू मुझे समझ में आता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने साहब, बिल्कुल सही कहा। जब आपने सही फरमाया, जिस वक्त मैंने गजलों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया था उस वक्त जगजीत साहब तो ऑफ कोर्स आ ही चुके थे, बट मेरा झुकाव थोड़ा सा पंकज उदास की तरफ ज्यादा था, क्योंकि कुछ ऐसा लगा कि पंकज उदास फिल्मों के गानों की तरह गजल को गा रहे हैं।
1: जी,
0: जो खास करके वो चिट्ठी आई है का जो शुरू हुआ था, तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था। उसके बाद ऑफ कोर्स चंदन दास वाज देयर, तो वो फिल्मों के है ना, तो वो फिल्मों के गानों की तरह गजलों को गाया, जगजीत जी ने भी वैसे ही गाया, तो वो आम आदमी की पहुंच में गजलें पहुंची।
1: एक कपल और था, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता, वो भी गजल ही गाया करते थे।
0: जी जी जी जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन कौन गजल गायक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर गजल गायकी को एक रूप दिया, एक शक्ल दी। चलिए अभी तो

0: बहुत खूब, अमेजिंग सिंगिंग, क्या बात है राजीव भाई। ठीक है, आपने बात करी गुलाम अली साहब की, मेहंदी आई हसन साहब की, जगजीत द गजल किंग, गजल सम्राट उनको कहा जाता है, हो गया। आज की डेट में जो गजल गायकी है, आप अगर गजल गायक हैं तो जाहिर सी बात है आज की डेट की भी कुछ गजल गायकी कहीं ना कहीं आपको सुनाई पड़ जाती होगी, और उस जमाने की जिस जमाने में जगजीत जी थे, क्या फर्क महसूस करते हैं आप?
1: सर एज सच अभी तो बहुत ज्यादा गजल गायक है नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आता, दिखते नहीं है, और जो भी है तो थोड़ा सा वो एक जो सोज या संजीदगी जो गजल गायकी में हुआ करती थी पहले, वो अभी ऐसी नहीं दिखती है। और शायद मैंने नए गजल गायकों पे बहुत ध्यान भी नहीं दिया, और टू बी फ्रैंक की उनको ज्यादा कुछ गाने की कोशिश नहीं की। जगजीत सिंह में ही उलझे रहे हैं जब से हमने गजल गाना सीखा, और अभी भी उनके साथ ही, वो तो नहीं रहे बट उनकी गजलें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, और हम अभी भी रोज एक दो गजल उनकी गाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ रिकॉर्डिंग की जाए, बहुत बार रिपीटिशन हो जाता है, तो यही है
0: बात।
1: तो नए गजल गायकों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है जी।
0: बात खूब। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वापस आते हैं राजीव जी के पास इसी बात को जरा सा और आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तब तक गजलों का भी लुत्फ साथ साथ उठाते चले।
2: तेरे खुशबू में बसे खत्म

0: बहुत खूब। तो राजीव भाई, जैसे बॉलीवुड सिंगिंग या गीतों की बात कर लें तो किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर जी, और गजलों में बात कर लें तो जगजीत, बस खत्म। इसके अलावा मतलब हम इन तीन चार लोगों से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, तो क्या ऐसा कह सकते हैं? वैसे मुझे ऐसा कहने के लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा, सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि बस संगीत खत्म हो गया, अब और न तो कोई गायक है, न तो कोई लेखक है, न कोई गाने वाले हैं, कोई जगजीत नहीं, कोई मन्ना डे नहीं, कोई गुलाम अली नहीं, बस। आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है सर?
1: सर, कहना तो आपका एक प्रकार से सही है, बट अभी कुछ नए नाम सुनने में आ रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा सुना नहीं है, एग्जैक्टली नाम भी याद नहीं है, बट हाँ, जहां तक गजल का एक दौर वो वाला था वो डेफिनेटली कम हुआ है, क्योंकि अभी भी हम गजल सुनने की बात करें या जो गजल के सुनने वाले और शौकीन लोग हैं वो भी उसी दौर की बात करते हैं।
0: जी जी,
1: अभी भी जिस घर में या जहां भी यदि गजल सुनने वाले हैं तो आपको गजल इन्हीं लोगों की सुनाई पड़ेगी। आप देखिए, गुलजार साहब ने बहुत गजलें लिखी और उन्हें और इवन फिल्मों में भी बहुत गजलें हुई
0: जी।
1: आशा जी ने बहुत गजलें गाई, इवन सभी फिल्मी गायकों ने गजलें गाई, सभी लेखकों ने जो लिरिक्स राइटर थे उनने गजलें लिखी। गुलजार साहब हिंदी फिल्मों में गीत लिखते थे और शायद जगजीत सिंह साहब के साथ उनके गजल एल्बम बहुत हिट हुए।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही।
1: ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी के दौर में नए गजल गायक हरिहरन साहब हैं जो कि अभी भी गजल गाते हैं।
0: जी हाँ,
1: है। बाकी ऐसे नए लोगों का तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता अभी।

बिल्कुल सही फरमाया। ये विचार करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्या गज़लों का दौर बस हो गया, चला गया, या हम इसमें कुछ नई जान फूंक सकते हैं। कुछ विचार करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्या फ्यूचर है गज़लों का। चलिए आगे बढ़ते हुए ये गज़ल पेश करता हूँ राजीव जी की आवाज़ में।

0: बहुत खूब, बिल्कुल दिल से दिल की बातें हुई हैं गज़लों के बारे में, गज़लों के जो गज़लें हो के गईं, जो गज़ल गायक रहे, जगजीत साहब, आपने अनूप जलोटा साहब का भी नाम लिया, मेहंदी हसन साहब का, पंकज उदास, चंदन दास, कई सारे गज़ल गायकों के बारे में बात हुई और आज की डेट में गज़लों का क्या भविष्य है वो भी। तो जितने भी सुनने वाले हैं राजीव जी, इस वक्त आपको जो सुन रहे हैं, आपकी गज़लें सुन रहे हैं, आप उनसे क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे उनसे, थोड़ा सा बात कीजिए ना उनसे।
1: हाँ जी, मैं अपने सुनने वालों को, हमारे साथियों को जो जिनको म्यूजिक का इंटरेस्ट है, और तो गज़ल एक ऐसी विधा है, एक ऐसा अलग प्रारूप है सिंगिंग का, म्यूजिक का, जो कि एक बहुत सुकून देता है हमको, एक बहुत भाव प्रवणता देता है हमको। शायद हम बहुत बार यदि कभी बहुत विचलित होते हैं मानसिक रूप से कुछ, तो यदि हम वो गज़ल पसंद है और हम यदि गज़ल सुनते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है। तो गज़ल एक ऐसा संगीत है, ऐसे उसके बोल ऐसे होते हैं, उसकी लिरिक्स ऐसे होते हैं कि जो हमको एक बहुत चेहरा और बहुत सुकून देते हैं। तो जो गज़ल सुनने वाले हैं वो अपना ये गज़ल को सुनना जारी रखें, और मैं तो चाहूँगा कि नए गज़ल सिंगर आए जो कि हमारे गज़ल के इंटरेस्ट को कंटिन्यू बना रहे, हमारा हमारे नए गज़ल गायकों के साथ तो बहुत अच्छा होगा।
0: बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, इसके ऊपर गौर फरमाने की ज़रूरत है, हमें कुछ नए गज़ल गायकों को ढूंढना होगा, कुछ नए गज़ल लेखकों को भी ढूंढना होगा। बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने आज राजीव पांडे जी से गाई हुई ये प्यारी सी गज़लें सुनी और उनके दिल की बातें भी हमने सुनी, क्या वो महसूस करते हैं गज़लों के बारे में। राजीव पांडे साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने शिरकत करी हमारे।
1: थैंक यू वेरी मच समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, थैंक यू।

तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड द गेस्ट वी हैव टुडे टू डिस्कस स्पिरिचुअलिटी एंड टू लर्न अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड इट्स प्रैक्टिसेस, वी हैव ए वी जयरमन सर। सो आगे बढ़ते हुए मैं बस उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा,